0: समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर आज पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में व विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनकी समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। किशोरावस्था में ही वे देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे और वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह दिल्ली स्थित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा, करुणा और सेवा का प्रकाश पुंज है। सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के संदेश बेहतर समाज बनाने और विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में देश के लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने साहित्य को सेवा, संवेदना और राष्ट्रभक्ति से जोड़ने का आह्वान किया है। सेवा पखवाड़ा 2026 के तहत लोक भवन शिमला और हिमाचल साहित्य व संस्कृति मंच के संयुक्त तत्वावधान में कल काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागरण में साहित्य और कविता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में साहित्य को इसलिए केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि लोक कल्याण और राष्ट्रीय जागरण का साधन भी माना गया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 3 दिवसीय शिमला जिले के दौरे के दूसरे दिन आज रोहडू विधानसभा क्षेत्र के भटवाड़ी ग्राम पंचायत द्यूदी मेला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री आज रामपुर के शिंगला में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान नोक घाटी के लोगों से संवाद करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री तकलेज और में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों से बातचीत करेंगे। कल 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नोगली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत रोहडू विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम इलाके भटवाड़ी में ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी संस्कृति और समस्याओं को जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहडू विधानसभा क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने की सरकार योजना बना रही है और चांचल घाटी का सर्वे किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और ग्रामीणों का शहर की तरफ पलायन कम करने के लिए योजनाएं बना रही है। सरकार गांव के से लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुन रही है और उसी के अनुरूप योजनाएं बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि लोगों को शहरों की तरफ पलायन ना करना पड़े।
1: हमारी सरकार का एक कर्तव्य भी और दायित्व भी बनता है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र के सबसे जो लास्ट गांव है उसमें पहुंचने की कोशिश की जाए। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया है और मेरा मानना है कि हमारी सरकार गांव के विकास के लिए और रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत प्रयास कर रही है। एक ऐसी व्यवस्था को हम बनाने जा रहे हैं जिससे गांव में बैठे लोगों के हाथ में पैसा आए और गांव से भी लोग पलायन ना करके शहरों की तरफ आए। इसी रोहडू क्षेत्र का चांचल और रोहडू पूरा क्षेत्र टूरिज्म के क्षेत्र से विकास करे। चांचल का हमने सर्वे करवा रहे हैं क्योंकि वहाँ स्नो जो है वो बहुत जल्दी पड़ जाती है। सारी परिस्थितियों का हम स्टडी करवा रहे हैं और टूरिज्म हमारे प्रायोरिटी सेक्टर में है। धीरे धीरे पूरे प्रदेश को हम टूरिज्म

0: उनके रूममेट बल्ब करना चाहते हैं, इस कोशिश में हमारी सरकार लगी हुई है।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: यार 2 दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
3: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
4: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
3: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन विशेष ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान 2026-27 सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है, ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सकें। इसी कड़ी में प्रदेश में भी आज सभी 3,758 पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में 3 माह तक चलने वाले रिफॉर्म उत्सव की शुरुआत होगी। विशेष ग्राम सभाओं में गाँवों की स्वच्छता, ठोस व तरल कचरा प्रबंधन, ग्राम पंचायत विकास योजना, नशा मुक्त अभियान और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। चंबा जिला में मानसिक बीमारी से ग्रसित बेघर व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जा रहेगी। इसके अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चंबा में 7 से 9 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मानसिक बीमारी से ग्रसित बेघर व्यक्तियों की पहचान, बचाव और उन्हें राज्य सरकार द्वारा संचालित मनोचिकित्सकीय अस्पतालों में दाखिल करवाने का कार्य किया जाएगा। अधिक ब्यौरा हमारे चंबा जिला संवाददाता से।
5: अभियान के दौरान जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण तथा अन्य संबंधित विभागों एवं हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। प्राधिकरण ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त प्रतीत होता है, सूचना संबंधित पुलिस थाना, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग अथवा प्राधिकरण को उपलब्ध करवाएं, ताकि संबंधित व्यक्ति को आवश्यक चिकित्सा एवं अन्य सहायता उपलब्ध करवाने के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जा सके। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: शिमला जिले के जुब्बल क्षेत्र के धार गांव में कल देर रात आग लगने से 5 रिहायशी मकान पूरी तरह जलकर राख हो गए। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार ये आगजनी की घटना रात करीब 11:30 बजे हुई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों ने रात भर मशक्कत कर आग पर काबू पाया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आगजनी पर गहरा दुख जताते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार और शासन उनके साथ है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला प्रदेश उच्च न्यायालय के हवाले से लिखता है, डलहौजी के प्रतिबंधित हरित क्षेत्र में होटल निर्माण की अनुमति रद्द, हाईकोर्ट ने कहा पर्यावरण संरक्षण संवैधानिक दायित्व। हिमाचल दस्तक की एक खबर है, अब 13 रुपए किलो खरीदा जाएगा सेब, दूध का समर्थन मूल्य भी बढ़ेगा। रोहड़ू के चिड़गांव में मुख्यमंत्री सुक्खू की बड़ी घोषणा। मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, मॉनसून की विदाई के बीच मौसम लेगा करवट, 6 और 7 अक्टूबर को आंधी, आसमानी बिजली का येलो अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र उन्हें कर रहा नमन, देश सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने साहित्य को सेवा संवेदना और राष्ट्रभक्ति से जोड़ने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज रामपुर के शिंगला में विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। प्रदेश की सभी 3,758 पंचायतों में आज विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन, 3 माह तक चलने वाले रिफॉर्म उत्सव की शुरुआत और चंबा जिला में मानसिक बीमारी से ग्रसित बेघर व्यक्तियों की पहचान के लिए 7 से 9 अक्टूबर तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।
6: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
7: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
6: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
7: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
6: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों का कारवां। गीतों के संगीतमय सफर गीतों का कारवां कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है और आज के सफर में मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफर एकता। तो आइए आज के संगीतमय सफर की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: अभी ये गीत सुना आपने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से। इस गीत को गाया था सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों ने। गीत के बोल लिखे थे स्वानंद किरकिरे ने और धुन तैयार की थी शांतनु मैत्रा ने।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: आपने ट्यून किया है FM धर्मशाला और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवा रहे हैं फिल्म तुम मिले से, और इस गीत को गाया है KK ने, संगीत है प्रीतम का और गीत के बोल लिखे हैं सैयद कुरैदी ने।

0: आतिफ असलम की आवाज़ में अभी आपने सुना दिल की गलां गीत फिल्म टाइगर जिंदा है से। गीतकार इरशाद कामिल और संगीतकार विशाल और शेखर।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शेरशाह से। इस गीत को गाया है जुबिन नौटियाल, असीस कौर और साथियों ने। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

माफ कीजिए, अभी आपने ये गीत सुना, तनिष्क बागची के लिखे और संगीतबद्ध किए गीत को, फिल्म थी शेरशाह।

अब आपको सुनवा रहे हैं जावेद अख्तर के लिखे गीत को शंकर एहसान लोय के सुरों में। इस फिल्म है कभी अलविदा ना कहना और इस गीत को गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने।

लीजिए, अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं सचेत और परंपरा टंडन के गाए और सुरों में पिरोए गीत को फिल्म कबीर सिंह से। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब वक्त है पहाड़ों के सुर कार्यक्रम का। पहाड़ों के सुर कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में पहला लोकगीत शामिल कर रहे हैं विक्रांत का गाया हुआ।

कुमारी सोना और सखियों का गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम में अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं पवन डोगरा की आवाज़ में।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
2: आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं धीरज शर्मा का गाया ये लोकगीत।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम में अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं अजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में।

0: go.
1: लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं प्रदीप परदेसी और फौजा सेन का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 11 बजने को हैं, अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनकी समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा, करुणा और सेवा का प्रकाश पुंज है। सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के संदेश बेहतर समाज बनाने और विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में देश के लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे।

0: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 3 दिवसीय शिमला जिला के दौरे के दूसरे दिन आज रोहडू विधानसभा क्षेत्र के भटवाड़ी ग्राम पंचायत द्यूदी मेला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री आज रामपुर के शिंगला में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान नोग घाटी के लोगों से संवाद करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री तकलेच और काशा में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले कल मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत रोहडू विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम इलाके भटवाड़ी में ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी संस्कृति और समस्याओं को जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहडू विधानसभा क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने की सरकार योजना बना रही है और चांशल घाटी का सर्वे किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और ग्रामीणों का शहर की तरफ पलायन कम करने के लिए योजनाएं बना रही है। सरकार गांव के लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुन रही है और उसी के अनुरूप योजनाएं बनाने का प्रयास कर रही है ताकि लोगों को शहरों की तरफ पलायन न करना पड़े।
1: हमारी सरकार का एक कर्तव्य भी और दायित्व भी बनता है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र के सबसे जो लास्ट गांव है उसमें पहुंचने की कोशिश की जाए। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया है और मेरा मानना है कि हमारी सरकार गांव के विकास के लिए और रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत प्रयास कर रही है। एक ऐसी व्यवस्था को हम बनाने जा रहे हैं जिससे गांव में बैठे लोगों के हाथ में पैसा आए और गांव से भी लोग पलायन ना करके शहरों की तरफ आए। इसी की रोहडू क्षेत्र का चांशल और रोहडू पूरा क्षेत्र टूरिज्म के क्षेत्र से विकास करे। चांशल का हमने सर्वे करवा रहे हैं क्योंकि वहाँ स्नो जो है वो बहुत जल्दी पड़ जाती है। सारी परिस्थितियों का हम स्टडी करवा रहे हैं और टूरिज्म हमारे प्रायोरिटी सेक्टर में है। धीरे धीरे पूरे प्रदेश को हम टूरिज्म के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। इस कोशिश में हमारी सरकार लगी हुई है।
0: गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश में भी आज सभी 3,758 पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में 3 माह तक चलने वाले रिफॉर्म उत्सव की शुरुआत होगी। विशेष ग्राम सभाओं में गाँव की स्वच्छता, ठोस व तरल कचरा प्रबंधन, ग्राम पंचायत विकास योजना, नशा मुक्त अभियान और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन मंडी द्वारा आज सेरीमन से भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी में स्वच्छता, सत्य और अहिंसा के संदेश के साथ गांधी जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। गांधी जी के प्रिय भजनों, विशेषकर रघुपति राघव राजा राम और देशभक्ति गीतों से पूरा वातावरण राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो गया। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इस मौके पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर नगर निगम सोलन द्वारा आज मॉल रोड पर स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान नगर निगम की महापौर सुषमा शर्मा सहित अधिकारियों और कर्मचारियों ने मॉल रोड पर सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। महापौर ने कहा कि स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए नगर निगम के साथ साथ आम लोगों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मेरे वे
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जय हिंद माला।

अभी ये देशभक्ति गीत आपने सुना फिल्म जागृति से, और इसे गाया था आशा भोसले और साथियों ने। अब आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज के युगल स्वरों में फिल्म कर्मा से ये गीत।

जय हिंद कीर्तमाला, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इंडियन से रूप कुमार राठौर की आवाज में ये देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे जय हिंद गीतमाला। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम संबंधी जरूरी सूचना। श्रोताओं, इस बार रविवार दिनांक 4 अक्टूबर 2026 को सुबह 9 से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का

विषय पर आप अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानसी घुट से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। डॉक्टर मानसी चुग से प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। रविवार दिनांक 4 अक्टूबर 2026 समय रहेगा सुबह 9 से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं आते। जब समय आता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। इसलिए मनुष्य को सद्विवेक से अपना जीवन जीना चाहिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग पूरा परिवार एक साथ सुनते हैं। ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी हमें सुनने को मिला है। प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई।
3: अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंत तीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: जय जोहार बंदगी उमंग टीम को, विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 25 अगस्त को सरितपुर की कहानी सुनाया, हमें बहुत प्रेरणादायक लगा। प्रकृति की रक्षा करने की सीख मिली। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 28 अगस्त को भी हमने कार्यक्रम सुना, भारत की सबसे पहले महिला पायलट सरला ठकराल जी के बारे में रियल स्टोरी, हमें बहुत प्रेरणादायक लगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदारे जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: उमंग कार्यक्रम का हर अंक एक से बढ़कर एक होता है, ये कार्यक्रम हम जरूर सुनते हैं। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम हिमालय कैसे बना, अवसर को पहचानिए और उड़न परी पीटी उषा, ये सभी कार्यक्रम सुने बेहद पसंद आए। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल, अरावली पर्वत की कहानी, सुखो मांझरी गांव की कहानी और अन्य कार्यक्रम सुने वो भी पसंद आए। ये सभी कार्यक्रम शिक्षाप्रद और जानकारी से भरपूर लगे। आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज 2 अक्टूबर है, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस। उमंग कार्यक्रम की ओर से उन्हें शत शत नमन। आइए करते हैं शुरुआत उनके जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण घटना से जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया।
2: लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या कभी किसी के साथ हुआ अपमान उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है?
3: श्रोताओं, होता तो ये है कि अपमान तो अक्सर इंसान को तोड़ देता है
2: जी।
3: तो कोई भला उससे ताकत कैसे पा सकता है?
2: यही तो आज की कहानी है जो हम आपके लिए गांधी जयंती के अवसर पर खास तौर से लेकर आए हैं। दिन था 31 मई 1893 और स्थान था दक्षिण अफ्रीका का पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन।
3: एक युवा भारतीय वकील ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था। वे अपने स्थान पर बैठे थे और यात्रा कर रहे थे।
2: स्टेशन पर बहुत से यात्री ट्रेन में चढ़े, उनमें एक श्वेत यात्री भी था। उस श्वेत यात्री को एक अश्वेत व्यक्ति को प्रथम क्लास में बैठे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने आपत्ति की कि एक भारतीय प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कैसे बैठ सकता है।
3: गांधी जी ने अपना टिकट दिखाया, उनके पास पूरा अधिकार था कि वे प्रथम श्रेणी में यात्रा करें।
2: लेकिन टिकट देखने के बावजूद उन्हें डिब्बा छोड़ने के लिए कहा गया। शोर बढ़ता जा रहा था और बहुत से श्वेत यात्री गांधी जी के वहां रहने के कारण आपत्ति जता रहे थे।
3: लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अडिग रहे, उन्होंने अपना अधिकार छोड़ने से विनम्रता पूर्वक साफ इनकार कर दिया
2: जी।
3: उन्हें बलपूर्वक ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और बाहर थी कड़ाके की

0: वाली रात।
1: गांधी जी का सामान भी उनके साथ बाहर था। वे स्टेशन पर अकेले बैठे रहे। जरा सोचिए श्रोता मित्रों, उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा।
0: हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं, एक युवा वकील जिसके पास वैध टिकट था, फिर भी केवल नस्लीय भेदभाव के कारण उसे ट्रेन से उतार दिया गया था।
1: जी।
0: वह रात उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक रही होगी।
1: उस रात उन्होंने अपने जीवन की भावी दिशा पर विचार किया। उस रात गांधी जी के भीतर कोई नया संकल्प जन्म ले रहा था, जिसे आज हम सत्य और अहिंसा के रूप में जानते हैं। इसी संकल्प का स्वरूप था सत्याग्रह।
0: सचमुच कितनी अद्भुत बात, एक रेलवे स्टेशन, एक ठंडी रात, एक अपमान और उसी से एक महान संकल्प का पैदा होना।
1: तो अजीत जी, गांधी जयंती के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए आज की सीख क्या है?
0: विमलेश जी, मुझे लगता है सीख बहुत सरल है। और सीख ये है कि जब परिस्थितियां आपको गिराएं तो वहीं पड़े मत रहिए।
1: जी,
0: उठिए, सोचिए और अपने दुख को एक अच्छे संकल्प में बदल दीजिए।
1: दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि किसी के गलत व्यवहार का जवाब हम अपने गलत व्यवहार से न दें।
0: बिल्कुल, यही तो इस घटना की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
1: तो श्रोताओ, 31 मई 1893 की वो रात गांधी जी के लिए केवल एक कठिन रात ही नहीं थी,
0: लेकिन वो रात उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली रात भी थी।
1: जी हाँ, कभी कभी जीवन की सबसे अंधेरी रात थी हमारे भीतर की एक नई सुबह को जन्म देती है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है यादें बापू गांधी की।
1: इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंगों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है और उनके जीवन के दर्शन की भी सरल वाक्यों के द्वारा जानकारी दी गई है।
2: शहर को ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखें कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बैठने का, सोने का सब साफ, गलियां साफ और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ।
3: आइए सुने उस्ताद अमजद अली खां को।

0: यानी ये एक आत्मा है शब्दों की। हाँ बच्चों, ये आपने सुना, इसको कहा जाता है रामधुन। तो हमारे जो राष्ट्रपिता थे, कौन थे?
1: महात्मा
0: गांधी जी। तो उनके साथ इसका बड़ा भारी एसोसिएशन है और उनको बहुत पसंद था ये। मेरे ख्याल से सबसे मशहूर गाना या भजन या सॉन्ग, इससे मशहूर कोई चीज़ नहीं हिंदुस्तान में। अब ये इंटरनेशनल ख्याति इसको प्राप्त हो चुकी है कि अब जो हमारे बाहर के बीट ग्रुप जो भी हैं, पॉप सिंगर्स जो भी हैं, वो भी इसको गाते हैं, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन बदल जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो नकल करते हैं। रामधुन, महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद था ये, और ये आप सबको पता होना चाहिए।

यादें बापू गांधी की। अब प्रस्तुत है एक झलक हामिदुल्ला अफसर के जीवन के कुछ यादगार पलों की, वो पल जो उन्होंने गांधी जी के साथ बिताए।

0: सन 1921 का जिक्र है। मैं LLB का तालिबे इल्म था। गांधी जी मेरठ में तशरीफ लाए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। आखिर मेरी आरजू बर आई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया।
1: नमस्ते बापू।
2: नमस्ते
3: प्रणाम।
4: नमस्ते।
5: नमस्ते
3: प्रणाम।
6: हमारी खुश नसीबी आप मेरठ आए।
0: बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया,
7: ये अचकन देसी क्यों नहीं पहनते?
0: मैंने अर्ज किया, 3-4 देसी चीजें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ, क्या ये काफी नहीं? गांधी जी ने बड़े जोर से कहकहा लगाया और फरमाया,
7: अच्छा अच्छा, तब तो आपके लिए देशी कपड़ा पहनना और भी आसान है, एक ही देशी चीज का तो इजाफा होगा।
0: उसके बाद मुतअद्दिद बार कई कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीजों में अपनी उसी 5वीं चीज का ख्याल आ जाता। ।1945 का जमाना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिड़ला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और पेवंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गत्ता। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ों पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया ना लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए थे। एक दिन ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
7: देखो हामिद, जब ये इमारत बन जाएगी तब इन बेचारे गरीब पहाड़ी मजदूरों के

0: यहाँ ठहरने की जगह तो हो ही जाएगी।
1: जी बापू।
0: देखो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनसे किराया न लिया जाए।
2: जी बापू, हम ध्यान रखेंगे।
0: अच्छा, अब सोचो इस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
3: कुछ खास होना चाहिए।
1: मजदूर रहेंगे उसमें,
2: मेहनत करने वाले।
3: बापू, धर्म का काम है ये तो।
1: भाई क्यों ना इसका नाम धर्मशाला रखा जाए।
0: धर्मशाला, हाँ ठीक है, धर्मशाला।
4: आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज किया, अब उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते। एक और साहब वहां बैठे हुए थे, बोले,
3: भाई गरीब खाना तो अपने घर को ही कहते हैं।
4: मैंने कहा, जी हाँ कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मानी गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं।
0: बहुत खूब, मुझे तो ये नाम पसंद आया।
3: हाँ, तो ये नाम ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक। हाँ बिल्कुल सही।
4: गांधी जी को ये नाम पसंद आया। एक दफा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोजाना झाड़ू दिया करें।

0: गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उंस था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साला लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी।
1: ये लो, अरे लो,
2: मुझे भी लीमू दो ना,
1: ये लो
2: चाहिए।
0: वो उस लड़की के साथ खेलने लगा।
1: ये लो।
0: खेलते खेलते उसे थका दिया, लेकिन लीमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में ये लीमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था। उस लड़की को कैसे दे दिया जाता। जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करे। आखिर उसे एक तरकीब सूझी।
1: ये मैंने फेंका नदी में और लीमू गया साबरमती में।
2: गया?
1: हाँ, वो गया। अरे रो मत।
2: मैं लीमू को नदी से निकाल लाऊं?
1: अरे नहीं, नहीं।
2: वो किनारे पर ही तो होगा ना?
1: अरे नहीं बेटा, लीमू नदी में डूब गया है, अब तुम उसे निकाल नहीं पाओगी।
2: गया?
1: हाँ, गया लीमू।
0: मगर असल में ऐसा नहीं था। उस नौजवान ने लीमू को अपनी जेब में रख लिया था। बात आई गई हुई। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए,
1: मेरा रुमाल किस जेब में है?
0: उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा।
2: अरे लीमू, ये लीमू तो आपके पास ही है।
1: अरे वो
2: आश्रम में रहकर झूठ बोला आपने।
1: अरे
2: मैं ये बात पापा को जरूर बताऊंगी।
1: अरे नहीं नहीं
2: पापू।
1: नहीं बेटा, मेरी बात तो सुन।
2: नहीं पापू।
1: नहीं, अरे सुन तो, पापू से मत बोल। अरे
2: पापू।
1: नहीं नहीं, अरे
2: पापू।
1: अरे अरे सुन मेरी बात। अरे सुन तो।
0: ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया,
2: उन्होंने झूठ बोला।

0: आश्रम में रहकर झूठ बोला।
1: हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और उन्होंने क्यों झूठ बोला।
0: ठीक है बापू।
2: शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा,
1: अच्छा बताओ क्या बात थी।
3: बापू ये सब बस एक मजाक था।
1: देखो आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ न बोलो।
3: जी बापू मैं समझ गया, मैं ख्याल रखूंगा।
4: कोई आंखों से तो सुनता नहीं है, आंखों से

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम यादें बापू गांधी की, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका स्थित आश्रम के बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि गांधी जी की दिनचर्या कैसी थी और आश्रम वासियों के साथ उनका कैसा सद्भाव था।
0: साथियों नमस्कार, हम सब गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी को बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा भी जाता है। कोई उन्हें बापू कहता है, तो कोई महात्मा, तो कोई राष्ट्रपिता। गांधी जी ने देश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो उनके दो आश्रम थे, फीनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फार्म, और जब वे भारत आए तो उनका आश्रम बना साबरमती। और हाँ, आपको एक बड़ी दिलचस्प जानकारी भी दे दें, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी के फीनिक्स आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है और आज गांधी जी का आश्रम टॉलस्टॉय फार्म भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गांधी स्थलों में से एक है। तो आइए चलते हैं गांधी जी के आश्रम में, और सबसे पहले चलते हैं आश्रम के रसोई घर में।
2: अरे बापू जी के आने का समय आने वाले हैं। हाँ हाँ, और तुम टमाटर काट लो। हाँ हाँ, और मैं ये मिर्ची काट लूँ।
3: अरे जल्दी जल्दी सब्जी काटो चंपा, आश्रम में भोजन का समय हो रहा है।
2: अरे जल्दी जल्दी में मैं तो एक बात भूल ही गई।
3: क्या?
2: वो सब्जी मैंने बगैर धोए ही काट दी।
3: अरे चंपा, बापूजी को अगर पता चला कि तुमने बिना धोए सब्जी और फल काट लिए तो फिर बहुत डांट पड़ेगी।
2: ठीक कह रहे हो। अरे हरिया, वो देखो छत पर मकड़ी का जाला भी लगा है। बापूजी के आने का समय हो रहा है और यहाँ पर सफाई भी अभी करनी बाकी है। इससे पहले कि वो आए हम जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं।
3: ठीक है चंपा, ठीक।
4: बापूजी के आने का समय हो रहा है, मैं टमाटर काट।
3: मुझे मुझे आलू दे दो, मैं जल्दी काट लेता हूँ।
2: अरे ठीक है, मैं ये बाकी जो सब्जियां इनको धो लेती हूँ। प्रणाम बापू।
3: नमस्कार बापू।
4: प्रणाम बापू।
5: प्रणाम प्रणाम। ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
3: बाबू जी वो सब्जी काट रहे थे हम लोग।
2: बापू सब्जियां काट रहे थे।
5: अभी अभी मुझे पता चला कि तुमने सब्जियां बिना धोए ही काट दी हैं।
2: वो बापू थोड़ी जल्दी थी और भोजन का भी समय हो रहा है, इसलिए बगैर धोए ही, क्षमा कीजिए।
5: देखो चंपा, ध्यान रखना, सब्जी और फलों को कभी भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए और ना ही पकाना चाहिए। आगे से ध्यान रखना, समझ गई तुम?
2: जी बापू।
5: अच्छा जाओ।
2: जी।
5: अब तुम लोग जाकर अपना अपना काम करो।
3: जी।
2: चलो चलते हैं।
3: जी।
0: तो साथियों, अभी हम थे आश्रम के रसोई घर में। आइए अब सुनते हैं गांधी जी के आश्रम की एक और घटना के बारे में। हुआ यूं कि एक बार आश्रम में ही रहने वाली एक बीमार स्त्री को कुछ केले दिए गए। उसने जब केलों को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उन केलों पर काले काले चकत्ते पड़े हुए थे। तो उस स्त्री ने इसकी शिकायत बापू से की।
4: बापू बापू ये देखिए।
5: अरे हाँ हाँ बिमला, आओ कहो कैसे आना हुआ?
4: बापू केलों पर कितने काले काले चकत्ते पड़े हुए हैं। दूसरों को तो ऐसे केले नहीं दिए, ये पक्षपात नहीं तो और क्या है?
5: देखो बिमला, ये जो केलों पर तुम काले काले चकत्ते देख रही हो ना?
4: जी।
5: इसका मतलब ये है कि ये केले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तुम्हें पेट की समस्या है ना?
4: हाँ।
5: है ना? हाँ, मैंने ही उन्हें कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से पके हुए केले दें। उन्होंने ऐसे दे दिए। उन्होंने तुमसे कोई पक्षपात नहीं किया विमला।
4: जी बापू।
5: हाँ समझ गई ना?
4: जी।
5: जाओ, अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी।
4: जी बापू धन्यवाद।
0: साथियों, यह सुनकर बिमला बहुत लज्जित हुई।

0: और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। गांधी जी के आश्रम का यह नियम था कि सब लोग अपने अपने बर्तन खुद साफ करें और न सिर्फ अपने कमरों और झोपड़ियों को ही साफ रखें लेकिन आसपास भी साफ सफाई का ख्याल रखें। गांधी जी रसोई में काम करने वालों के साथ सब्जियों को खुद काटते थे और बर्तन धोने का भी काम किया करते थे। एक दिन की बात है,
1: अरे बापू ये बर्तन तो धुल गया है।
2: अरे सुधीर नहीं, अभी ठीक से कहाँ धुला है, अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है।
1: हाँ?
2: अभी तो इसे और चमकाना है।
1: ओ
2: देखो इसे और चमकाना है। ये लो अब देखो, अब ये अच्छी तरह साफ हो गया है और
1: चमकने भी लगा।
2: हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ध्यान रखो जिस भोजन को हम खाते हैं उसे हमेशा साफ बर्तनों में ही खाना चाहिए, समझे सुधीर?
1: हाँ जी बापूजी।
2: हाँ शाबाश।
0: तो साथियों हमने आज गांधी जी के आश्रम में जाकर क्या सीखा? तो हमने सीखा कि अपना काम स्वयं करें और किसी दूसरे से न तो उम्मीद रखें और न दूसरे से वह काम करवाएं। और हम सबको अपनी व्यक्तिगत और आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों यदि आप गांधी जी के जीवन से संबंधित कोई भी किस्सा जानते हैं तो अपने मित्रों से अवश्य साझा करें। तो श्रोताओं अभी आपने सुना कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: जगबंधु,
0: चेतना,
3: अर्शद,
0: सौम्या,
3: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयू यादव के साथ
3: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रही थी प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

दिलावर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीत लिखा था महेंद्र देहलवी ने और संगीतकार थे मानस मुखर्जी।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं नितिन मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में, फिल्म है कसम। गीतकार है इंदीवर और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सैनिक भाइयों, अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत से, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर ने। गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनो सखी।

आज के सुनो सखी कार्यक्रम में सभी श्रोता सखियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो सखी एकता। सखियों, आज के कार्यक्रम में भी हैं ढेरों जानकारियां और मनोरंजन, तो फटाफट से जुड़िए अपने कार्यक्रम में हमारे साथ। जी हाँ, जब हम और आप कार्यक्रम में मिलते हैं तो जानकारी साझा करते हैं, तो ये हमारा प्यारा सा रिश्ता और भी खास और मजबूत बन जाता है। कार्यक्रम में जानकारी के साथ लेकर आते हैं हम नए पुराने गीत, ताकि बातों के साथ साथ मनोरंजन का सिलसिला भी बना रहे। और आप तो जानती हैं, आज है 2 अक्टूबर और ये दिन हमारे देश के इतिहास की दो महान विभूतियों को समर्पित है। जी हाँ, आज महात्मा गांधी जी और हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। सखियों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी 2 अक्टूबर को ही हुआ। आप तो जानती ही हैं कि दोनों ही हमारे देश के लिए जो हैं महान नायक रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे हैं हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया। शास्त्री जी ने जवानों के साहस और किसानों के परिश्रम को देश की ताकत माना। सखियों, हमें इन दोनों ही विभूतियों से जीवन में सीख लेनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी हमेशा ये कहते थे कि हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाना है। तो आज का ये दिन जो है हम सबके लिए खास है, क्योंकि इनके जीवन से हमें सादगी, ईमानदारी, अनुशासन और देशभक्ति की प्रेरणा जो है मिलती है। सखियों, आज का दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय

राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 में गांधी जी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस दिन नई दिल्ली स्थित राजघाट पर विशेष प्रार्थना सभाएं होती हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य नेता इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि बड़े बदलाव के लिए हमेशा शक्ति का प्रयोग जरूरी नहीं है, सत्य, धैर्य और अहिंसा भी परिवर्तन का रास्ता बन सकते हैं। इसी कारण 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सखियों, अहिंसा केवल किसी को शारीरिक नुकसान न पहुंचाने का नाम नहीं, हमारे शब्द भी अहिंसक होने चाहिए, हमारा व्यवहार भी सम्मानपूर्ण होना चाहिए। घर में, परिवार में, कार्यस्थल पर, समाज में अगर हम एक दूसरे की बात सुने, सम्मान दें और मतभेदों को संवाद से सुलझाने का प्रयास करें तो यही अहिंसा की भावना जो है आगे बढ़ेगी और सब में प्यार जो है बना रहेगा। सखियों, कभी कभी एक मीठा शब्द किसी के पूरे दिन को बेहतर बना देता है। इसलिए आज खुद से एक छोटा सा वादा हमें करना है कि मैं क्रोध की जगह संवाद को चुनूंगी, अपमान की जगह सम्मान को चुनूंगी और हिंसा की जगह अहिंसा का रास्ता अपनाऊंगी। आज गांधी जयंती के अवसर पर हमें ना केवल इनको याद करना है बल्कि इनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी करना है, ताकि हम ईमानदारी से व्यवहार करें, स्वच्छता को अपने और किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। कार्यक्रम में अब बातें और भी करेंगे, फिलहाल वक्त है मनोरंजन का।

सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम सुनो सखी में फिर से स्वागत है। सखियों, आज हम जो हैं वन्य जीव सप्ताह भी मना रहे हैं। 2 से 8 अक्टूबर तक जो है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। आप तो जानती ही हैं कि हमारे जंगल जो हैं अब कट रहे हैं, और जब जंगल कटते हैं तो असंख्य जीव जो हैं वो बेघर होते हैं। हिमाचल की पहाड़ियों में अनेक प्रकार के वन्य जीव और पक्षी देखने को मिलते हैं। सोचिए, जरा सोचो, अगर जंगल नहीं होंगे तो हम इन जीवों के लिए कहाँ से आशियाना बना पाएंगे। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। हमें जंगलों में कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, वन्य जीवों को परेशान नहीं करना चाहिए, और ना ही उनके जो प्राकृतिक आवास मतलब उनके जंगल जो उनके घर है उनको काटना चाहिए। बच्चों को भी प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील हमें बनाना है। अगर हमारे जंगल सुरक्षित होंगे तो हमारे वन्य जीव सुरक्षित होंगे, हमारी प्रकृति सुरक्षित होगी और साथ ही हमारा भविष्य सुरक्षित बन पाएगा। सखियो, आज की बातचीत में हम बहुत से विषय लेकर आए हैं। अब बात करते हैं स्वच्छता पखवाड़ा की। सखियो, ये केवल अभियान नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छता हमारे स्वस्थ और सुंदर समाज की आधारशिला है। स्वच्छता केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं, इसमें हर नागरिक को आगे आकर अपनी भागीदारी जो है सुनिश्चित करनी होगी। अगर हम अपने घर के साथ साथ अपने आसपास को, अपने कार्यालयों को या जहां भी हम काम करते हैं वहां उन्हें स्वच्छ रखेंगे, तभी हम एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज बनाने में अपनी भूमिका जो है निभा पाएंगे। स्वच्छता पखवाड़ा हमें ये संदेश देता है कि स्वच्छता एक दिन का अभियान नहीं बल्कि हमें अपनी दैनिक आदत इसे बनाना है। आज स्वच्छता दिवस पर हम ये संकल्प लेते हैं कि ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे, स्वच्छता अपनाएंगे, स्वस्थ समाज बनाएंगे। सखियों, स्वच्छता पखवाड़े जैसे अभियानों का उद्देश्य केवल कुछ दिनों तक सफाई करना नहीं बल्कि स्वच्छता को हमारी रोज़मर्रा की आदत बनाना है। ये एक अच्छी आदत है, लेकिन साफ़ गली, साफ मोहल्ला, स्वच्छ गांव, स्वच्छ प्रकृति वातावरण भी उतना ही ज़रूरी है जितनी हमारी अपनी स्वच्छता। तो हमें अपने स्तर पर छोटे छोटे कदम उठाकर अपने आसपास को स्वच्छ बनाना है। जी हाँ, कूड़े को हमेशा जो है कूड़ेदान में डालना है, गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखना है, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना है, और ना ही पानी को दूषित करना है, ना ही दूसरों को अस्वच्छता को बनाए रखने के लिए जो है प्रेरित करना है। दूसरों को हमें ये प्रेरित करना है कि वो अस्वच्छता की तरह जगह स्वच्छता को अपनाएं और हर जगह जो है स्वच्छता फैलाएं। और इन सब में हम महिलाएं जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं, क्योंकि घर की दिनचर्या में हम महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमें अपने बच्चों में भी स्वच्छता की आदत को विकसित करना है। एक स्वच्छ आदत पूरे परिवार की आदत सखियों बन सकती हैं। तो स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। सखियों, आज है शुक्रवार और आप तो जानती ही हैं कि सुनो सखी के शुक्रवार के अंक में हम लेकर आते हैं उड़ान। जी हाँ, और इसमें बात होती है प्रेरणादायक विषयों की, कुछ हस्तियों की। तो सखियों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने हुनर को पहचान देकर अपना नाम बना सकते हैं। हुनर जब हौसलों से मिलता है तो सखियों पहचान बनती है, और जब एक महिला अपने हुनर पर विश्वास करती है तो वो उसकी उड़ान आसमान तक जाती है। सखियों, आज जो है हम अपने हुनर को निखारने के लिए जो है इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेंगी। जी हाँ सखियों, हर सखी खास होती है, हर किसी में कोई ना कोई हुनर होता ही है, बस ज़रूरत है उसे पहचान कर उसे निखारने की। तो आप भी सोचिए कि आपके अंदर क्या हुनर है और कैसे आप उसे निखार सकती हैं। तब तक हम आपको कार्यक्रम में सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कार्यक्रम घर पर माफ कीजिए, कार्यक्रम सुनो सखी में फिर से सभी श्रोता सखियों का स्वागत है। सखियों, कार्यक्रम में बात हो रही है अपने हुनर को निखारने की। तो हमें अपने हुनर को पहचानना है, उसे तराशना है, उसे निखारना है और अपनी एक अलग पहचान जो है बनानी है। सखियों, कहते हैं कि सपने जो है हमें हमेशा खुली आंखों से देखने चाहिए, क्योंकि बंद आंखों से देखे सपने कभी पूरे नहीं होते। और जो सपने हम खुली आंखों से देखते हैं, उन्हें देखने के लिए, उन्हें पाने के लिए हमें जो है कठोर मेहनत, परिश्रम जो है करना है। जब एक महिला सखियों अपने हुनर पर विश्वास करती है तो उसकी उड़ान आसमान तक जाती है। हर महिला के भीतर सखियों कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है। तो आपने भी अपने अंदर का हुनर जो है अभी तक पहचान लिया होगा कि आपके अंदर क्या ऐसा हुनर है जिससे आप अपना एक अलग मुकाम हासिल कर सकती हैं। किसी के हाथों में सखियों कढ़ाई बुनाई का हुनर होता है, तो किसी को खाना बनाने और पारंपरिक व्यंजन तैयार करने में महारत हासिल होती है। कोई सुंदर चित्र बनाती है तो कोई सिलाई कढ़ाई करती है। कई सखियां खेती बाड़ी में जो है निपुण होती हैं, तो कई पशुपालन में, लेखन, संगीत, अध्यापन में अपनी प्रतिभा को सखियां दिखाती हैं। लेकिन कई बार हुनर होने के बावजूद भी हमें सखियों पहचान नहीं मिल पाती। यहीं से शुरू होती है हमारी उड़ान। सखियों, उड़ान का अर्थ केवल आसमान में उड़ना नहीं है, बल्कि अपने सपनों को दिशा देना है। आज ज़रूरत है कि हम महिलाएं अपने हुनर को केवल घर तक सीमित ना रखें, उसे जो है निखारें, उसमें और सीखने का जो जज्बा है वो जारी रखें और उसे एक ऊंचे मंच तक पहुंचाएं। आज डिजिटल माध्यमों और स्थानीय बाज़ारों ने हम महिलाओं के लिए अपने उत्पाद और प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई रास्ते खोल दिए हैं। आज हमारी बहुत सी सखियां सोशल मीडिया के माध्यम से अपना सामान जो है बेच रही हैं, शिक्षा दे रही हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन लोगों को सिखा रही हैं। सखियों, कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस ज़रूरत है उस काम को पूरी निष्ठा और लगन से करने की। हमारी सखियां अपने पारंपरिक हुनर को भी आगे बढ़ा सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ जो हिमाचली हस्तशिल्प है, चंबा रुमाल हो या ऊनी बुनाई हो, पारंपरिक खाद्य पदार्थ हो या स्थानीय कला हो, हम इसमें भी निखार लगा लाकर इसे जो है अपने आय का जरिया जो है बना सकती हैं। एक छोटा सा हुनर भी आगे चलकर आत्मनिर्भरता का माध्यम जो है बन सकता है। तो याद रखिए सखियों कि हुनर छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे पहचान देने का हौसला बड़ा होना चाहिए। अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानिए, दूसरों से सीखिए और अपने हुनर को लगातार बेहतर बनाइए, क्योंकि आपकी पहचान केवल आपके नाम से नहीं, आपके हुनर, आपकी मेहनत से भी बनती है। आज ही अपने हुनर को पहचानिए, उसे निखारिए और एक नई पहचान बनाकर बनिए आत्मनिर्भर और सशक्त। कार्यक्रम में

क्रम में बस इतना ही। अपने सपनों को वक्त दीजिए, अपने आसपास सकारात्मक बदलाव की शुरुआत कीजिए। याद रखिए सखियों, बदलाव किसी और के आने का इंतज़ार नहीं करता, बदलाव की पहली शुरुआत हम खुद से कर सकती हैं। अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए। इसी उम्मीद के साथ आपसे पुनः भेंट होगी इसी कार्यक्रम में किसी और दिन। तो अपने आसपास प्रेम, स्वच्छता और प्रकृति के प्रति सम्मान का वातावरण जो है बनाए रखिए। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह, कार्यक्रम में आपको पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया अंकित धीमान ने। इसी के साथ प्यारी बहनों, नमस्कार।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 1 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार, मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि इस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। फ्रांस के विदेश व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोरिसिये के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।
2: वहीं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी तथा विद्यार्थियों ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास

0: आशा भोसले की आवाज़ में हम साया फिल्म का गीत सुन रहे थे, जिसे लिखा शेवन रिजवी ने, ओपी नैयर का संगीत। बिल्कुल सही जवाब आपने हमें दिया। हमारे एक साथी कहने के दुख दर्द में विविध भारती हमारा साथी रहता है, और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि गम भी मिला, दर्द भी मिला, तन्हाई भी मिली, जिंदगी की राह में हर रंग की परछाएँ भी मिली, हमने मुस्कुरा कर हर जख्म को सीने से लगा लिया, तभी तो इस सफ़र में हमें खुद से मुलाकात भी मिली। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गमों की बातें जो हो रही हैं, तो कह रहे हैं कि खुशी और दुख हमारी ज़िंदगी रूपी सिक्के के दो पहलू हैं, एक आता है दूसरा चला जाता है, लेकिन दुख आने पर लोग निराश हो जाते हैं। मेरा मानना है कि दुख इंसान को सबसे अच्छा साथी होता है, दुख हमें बहुत कुछ सिखाता है और अपने पराए की पहचान भी करवाता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रही हैं कि एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा वक्त की दीवार पर ऐसा कुछ लिखो कि खुशी के समय पढ़ूं तो मैं दुखी हो जाऊं और दुख के वक्त पढ़ूं तो खुश हो जाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने लिखा, ये दिन भी गुजर जाएंगे, मतलब जीवन में कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं होती, रात के बाद सुबह आती ही है, दर्द दुख और तन्हाई भी हमारे लिए एक नई ऊर्जा, उम्मीद और आशा लेकर आती है, खुशी तलाशने पर ज़िंदगी यकीनन खूबसूरत हो जाती है। वहीं हमारे साथी कहने कि ज़िंदगी में हर पल को खुशी से जी लेना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ लोग भी बदल जाते हैं पर कुछ यादें आखिर तक साथ निभाती है, और एक ऐसी ही याद बनने वाली है कल विविध भारती के सालगिरह के जश्न पर। तो सुनते हैं एक संदेश।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

विविध भारती के इस जश्न में तो आप शामिल हो सकते हैं हमारे साथ फेसबुक लाइव के जरिए, क्योंकि कल फेसबुक लाइव के जरिए हमारे सभी श्रोताओं को हम शामिल करेंगे इस जश्न में, और साथ ही आप पूछ सकते हैं अपने सवाल लाइव भी, जिन्हें शामिल किया जाएगा कार्यक्रम में, जैसा कि हम रोजाना सुरीला सफर कार्यक्रम में ही करते हैं। लेकिन कल मौका खास है, क्योंकि कल सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये मौका आपको मिलता रहेगा, और हमारे साथ कई सितारे होंगे जैसे कि ईला अरुण और तिग्मांशु धूलिया और साथ ही अनु मलिक भी। तो इनसे भी आप पूछ सकते हैं अपने सवाल, क्या पता आपके सवाल शामिल हो जाए और उनका जवाब दें आपकी ये चहेते सितारे। फिलहाल विविध भारती पर सुरीला सफर कार्यक्रम जारी है, और हमारे एक साथी ने लिखा कि आज 2 अक्टूबर केवल तारीख नहीं बल्कि भारत के दो महान सपूतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों को याद करने का दिन है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, जो दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश देता है। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी और अहिंसा का मार्ग हमारे जीवन को भी बेहतर बनाने की प्रेरणा बन देता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और इन महापुरुषों की जो सीख है उन्हें अगर हम अपने जीवन में ले आए तो सुख और दुख हमारे जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं लाते हैं और हम एक संयमित जीवन जीना सीख जाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब दिल को सतावे गम तब छेड़ सखी सरगम, सात सुरों में बड़ा ही दम है, बहते आंसू जाए थम छेड़ कोई सरगम। ये गाना सुनने पर जब आप बहुत तकलीफ में है तो सचमुच गाना दिल को बेहद सुकून देता है। सुर की मधुरता उनके शब्द आपको जख्मों पर मरहम के समान लगते हैं और आप उसमें खो जाते हैं। सारी नकारात्मकता आपकी आंसुओं के साथ बह निकलती है और आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। तो भाई ऐसा ही एक सकारात्मक गीत हम आपको सुनवाते हैं। आपको ये बताना है कि इस फिल्म का ये गीत है, किसने लिखा, आवाज़ तो आप पहचान ही लेंगे।

समझौता फिल्म का ये गीत इंदिवर के बोल, कल्याण चौहान जी का संगीत, आवाज किशोर कुमार की। हमारे एक साथी कह रहे हैं, जब कोई वादा करके मुकर जाता है तो मुझे दुख होता है, आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, स्पष्ट रूप से इनकार क्यों नहीं कर देते। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां उनकी भी ऐसी होती हैं कि वो एक वादा तो करते हैं लेकिन बाद में उसे निभा नहीं पाते, तो वो बातें, वैसे आपका कहना तो ये सही है कि अगर वो बातें करते हैं तो उन्हें सीधे सीधे आपको बता देना चाहिए कि भाई ये कुछ परिस्थितियों की वजह से हम उसे नहीं निभा पा रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं, केवल धैर्य से काम लेते हैं, दुख सुख हर परिस्थिति में, सुख में अति उत्साह नहीं दिखाते, पता है कुछ समय बाद दुख तो आएगा ही, लेकिन ये भी सही नहीं है कहीं ना कहीं, जो भी अगर उस वक्त हमारे साथ सुख है तो उसका भी आनंद लेना चाहिए, और अगर दुख है तो धैर्य और संयम से ये सोचते हुए कि ये दिन बीत जाएंगे और हम आगे ज़रूर आगे बढ़ते जाएंगे, खुद को हौसला देकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि सुख में हम ज़्यादा सुखी ना हो कि भाई ये दिन बीत जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो वो एक डर ही हुआ कि हम अपने सुख को ठीक से नहीं जी रहे, उसका आनंद नहीं ले रहे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे रात की तन्हाइयों में आवाज़ देकर मेरी नींद खराब अगर कोई कर देता है तो फिर सोने की कोशिश करता हूँ, फिर मुझे नींद आती है, दुख से छुटकारा।

0: मौका मिल जाता है। इस तरह के मजाहिया कमेंट भी हमारे साथी कर रहे हैं और शायद इसी तरह वो अपने जीवन में एक हंसी मजाक का हल्का फुल्का माहौल बनाए रखते हैं। और फिर ऐसे वक्त में तो दुख बिल्कुल भी आसपास नहीं पटकता, क्योंकि लोगों के लिए भी वो एक चहेते मित्र बन जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी इन बातों से लोगों का जो मन है वो हल्का रखते हैं। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि दुख जीवन की पहचान होता है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कहने के गम, दर्द और तन्हाई, इन सबको साधना बड़ा कठिन काम है। वर्तमान में रहते हैं तो बीते समय का हम पछतावा ही करते रह जाते हैं। आज के समय को गंवाते हुए भविष्य की चिंता में हम डूबे रहते हैं और सोचते हैं हम समय के साथ चल रहे हैं, मगर दिन यूं ही बीतते चले जाते हैं। बस जिस क्षण हम समय की टंकार पहचान लेते हैं तब सब ठीक हो जाता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी में खुशी है तो गम भी है। खुशी स्थायी नहीं होती और ना ही गम, इसलिए खुशी को दिल से अपनाने की ज़रूरत है। डर से मन अशांत होने लगता है। दुख, दर्द, तन्हाई, बिछड़ना, ये जीवन का हिस्सा है और इसे भी धैर्य से समझना चाहिए और इसका सामना करना चाहिए, आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन में इतने दर्द मिले हैं कि उनको याद करके सिर्फ आंसू निकल आते हैं, बट इन दर्द से, इन गमों से जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो उस हौसले को याद किया कीजिए तो आपके चेहरे पर ज़रूर एक मुस्कान आएगी, ऐसा हमें लगता है। हमारे एक और साथी कहते हैं, जिंदगी में गम, दर्द और तन्हाई से भागने के बजाय इन्हें स्वीकार करना ही जीवन जीने की कला है। और आगे वो कहती हैं कि जैसा कि मशहूर पंक्तियों में कहा गया, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी है। ये तीनों रात के उस अंधेरे की तरह हैं जहाँ जिसके बाद आने वाली सुबह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यदि आप इस समय ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो इसे एक पड़ाव माने मंजिल नहीं। बिल्कुल सही बात आपने लिखी और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, लेकिन पहले सुनाते हैं कल के कार्यक्रम के लिए जुड़ा एक संदेश और उसके बाद कार्यक्रम में गीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और बात गमों की, दुखों की और साथ में इनसे निपटने की जो तैयारी होती है वो कैसी होती है उस पर हो रही है। हमारे एक साथी कह रहे हैं, मुझे सोशल मीडिया में दुख होता है जब मैं किसी के कई पोस्ट को लाइक और कमेंट करता हूं, अगर वो मेरे पोस्ट पर कमेंट तो दूर, लाइक करना भी गवारा नहीं समझते और टेक्स्ट कमेंट को टेक्स्ट में जवाब ना देकर सिर्फ लाइक करके छोड़ देते हैं। तो और साथ ही ये कहते हैं कि दुखों को कम करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम सोशल मीडिया है, व्यस्त रहें, दुख टकरा टकरा कर भाग जाएगा। भाई यहाँ हम ये कह सकते हैं कि आप अगर किसी के पोस्ट को कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और वो आपकी पोस्ट को कमेंट या लाइक नहीं करते हैं, तो यहाँ आपको ये सोचना चाहिए कि आपने लाइक और कमेंट तो अपनी मर्जी से की है, किसी ये लेन देन तो नहीं है। अगर आपको किसी की पोस्ट या कमेंट अच्छी लगती है और आप उसे लाइक करते हैं तो वो आपका काम है, आपने उस काम को ख़त्म कर दिया, तो कर्म आपने कर लिया। लेकिन उसके लिए किसी फल की चिंता ना करें, क्योंकि हो सकता है उन्हें वो कमेंट आपकी जो है या पोस्ट जो आपकी है वो लाइक करने लायक ना लग रही हो, या उन्हें लग रहा हो कि मैं बाद में लाइक करूँगा, व्यस्त हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अगर अपना दिल जलाना है तो भाई ये तो बड़ी बुरी बात है, क्योंकि फिर सोशल मीडिया आपके लिए दुख का बड़ा कारण बन सकता है। लेकिन आप अपना कर्म करते जाइए, आपको जो अच्छा लगता है उसे लाइक कीजिए, कुछ कहने का मन करता है तो कमेंट कीजिए और बड़ी ही आसानी से आप इस चीज़ से उबर जाएंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने में आपका मन भी लग जाएगा। हमारे साथी कह रहे हैं कि जीवन के दो पहलू हैं, एक गम एक खुशी, ये दोनों समय में विविध भारती हर पल साथ रहती है। इस बात की हमें बहुत खुशी है। अकेलेपन का सबसे बड़ा साथी है, जीवन में कुछ भी नहीं ठहरता, जो आया है सो जाएगा, गम हो या खुशी कुछ नहीं रुकता, आने वाला पल जाने वाला है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं आगे की बात कि वो कह रहे हैं कि कुछ लोग बिना जाने बहुत टिक्का टिप्पणी करते हैं, कुछ तो ऐसे हैं हर समय बुरा ही बोलते हैं, बुरा तो सुनकर बहुत बुरा लगता है पर अब केवल चुप रहते हैं, ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, भाई चुप रहना ही यहाँ सही है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई हर कोई महात्मा गांधी नहीं बन सकता, तो इस बात से हम भी सहमत हैं। हम महापुरुषों के बारे में जब पढ़ते हैं जानते हैं तो हम उनके जैसे ही या उन्हीं की तरह हम पूरी तरह से नहीं बन सकते क्योंकि हमारा जीवन और व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है, लेकिन उनकी जो सीख है उसे लेकर हम अपने जीवन और व्यक्तित्व को कुछ बदल सकते हैं, अच्छा और सकारात्मक कर सकते हैं, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। और फिलहाल हमारी कोशिश है कि कार्यक्रम में एक गीत आपको सुनवा दें। बताइए किस फिल्म का गीत है, लिखा किसने है?

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कहने कि आमतौर पर हम खुद का घर तो बहुत साफ सुथरा रखते हैं, पर सार्वजनिक स्थान जैसे कि स्टेशन, एसटी स्टैंड, बस, रेल, रास्ते, सार्वजनिक स्वच्छता घरों को हम लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं। इस बात का अफसोस होता है और दुख होता है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि दुख और बादल एक जैसे होते हैं, जब

तक बरसते नहीं तब तक हल्के नहीं होते। जीवन के दायरे में अनेक बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ जाता है जब गम, दर्द और तन्हाई का एक साथ सामना होता है। कुछ पीड़ाएं इतनी वेदना देती हैं कि अश्रु की धार भी अपने साथ नहीं बहा पाती, बस हृदय के किसी कोने में चुपचाप ठहर जाती हैं। जीवन ऐसा ही सारा खेल मानव मन की कल्पना का है। वहीं हमारे साथी कहने कि जब व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में असफल होता है तो वह अपने में क्रोध से युक्त स्वयं को पाता है, जो दुख का मूल कारण होता है। यदि ऐसे ही माहौल में ये गीत मस्तिष्क में आ जाए फिर कहने ही क्या कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि जब गलती नहीं होती और कोई इल्ज़ाम लगाए तो दुख होता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बात जीने की चली है तो मेरी ज़िंदगी के 44वें साल तो खुशियों में बीते, तब हमें गमों का आभास भी नहीं था, इसलिए इसकी ज़रा भी परवाह नहीं की। ये वक्त भी बदल जाएगा। अब जब वक्त एकदम पलट गया तो गमों की परवाह हो रही है। यही परवाह हम उस समय किए होते तो ये गम इतना तकलीफ़ ना देते। अब तो फिर एक इंतज़ार लिए जा रहे हैं कि वक्त फिर बदलेगा। अब कब बदलेगा यही पता नहीं। तो ज़रूर बदलेगा वक्त आपका भी, हम ये कहते हैं, क्योंकि वक्त की तो ये आदत ही होती है, बदलता ही है और बीतता ही है। कभी भी दुख के जो वक्त है वो पूरी तरह उसी तरह नहीं रहता, बस ज़रूरत है कि हम उससे बाहर निकलें। तो आप हमें ये बताइए कि अगर कभी आपको दुख हुआ तो आप क्या करते हैं? गम और दुख भरे गीत सुनकर और दुख में डूब जाते हैं या सकारात्मक गीत सुन के अपने मन को बदलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं? आप क्या करते हैं? क्या दुख में बैठे रहते हैं, दुख को आत्मसात कर लेते हैं, या सुख की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, मन को बदलने की कोशिश करते हैं? ये आप हमें बताइए। तब तक हम आपको एक ऐसा ही गीत सुनवाते हैं जो आपको दुख से सुख की ओर ले जाए। फिल्म का नाम बताइएगा।

0: मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत को फिल्म गीत के लिए फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और हम बातें कर रहे हैं कि अगर हमें दुख होता है तो हम क्या करते हैं, किस तरह से उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि व्यक्ति को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि दुख आए उसके बाद सुख आए, दुखी वाले दिनों को नहीं बोलना चाहिए, उससे प्रेरणा मिलती है। जब दुख होता है तो अपने एक पुराने मित्र को याद कर लेती हूँ, उसकी अच्छाई को याद करके मन को शांति मिलती है, ऐसा हमारे एक साथी कह रहे हैं। एक और साथी हैं कह रहे हैं, जब किसी दुख या दर्द से मेरी मुलाकात होती है तो मैं उसे किसी के साथ साझा करने के बजाय एक काम करता हूँ। गांव से थोड़ी दूर पर एक खूबसूरत सा तालाब है, वहाँ तालाब के किनारे बैठता हूँ, फिर अकेले जी भर कर रोता हूँ। उसके बाद हमारे गांव में बेसहारा राह भटके हुए बच्चों के लिए एक रिमांड होम बना है, उन बच्चों के लिए कुछ मिठाई ले जाता हूँ, उन बच्चों को मेरा

0: के जीवन में सदैव खुशियां ही खुशियां रहें, दुख भरे दिन कभी ना आए ऐसी कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दुख और सुख बने ही रहते हैं जीवन में, ऐसा भी हम कहना चाहते हैं। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप सभी के साथ से हमारे जो भी दुख हैं दर्द हैं वो सब हम से दूर हो जाते हैं। वहीं मालिक साथी कह रहे कि श्रोतागण आज के गीत बहुत ही अच्छे हैं, मैं बहुत बार दुखी होती हूँ तो दर्द भरे गीत सुनती हूँ, अगर कुछ खुशी हो तो खुशी वाले गीत सुनती हूँ, बचपन से ही विविध भारती सुनने आई हूँ। वहीं मालिक साथी कह रहे कि कुछ पल के लिए दुखी होता हूँ फिर सोचता हूँ कि मेरे दुख से होने से किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या दुनिया बदल जाएगी। भाई इस सोच की बजाय आप ये सोच सकते हैं कि ज़्यादा देर दुखी रहने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या मैं इससे बदल सकता हूँ दुखी रहकर, तो बिल्कुल भी नहीं। फिर आपको एक हौसला मिलेगा कि आपको आगे बढ़ना है और खुद के इस दुख को दूर करना है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं दुख से संबंधित बात कहते हुए कि कई दुख मैंने झेले हैं, अब तक इस जीवन में उन दुखों को मैं सहन भी कर लेता हूं, परंतु जब मैं किसी अपने को या रिश्तेदार को या मिलने वाले को इस संसार से परलोक के लिए बिछड़ते देखता हूं तो ये दुख मेरे लिए असहनीय हो जाता है, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाता। फिर भी परमपिता परमेश्वर की इच्छा मानकर दुख सहते हुए अपने आप को शांत करना ही पड़ता है। वहीं हमारे एक साथी ने अंग्रेजी में कमेंट किया है जिन्हें हम हिंदी में सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुख दर्द ये सब जो भी हैं वो अनुभव हैं, एक ऐसे अनुभव हैं जो हमारे खुशी और आनंद के पलों को और ज़्यादा अच्छा कर देते हैं और ज़्यादा मीठा बना देते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुख और दुख रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। और आगे उन्होंने लिखा जीवन चक्र में कोई चीज़ शाश्वत नहीं है, बंद मुट्ठी आए थे खुले हाथ जाना है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो। मैं आज राजकोट आया हूँ, पल दो पल समय मिला तो लिख लिया, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि खुश इंसान कहीं नहीं रह सकता, अगर वो दिन भर खुश रहने के नए नए तरीके खोज ले तो खुश रह सकता है, जैसा कि विविध भारती पर गीत सुनकर और ऐसी कई चीज़ों में आप खुश रहने का तरीका खोज सकते हैं। तो भाई देखिए, पहले आपने ही कहा कि खुश रहने के चाहे तो कहीं खुश नहीं रह सकता, फिर आपने ही तरीका बताया कि किस तरह से खुश रह सकते हैं, तो भाई खोजा जाए तो सारी चीज़ें संभव है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दर्द की आग में जलना ही होता है, जलना ही नहीं होता है, गम से आगे भी कोई रास्ता होता है, आँख छलके तो इस बहान इसे बहने दो, मत रोको, बोझ सीने को का रोने से ही कम होता है, वक्त मरहम है हर एक जख्म का ये याद रखो, शब जितनी भी हो काली सवेरा होता है, अपने खुद को संभालो, जरा ठहरो, देखो हर अंधेरे के पीछे एक चिराग होता है। भाई क्या बेहतरीन बात आपने लिखी, और वाकई ऐसा होता है कि जब भी वक्त में ऐसा कभी भी ऐसा लगता है कि बहुत गम है तो वो दूर हो ही जाता है। वहीं हमारे साथी ने कहा कि ज़िंदगी में गम आए हैं खुशियाँ भी, मैंने बस इतना सीखा कि दुख को दिल पर बोझ बनाकर नहीं एक अनुभव बनाकर जीना चाहिए, और जब खुशी मिले तो उसे कल की चिंता में नहीं आज की मुस्कान में जी लेना चाहिए। हर दर्द हमें कुछ सिखा कर जाता है और हर खुशी एक खूबसूरत याद दी जाती है, इसलिए अब गम से शिकायत नहीं और खुशियों से कोई डर नहीं, जो पल मिला है उसे पूरे दिल से जी लेना चाहिए, शायद यही ज़िंदगी है। गम आए तो थोड़ा रो भी लें, खुशी आए तो खुलकर हंस भी लें, आखिर दोनों ही जिंदगी के रंग हैं। मेरा मानना है कि हर पल को स्वीकार करके मुस्कुराते रहना ही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। भाई क्या ये खूबसूरत बातें आप लिखकर भेज रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा ही गीत आपको सुनवाए। वैसे आप में से बहुत से लोगों के लिस्ट में ये गीत शामिल है, बताइएगा किसने लिखा है।
1: दुख हो या सुख जब सदा

दोस्ती फिल्म का ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा और आपने बिल्कुल सही जवाब हमें दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि दुख का रोना रोकर लोगों की हमदर्दी हासिल करना कतई सही नहीं होता। ऐसे लोगों से समाज ऊब जाता है। जो लोग मेहनत से दुखों को जीत लेते हैं उन्हें समाज से मान सम्मान मिलता है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा कोई दुख कभी नहीं हुआ जिसे मैं कुछ बयां करूं, छोटे मोटे दुख तो आते जाते ही रहते हैं। भाई क्या कहने आपके, ऐसा विचार मन में जब रहता है तो सारे दुखों से हम पार हो जाते हैं। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि दुख दर्द से कौन नहीं वाकिफ है, सिक्के के दो पहलू की तरह गम और खुशी भी आते जाते रहते हैं। जो लोग एहसान फरामोश होते हैं उससे मुझे बहुत दुख पहुंचता है, हंसते हंसते जीना चाहिए। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन सुख दुख का संगम है, एक जाता है दूसरा आता है। मैंने कोशिश यही रहती है कि जीवन में संतुलन बनाकर जिया जाए, सही यही सीख मैं अपने बच्चों को भी देता हूँ। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जीवन में अगर संतुलन कोई बना लेता है तो उसके बाद दुख और सुख हो, चाहे कोई भी कैसा भी एक माहौल हो, कैसा भी भाव हो, हम संतुलित ढंग से रहते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से जीते हैं। वैसे हमने अपने साथियों के जो लिस्ट है उसमें एक गीत देखा था जिसका जिक्र तो अभी कोई कर ही नहीं रहा, लेकिन हम तो देख चुके हैं वो लिस्ट में गीत, और हमारी लिस्ट में भी शुरुआत से वो गीत शामिल था। तो क्यों ना वो गीत आपको सुनवाए, क्योंकि एक जश्न भरा गीत है वो। तो चलिए बताइएगा कि इस गीत में संगीत किसका है।

कर्ज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत से सजा था। हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्हें दुख होता है जब वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाती, लेकिन उन्होंने कमेंट किया है और वो कार्यक्रम सुन रही हैं, तो इसका मतलब कि वो इस कार्यक्रम में तो शामिल ही हैं। तो किसी न किसी तरह से आप हमारे कार्यक्रम में बिल्कुल शामिल रहते हैं। जिस तरह से शामिल कर रहे हैं हम कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, और आपको बताना है कि फिल्मी पर्दे पर किस पर फिल्माया जाता है, फिल्माया हुआ दिखाया गया है ये गीत।

तो ये पल भी जाने वाला है। गोलमाल फिल्म के इस गीत में नायक अमोल पालेकर नजर आते हैं और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि कल विविध भारती के जश्न में आप सभी से मुलाकात होगी। फेसबुक पेज पर लाइव बने रहिएगा हमारे साथ। सुरीला सफर कार्यक्रम आज का बस यही समाप्त करते हैं।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवादक जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 48वीं कड़ी।

संविधान समिति के समक्ष नए सिरे से प्रदर्शन के समय मास्टर कृष्ण राव ने वंदे मातरम की अलग अलग प्रकार से धुन रिकॉर्ड की थी। मार्चिंग सॉन्ग, ध्वजारोहण, ध्वज वंदन, ध्वज अवरोहण के समय राष्ट्र गीत के रूप में बजाने के लिए कुछ निश्चित सेकंड की ध्वनि रिकॉर्डिंग पाश्चात्य पद्धति से रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसी के साथ झिंझोटी राग की मूल संगीत रचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया था। संसद में मास्टर कृष्ण राव ने ये ध्वनि रिकॉर्डिंग और प्रत्यक्ष अपने गायन से वंदे मातरम के प्रदर्शन

0: ये प्रदर्शन अत्यंत प्रभावी हुए। अधिकांश संसद सदस्यों को ये संगीत रचना और वंदे मातरम का राष्ट्रगीत के रूप में स्थान स्वीकार्य था, परंतु दुर्भाग्य का आघात एक बार फिर यहाँ वंदे मातरम पर हुआ। प्रदर्शन प्रस्तुत होने के बाद पंडित नेहरू ने मास्टर की प्रशंसा की। वंदे मातरम को हम राष्ट्रगीत के समान स्थान देंगे, ऐसा भी कहा। 24 जनवरी 1950 की संविधान समिति की बैठक में कोई मतदान न होते हुए उस पर की चर्चा को टालकर संविधान समिति के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने जन गण मन को राष्ट्रगीत का स्थान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के समान दर्जा दिए जाने की घोषणा की। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा वक्तव्य दिया।
1: जन गण मन इन शब्दों से बना गीत और संगीत भारत का राष्ट्रगीत है। इस गीत के शब्दों में सरकार को समय पड़ने पर आवश्यक बदलाव करने का अधिकार रहेगा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर का सम्मान दिया जाएगा और उसकी प्रतिष्ठा वैसी ही रहेगी। मुझे लगता है इससे सदस्यों को संतोष होगा। इस वक्तव्य के कारण जनगण मन को नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगीत और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गई। मास्टर कृष्ण राव कुछ निराशा के साथ पुणे लौटे, पर उस निराशा में भी इस बात का संतोष था कि वंदे मातरम को नजरअंदाज नहीं किया गया। मास्टर कृष्ण राव का वंदे मातरम का अभियान वहीं समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद भी विभिन्न सभा समारोहों में वे वंदे मातरम गाते रहे। शास्त्रीय संगीत की महफिल का समापन करते समय भी वे आग्रहपूर्वक वंदे मातरम का गायन करते थे। 1952 में चीन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से गए कलाकारों में मास्टर कृष्णराव, ज्योत्सना भोड़े, हीराबाई बड़ोदेकर जैसे नामी कलाकार थे। पेकिंग यानी आज के बीजिंग में हुए कार्यक्रम के अंत में इन सभी कलाकारों ने वंदे मातरम का गायन किया था। मास्टर कृष्णराव के बाद उनके शिष्य पंडित राम मराठे भी अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम अवश्य गाते थे।

0: मास्टर कृष्णराव की तरह वीडी अंबेकर ने भी वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाने के लिए प्रयास जारी रखे थे। नागपुर के वीडी अंबेकर संगीत विशेषज्ञ तो थे ही, पर स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। 1927 में गो बैक साइमन के नारे लगाने पर लाठीचार्ज झेला। 42 के आंदोलन में भी उन्होंने भेष बदलकर गुप्त पत्रिकाएं बांटने का काम किया। प्रभात फेरियों में शामिल हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, नची केलकर, साने गुरुजी, भाई परमानंद जैसे कई लोगों के सामने उन्होंने अपनी खंबावती राग में की गई रचना सुनाई थी। केंद्रीय प्रसारण मंत्री काका साहेब गाड़गिल ने अंबेकर को दिल्ली बुलाया और संविधान समिति के सामने प्रस्तुति का अवसर दिया। मुख्य सचेतक सत्यनारायण सिंह, पीसी रे, पट्टा भी सीतारामैया, आचार्य कृपलानी और संविधान समिति की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उपस्थित थे। नमूने के तौर पर बनाई गई अलग अलग अवसरों पर बजाने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई ध्वनि रिकॉर्डिंग बजाकर दिखाई गई। उस पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अपनी जगह से खड़े होकर बोले,
1: I will be the first man to purchase the record if you sing it in the same tune which you have sung just now. Very impressive.
0: आगे यही मिश्र खंबावती राग की रचना वरिष्ठ गायिका गान तपस्विनी मोगुबाई कुर्डिकर की आवाज में रिकॉर्ड की गई। मोगुबाई की आवाज में ये राष्ट्रगीत की गंभीरता को बनाए रखने वाली सुंदर रचना है।

0: दिलीप कुमार रॉय, वीडी अंभईकर, मास्टर कृष्ण राव के संगीतमय प्रयासों से वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के समान दर्जा मिलने में निश्चित रूप से मदद हुई। वंदे मातरम ने जैसे राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इतिहास रचा, वैसा ही इतिहास इस गीत की संगीत यात्रा का भी है।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 48वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रेकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रेकर और मंदाकिनी जोशी। वंदे मातरम की दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स मिलिंद सबनीस जी के संग्रह से साभार। तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मौसम विज्ञान ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाई ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 12 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या बढ़कर 72 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बातचीत के दौरान भावुक कैप्टन स्मिथ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का फोन आने पर अपनी खुशी और गर्व का अनुभव किया।
2: मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था, बट जान के मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में, मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था और मुझे पता है कि वो भगवान ने मेरे को बचाया।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस के विदेश, व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिये के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, UPI के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय

0: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ बैठक में श्री गोयल ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अनुपम मिश्र।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई अन्य मंत्रियों, सांसदों तथा विद्यार्थियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12-13 वर्षों में खादी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं।
1: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं। युवा मोदी जैकेट पहन रहा है, मोदी कुर्ता पहन रहा है। युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है। खादी की कुर्ती हो, जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज थिरु के कामराज की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि थिरु के कामराज ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा और आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको अटल सुरंग के माध्यम से इस दृष्टि को साकार रूप देने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
2: विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे के नीचे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्मित अटल टनल आधुनिक इंजीनियरिंग और सीमा सड़क संगठन की तकनीकी क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देश की महत्वपूर्ण आधारभूत और सामरिक परियोजनाओं में शामिल अटल टनल, जहां प्रदेश के कुल्लू व जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को वर्ष भर हर मौसम में जोड़े रखती है, वहीं आज हिमाचल प्रदेश के विकास, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 9 किलोमीटर से अधिक लंबी अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। इस पर करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल टनल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव आया है। लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग निवासी सोनम जांगपो ने बताया कि अटल टनल स्थानीय लोगों के लिए परिवहन, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
3: अटल टनल जो खुलने से पहले हमें रोहतांग टॉप होके कुल्लू मनाली जाना पड़ता था, जिससे हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही टनल खुला उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम इजिली, इमरजेंसी कभी भी कुछ भी रहता है हम इमीडिएट एक दो घंटे के अंदर कुल्लू पहुंच जाते हैं। हमारे जो फसलें हैं, जो किसान भगवान भाई है, उन सभी के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: अटल टनल रोहतांग के बनने से जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं इसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों खासतौर पर लेह लद्दाख के लिए वर्ष भर आवागमन और अधिक सुगम हो गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में पंजाब के हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह सीनियर के प्रयासों की सराहना की थी। एक रिपोर्ट।
4: ओलंपियन राजेंद्र सिंह 1980 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जिसे इंडिया ने राजेंद्र सिंह द्वारा 3 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान से जीता था और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वह 1990 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई से जुड़े और अपना कोचिंग करियर शुरू किया। उनके समय में सब जूनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने कई नेशनल अवार्ड जीते। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि राउंड ग्लास अकादमी पंजाब में 60 हॉकी अकादमियां चला रही है, जिसमें 6 से 8 साल की उम्र के लड़कियों समेत 3,000 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल की बारीकियां सीख रहे हैं।
5: मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरा जिक्र किया और मुझे मेरे काम की सराहना की। मैं पिछले 5 वर्षों से राउंड ग्लास स्पोर्ट्स अकेडमी के साथ युवाओं को हॉकी को आगे ले जाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरणादायी शब्द सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और साथी कोचेस ओलंपियन को भी प्रेरणा दें।
4: उन्होंने भारत के लिए मजबूत हॉकी टीम बनाने के लिए काबिलियत वाले युवाओं को कोचिंग देते रहने का भरोसा दिया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
6: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाउ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की सेपक टकरा के सेमीफाइनल में भारत को जापान से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत पदक तालिका में 72 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे कमर जलालाबादी के बोल। हावड़ा ब्रिज फिल्म के इस गीत को संगीत से सजाया ओपी नैयर ने।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मुकेश की आवाज में आशिक फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की तर्ज बोल शैलेंद्र के। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में माया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द, सलील चौधरी का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: छोटी सी ये दुनिया।
1: किशोर कुमार को आप सुन रहे थे रंगोली फिल्म के इस गीत में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: छोटे नवाब फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, राहुल देव बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के बोल।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्रोफेसर फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरा जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमें।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: नमस्कार,
1: दिन के 3 बजे हैं, आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार सुनिए।
2: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए नशे से दूर रहने और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया है। वे सोलन जिला के कसौल स्थित एक निजी स्कूल में नशा निवारण संकल्प अभियान के दौरान बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए परिवार और शिक्षण संस्थानों सहित समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है।
3: हिमाचल प्रदेश एक देव भूमि कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर नशा का आना निश्चय ही एक चिंता का विषय है। तो विभिन्न स्तर पर स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और समाज में बहुत सी ऐसी NGO हैं जो उस पर काम कर रही हैं। मैं चाहता हूँ कि जो नशा है वो समाज के लिए अभिशाप है, हमारे लिए वो चिंता का विषय बन गया है। इसको जड़ से मिटाने के लिए समाज को खड़ा होना होगा और संस्कार जो हमारे घरों से हमें मिलते हैं उसको भी हमें लेना होगा। मिलजुल करके, कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे तो निश्चय ही हम हिमाचल से नशे को मुका पाएंगे।
2: इससे पहले राज्यपाल ने सोलन जिला में गण की सेर में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रोहडू और रामपुर क्षेत्र के दौरे पर हैं। उन्होंने रोहडू विधानसभा क्षेत्र के बटवाड़ी में जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इनके जल्द समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्थानीय महिला मंडलों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा सहित क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए धनराशि देने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने धमवाड़ी स्कूल को CBSE बनाने की भी घोषणा की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोहडू विधानसभा क्षेत्र के भटवाड़ी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके आदर्श और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को इन दोनों महान नेताओं द्वारा दिखाए गए सत्य, अहिंसा, सादगी और राष्ट्र सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। इस बीच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमीरपुर में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू सहित अन्य गणमान्य लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि ये दोनों महान विभूतियां प्रत्येक भारतवासी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस दौरान प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर सुबह के समय प्रभात फेरियां भी निकाली गई। नाहन में एक कार्यक्रम में विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
4: दोनों ही महान सपूत थे देश के, जिन्होंने देश को और समाज को समय समय पर संदेश दिए और नई दिशा दी, और उनके बहुमूल्य योगदान को देश भुला नहीं सकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जहां स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया, वहीं समाज को कई संदेश भी दिए। उन्होंने अहिंसा के पथ पर चलकर देश को आजादी दिलाई। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने अल्प समय उन्हें मिला देश की सेवा में, उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय लिए, योगदान दिया।
2: विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान आज देश में जन भागीदारी का एक व्यापक आंदोलन बन चुका है। राजधानी शिमला में आज पुराने बस अड्डे के समीप चलाए गए स्वच्छता अभियान के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और पिछले 12 वर्षों में देश में स्वच्छता को लेकर व्यापक जन चेतना पैदा हुई है। जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार के सितंबर 2026 तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि ग्रामीण भारत में 12 करोड़ 22 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए जा चुके हैं। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने देश भर में लागू होने वाले विशेष छूट अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में ये आगामी 16 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% तक की छूट दी जाएगी। कुल्लू शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में देश का अग्रणी शहर बनाने के उद्देश्य से कुल्लू बदलाव की ओर अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू में स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक कुल्लू दशहरा उत्सव से पहले शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित रूप से देने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में कचरा फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए विशेष फ्लाइंग स्क्वाड गठित किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
5: प्रादेशिक समाचार के बाद अब पेश है सामयिक चर्चा। विषय है वन्य जीव सप्ताह 2026। वाचक स्वर राकेश शर्मा।
2: वन्यजीव सप्ताह प्रतिवर्ष भारत में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। केंद्र व राज्य सरकारों, पर्यावरणविदों, कार्यकर्ताओं, शिक्षकों आदि द्वारा लोगों में वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता में तेजी लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। भारत में विभिन्न प्रजातियों का विशाल भंडारण है, इसलिए भारत में कई सम्मेलनों, जागरूकता कार्यक्रमों और प्रकृति प्रेमियों के बीच सार्वजनिक बैठकों का आयोजन भी किया जाता है। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में बच्चों के लिए वन्य जीवों से संबंधित निबंध लेखन, चित्रकला, संभाषण और फिल्म स्क्रीनिंग आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। वन्य जीव प्रकृति की अमूल्य देन है। भविष्य में वन्य प्राणियों की समाप्ति की आशंका के कारण भारत में सबसे पहले 7 जुलाई 1955 को वन्य प्राणी दिवस मनाया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से पूरे सप्ताह तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाएगा। वर्ष 1956 से वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। भारत के संरक्षण कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचे की रचना की गई है। भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाए जाने के प्रमुख उद्देश्य हैं प्रत्येक समुदायों व परिवारों को प्रकृति से जोड़ना, मानव के अंदर संरक्षण की भावना पैदा करना, वन्य जीव और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक रहना। इस अभियान की उद्देशिका यह है कि हमें हमेशा प्रत्येक वन्य प्राणी, पशु पक्षियों और पौधों को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ क्षेत्रों को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी घोषित किया है। सरकार ने अधिनियम के तहत सभी जंगली जानवरों और पक्षियों आदि के शिकार पर रोक लगाई है। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान भी रखा गया है। प्रकृति के अनुसार मानव, पर्यावरण और वन्य जीव एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। मानव शरीर व मस्तिष्क को स्वस्थ रखने, शुद्ध ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पर्यावरण को शुद्ध व साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी है। पर्यावरण से ही मानव का जीवन संभव है और पर्यावरण को शुद्ध व साफ सुथरा रखना है तो वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करना जरूरी है। वन्य जीव सप्ताह मनाने की गंभीरता स्कूली बच्चों, युवा लोगों और आम जनता को वन्य जीवन के बारे में शिक्षित व जागरूक करने के साथ साथ सरकार के काम करने में, नीतियों को डिजाइन करने में और आज के बदलते परिवेश में वन्य जीव संरक्षण के मुद्दों का समाधान करने में भी मदद करती है। भारत संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। यहाँ प्रत्येक दिन को महत्ता दी गई है जिसे हम किसी न किसी रूप में मनाते हैं। इसी के चलते हम 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। वन्य जीव पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। देश के धन का गठन इन्हीं से होता है। इसमें जंगली जानवर, पक्षी, पौधे आदि शामिल हैं। वन्य जीवों के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, इसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए वन्य जीवों के महत्व को समझने व उनके प्रति जागरूक रहने के लिए संपूर्ण विश्व में एक अभियान के रूप में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे लाने के लिए भारतीय वन्य जीव बोर्ड ने वन्य जीव सप्ताह मनाने का निर्णय लिया और तब से ये 2 से 8 अक्टूबर तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आज प्रकृति से जो भी प्राप्त हो रहा है सबकी कुछ ना कुछ महत्ता है, चाहे वो जीव हो या पेड़ पौधे, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज यदि वृक्ष हैं तो ही मानव और प्राणियों का जीवन संभव है। मानव हस्तक्षेप के द्वारा आज लगभग 41,000 से भी अधिक जीवों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। उनका जीवन संकट में पड़ने लगा है। ऐसा क्यों? क्या हम भूल बैठे हैं कि उनके ना रहने से हमारा जीवन भी संकट में पड़ जाएगा? प्रकृति का सारा संतुलन बिगड़ जाएगा? विलुप्त हो रही पशु पक्षी, पेड़ पौधों की प्रजातियों से प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तब मानव के पास केवल पछतावा होगा, ना पेड़ पौधे होंगे और ना ही जीव जंतु रह जाएंगे। यदि हम भी, हमारी आंखें खुल जाएं तो हम जैव विविधता हो रहे ह्रास को दूर कर सकते हैं। हम जीव जंतु और वनस्पतियों की रक्षा को अपना परम कर्तव्य मानकर आगे बढ़ें तभी विकास कर पाएंगे। वन और वन्य जीवों को भारतीय संविधान की संवर्ती सूची में रखा गया है। भारत सरकार के तहत एक केंद्रीय मंत्रालय वन्य जीव संरक्षण संबंधी नीतियों और नियोजन के संबंध में दिशा निर्देश देने का कार्य करता है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत के संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 2 नए अनुच्छेदों को जोड़कर वन्य जीवों से संबंधित विषय को संवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही सामयिक चर्चा

0: संपन्न हुई। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली मैम,
0: नमस्ते। बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: ग्राम कल्याण निखर से कामनी पटेल
0: कामिनी पटेल बात कर रही हैं।
1: जी। मैम
0: अपने बारे में कुछ बताइए
1: सुधार मशीन करती हूँ, वो सखी सहेली कार्यक्रम सुनती है मैम।
0: जी। आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं कामिनी जी?
1: मैम जी ऊर्जा काले कावा
0: गदर फिल्म का गाना आपको सुनना है, उड़ जा काले कावा।
1: जी।
0: आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर सखियों का मनपसंद कार्यक्रम हेलो सहेली, और शुरू करते हैं सखियों के फोन कॉल का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ जुड़ी है हम जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए और आपने कहाँ से कॉल किया है ये भी बताइए।
1: जी मेरा नाम रूही है, मैंने पंजाब से फोन किया है।
0: पंजाब के कौन से शहर में आप रहती हैं रूही जी?
1: जी मैं मोहाली में रहती हूँ।
0: मोहाली के बारे में कुछ बताइए, कैसा शहर है?
1: जी बहुत अच्छा शहर है पंजाब का है
0: जी।
1: ना, चंडीगढ़ के पास लगता है।
0: और चंडीगढ़ के आसपास जो भी शहर हैं वहाँ पंजाब में तो वैसे भी ठंड बहुत पड़ती है, और अब मौसम में जब बदलाव आने की शुरुआत हो रही है तो बताएं
1: जी
0: क्या ठंड
1: हाँ
0: पड़ने की शुरुआत हो रही है अभी?
1: हाँ जी जी मौसम एक दो दिनों में ही बदला है, बहुत अच्छा हो गया है, ना
0: जी।
1: गर्मी ना सर्दी।
0: तो अभी ये जो गुलाबी सी ठंडक आने लगी है ये बड़ा
1: जी
0: खुशगवार मौसम हो रहा है वहाँ का।
1: जी मैम हाँ जी
0: और आप क्या करती हैं रूही जी?
1: जी मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और अभी फ्री पीरियड है।
0: अच्छा, तो फ्री पीरियड है इसलिए आपको मौका मिल गया कि आपने
1: हाँ
0: हमसे,
1: मौका मिल गया और आज मैंने पहली बार ही ट्राई किया है और मेरा फोन लग गया।
0: ये तो बहुत ही बड़ी खुशनसीबी की बात है। कई सखियां
1: जी
0: बहुत समय तक इंतजार करती रहती हैं और क्योंकि
1: बिल्कुल
0: लाइनें व्यस्त होती हैं तो उनका फोन नहीं लग पाता,
1: बिल्कुल
0: तो आपको इसके लिए हम बधाई देना चाहेंगे कि पहले प्रयास में ही आपका कॉल लग गया है।
1: हाँ जी शुक्रिया जी। मैं तो
0: और
1: बहुत फैन हूँ जी विविध भारती की, बचपन से ही,
0: जी,
1: जब हम पढ़ते थे और आज हम पढ़ाने लग गए हैं तब से ही।
0: तो पढ़ते समय भी और आज पढ़ाते समय भी रेडियो
1: बिल्कुल
0: का
1: जी
0: साथ
1: पढ़ते
0: बना हुआ
1: समय
0: है।
1: जी प्रैक्टिकल फाइल बनाते थे तब तक मेरे मम्मी जागते थे, और ये हवा महल छाया गीत तो मेरे मोस्ट फेवरेट थे उस टाइम भी
0: और आज कौन से कार्यक्रम हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करती हैं?
1: जी। तो यही हर रोज सुरीला सफर, चलो सुन नहीं पाते स्कूल के टाइम में, बट
0: जी,
1: सखी सहेली घर पहुंचते ही सुन लेती हूँ।
0: तो जिस दिन छुट्टी होती है स्कूल की उस दिन आप सुरीला सफर भी सुन लेती होंगी?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, और यहाँ भी जाकर सेस हो फिर तो सुन ही लेते हैं, आधा प्रोग्राम तो सुन ही लेते हैं।
0: तो जब स्कूल में आप होती हैं तो मोबाइल पर सुनती हैं?
1: जी जी बिल्कुल, अभी भी मोबाइल पे ही सुनती हूँ।
0: आप कितने समय से स्कूल में पढ़ाने का काम कर रही हैं?
1: हो गए 10 साल तो हो ही गए
0: तो पढ़ाना कैसा लगता है आपको?
1: जी, मुश्किल ही है इंटरेस्टिंग भी है मुश्किल ही है।
0: बिल्कुल। और अपने इंटरेस्ट का अगर हम कोई काम करते हैं तो कितना भी मुश्किल हो उसमें मजा जरूर आता है।
1: जी मजा जरूर आता है, बच्चों में जी लग जाता है।
0: और बच्चे भी कई बार अपनी बातों से हमें कुछ ना कुछ सिखा देते हैं
1: जी मेरे
0: चीज।
1: मम्मी आपके बहुत फैन हैं, बचपन से सुनते आए हैं, उन्हीं
0: जी
1: की बदौलत ही हम ये विविध भारती सुन सुन के बड़े हुए हैं
0: जी और स्कूल में जब हम पढ़ाते हैं तो एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा सीखने को मिलती है वो होता है धैर्य।
1: जी
0: छोटे बच्चों को पढ़ाते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है।
1: जी बिल्कुल
0: तो रूही जी बताइए आज कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
1: जी, आप लता जी का सुना दीजिए, मिला है किसी का झुमका, परख फिल्म से।
0: परख फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, मिला है किसी का झुमका।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो
0: नमस्ते।
1: दीदी, जिला सागर एमपी मध्य प्रदेश ग्राम कनेरा निखर से सुलोचना कुर्मी बात कर रही हूँ दीदी।
0: सुलोचना जी,
1: जी दीदी, पहली बार कॉल लगा तो दीदी बहुत खुशी हो रही है। दीदी हमारे यहाँ से बहुत सी सखियाँ कॉल करती हैं दीदी। क्या
0: जितनी खुशी
1: दीदी?
0: आपको है उतनी खुशी हमें भी है। तो बताइए सुलोचना जी, आप क्या करती हैं?
1: दीदी घर पे रहते हैं दीदी, घर का काम करते हैं दीदी। मम्मी पापा हैं हमारे, तो वो दीदी खेती किसानी करते हैं, हम तो दीदी घर में काम करते हैं, जितना भी बनता है अपने मम्मी पापा का साथ देते हैं। दीदी पढ़ाई तो हमने नहीं कर पाई दीदी ज्यादा ज्यादा, आ दीदी 10वीं तक हमने पढ़ाई की। उसके बाद क्या हुआ दीदी, हमारे साथ एक मतलब यहाँ पंडापुरा में पढ़ते थे दीदी हम सागर में,
0: जी
1: तो दीदी हमारी एक साल जो तबीयत डाउन हुई थी, तो फिर दीदी हमारे पापा मम्मी ने फिर भेजा ही नहीं दीदी स्कूल
0: तो इसके
1: दीदी।
0: अलावा अगर आप चाहती हैं तो घर पर रहकर भी पत्राचार माध्यम से आप अपनी परीक्षाएं दे सकती हैं और अपनी शिक्षा
1: जी
0: पूरी कर सकती हैं। अभी तो ऐसे
1: हाँ
0: बहुत
1: जी
0: सारे माध्यम हैं जिसमें स्कूल और कॉलेज जाए बिना आप शिक्षा अपनी पूरी कर सकती हैं।
1: जी दीदी करेंगे दीदी, अगर बनेगा प्रयास तो करेंगे दीदी हम।
0: जी, और आपके क्या क्या शौक हैं सुलोचना?
1: दीदी जी हमें रेडियो सुनने का बहुत शौक है दीदी, बचपन में हमारे मम्मी पापा सुनते थे, जब आपके यहाँ से वो कार्यक्रम आता था दीदी, एक वो सुनती थी बहुत, SMS की बहाने भी पीएस की तरह बारह बजे आता था वो,
0: हाँ
1: तो दीदी वो सुनते थे। वो दीदी सखी सहेली तो हमारी हमारे गांव पे हमारी मम्मी और बहुत सी सखियां मतलब साथ में बैठ के सुनती है दीदी।
0: अच्छा, तो सुलोचना जी, आपको गानों के कार्यक्रम ज्यादा पसंद आते हैं या किसी और तरह के एक प्रोग्राम सुनती हैं?
1: दीदी हमें तो सखियों की बातें अच्छी लगती है, गाना तो लगती है दीदी, जैसे ये हेलो सहेली है, सखी सहेलियों में जो आप लोग दो दीदी आती है वो अच्छी अच्छी बातें बताती है पकवान के बारे में कि कैसे बना, कुछ भी मतलब ये जानकारी देती है आप लोग।
0: आप सिर्फ सुनती हैं या कुछ बनाती भी हैं उन पकवानों में से?
1: दीदी बनाते भी है दीदी, हम बना लेते हैं
0: जी अच्छा, अब बताइए कि आज गाना कौन सा सुनवा दें आपको?
1: दीदी। मूवी का नाम है वीरजारा
0: जी
1: और गाने के बोल है ऐसा देश है मेरा।
0: जी आपको सुनवाते हैं वीर ज़ारा फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए आप कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे।
1: जी मैम, मैं पूनम बात कर रही हूँ कानपुर उत्तर प्रदेश से। मैम कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ। पूनम जी आप कैसी हैं?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। आज आपसे बहुत समय बाद, और यूँ कहेंगे कि बहुत अरसे बाद बात हो रही है, और पहली बार बात हो रही है इस कार्यक्रम में।
0: तो इस कार्यक्रम में आज पहली बार आप बात कर
1: जी
0: रही हैं। बहुत अरसे बाद आपका फोन लगा है। इस बात की जितनी खुशी आपको होती है हमें भी उतनी ही खुशी होती है। अपने बारे में कुछ बताइए
1: जी
0: पूनम।
1: मैम, जी मैम मुझे बहुत खुशी हो रही है। और चंचल मैम, मैंने आपको सुना है विविध
0: जी
1: भारती में, और बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति रहती है। और मैम मैं ऑनलाइन जॉब करते हैं, और मेरा जॉब भी रहता है, और आप रेडियो से मैं जुड़ी रहती हूँ। गीत संगीत से बहुत ज्यादा मेरा जुड़ाव है। जी
0: तो आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं पूनम जी?
1: मैम, आज गीत सुनाइएगा, तेरे चाहत के सिवा और कोई मेरी चाहत नहीं। ये गाना अनुराधा पौडवाल जी के बाद में सुनना है। और मैम, हेलो सहेली कार्यक्रम, हेलो फरमाइश और जय माला, और विविध भारती के सभी कार्यक्रम से मैं जुड़ी रहती हूँ, और मैं जरूर से सुनती हूँ, क्योंकि मुझे विविध भारती सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो जब आप जैसे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है पूनम जी। और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: सखियों, अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, बड़ी चहक है आपकी आवाज में। आप खुश हैं, फोन लग गया तो आपका?
1: हाँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज चंचल जी से मेरी बात हो रही है। मेरी खुशकिस्मती है और शुक्रिया उस रॉक का भी जिसने मुझे आज मौका दिया आपसे बात करने का। मैं बहुत ज्यादा इस टाइम अपने आप में बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं सालों से ट्राई कर रही हूँ। मैं श्रीनगर कश्मीर से बोल रही हूँ, मेरा नाम है खालिदा। तो आज बहुत सालों से ट्राई कर रही थी इस प्रोग्राम में, तो शुक्रिया रॉब का भी।
0: तो खालिदा जी, आपका ये पहली बार कॉल लगा है आज?
1: जी, पहली बार इस प्रोग्राम में कॉल लगा है।
0: और कश्मीर जहाँ से आपने कॉल किया है, ये वो शहर है जिसे जन्नत भी कहते हैं?
1: हाँ, जन्नत भी कहते हैं और जन्नत है भी क्योंकि जो भी कश्मीर आता है, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी स्टेट से हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो, तो जब भी कश्मीर को ही पहुंचता है, यहाँ से जाने का फिर दिल और मन भी नहीं करता है।
0: और ये वो जगह है जहाँ हर समय पर्यटक आते जाते रहते हैं, तो बहुत चहल पहल रहती है यहाँ पर।
1: हाँ, बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है और साथ साथ अगर सखी सहेली का संग हो और विविध भारती का संग हो तो फिर तो क्या ही बात है।
0: क्या बात है खालिदा जी, हमें भी ऐसे श्रोताओं का साथ बहुत अच्छा लगता है जो बड़ी शिद्दत से सभी प्रोग्रामों को सुनते भी हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। तो आप बताइए, आपके पसंद के कौन कौन से कार्यक्रम हैं?
1: विविध भारती पे जो आता है, आपकी फरमाइश आता है या जयमाला आता है, सितारा आता है या सुबह फोन इन प्रोग्राम, कुछ भी आए ना इसमें तो हम सब सुनते हैं। और जो भी ईमेल जैसे कभी कभी इसके प्रोग्राम आता है तो वो भी सब सुनते हैं। जयमाला सुनती हूँ, रोज में सुनती हूँ और जो सखी सहेली है इसका भी इंतजार करती हूँ और पिटारा में जो आपकी फरमाइश आता है वो भी सुनती हूँ।
0: अच्छा, ये तो हुई रेडियो सुनने की बात है। रेडियो सुनने के अलावा आप क्या करती हैं? आपका शौक क्या है?
1: जी, मैं टेलरिंग के साथ करती हूँ और यहाँ पे कश्मीर में ज्यादा कढ़ाई होती है। जो पश्मीने के शाल होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, तो यहाँ पे वही ज्यादा काम होता है।
0: और वो कढ़ाइयाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं और उसके चाहे शॉल हों, चाहे हम सलवार सूट पहने, दुपट्टे पहने, सभी चीज़ें बहुत नायाब लगती हैं। तो वो कढ़ाई का काम करती हैं आप?
1: हाँ, कढ़ाई भी करती हूँ और टेलरिंग के साथ भी थोड़ा सा करती हूँ, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे कढ़ाई भी होती है। तो यहाँ की जो लड़कियाँ है, अगर पढ़े भी लेकिन कढ़ाई साथ साथ उनका शौक भी होता है और कमाई के लिए वो भी जरूरी है।
0: जी बिल्कुल, और इसीलिए इस काम की मांग बहुत ज़्यादा है क्योंकि पर्यटक जब आते हैं तो कश्मीरी कढ़ाई के कपड़े खरीदना पसंद करते हैं, तो इसीलिए बाज़ारों में भी उसकी मांग बहुत ज़्यादा रहती है। आपकी बातें भी उतनी ही खूबसूरत हैं। और बताइए कि आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमें सुना है मेरी जंग, इस मूवी का वो सॉन्ग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
0: तो बहुत खूबसूरत गीत आपने पसंद किया है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए। कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: अभिलाषा यादव है मेरा नाम।
0: अभिलाषा जी, कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मैं जयपुर से बात कर रही हूँ आपसे।
0: अपने शहर के बारे में और अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: तो मेरा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जयपुर राजस्थान
0: जी
1: से है। मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करती हूँ मेडिकल डिपार्टमेंट में।
0: नर्सिंग ऑफिसर आप हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ी हैं, तो
1: जी,
0: किस तरह का काम रहता है, अपने काम के बारे में बताइए हमें।
1: ऑल
0: तो
1: टाइम हमें 24 आवर्स की सर्विसेज होती हैं कि जब भी कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें जाना भी पड़ता है। पर अभी मैं 24x7 में केवल एक टाइम की ही ड्यूटी करती हूँ, क्योंकि मेरी डिस्पेंसरी ड्यूटीज हैं अभी फिलहाल।
0: तो इसमें आपकी शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक ही समय आपका नियत समय है, उसमें ही आप
1: हाँ जी,
0: काम कर रही हैं।
1: बिल्कुल
0: फिर आप रेडियो सुनने के लिए भी समय निकाल पाती हैं।
1: बिल्कुल, मैं दोपहर में शाम को मेरा मन होता है उस अकॉर्डिंग मैं अपना शेड्यूल चेक कर लेती हूँ कि भाई कब मुझे क्या सुनना है, तो मैं सेट कर लेती हूँ उस अकॉर्डिंग अपना टाइम।
0: और नर्सिंग फील्ड से आप कब से जुड़ी हैं,
1: करीब 2007 से। हाँ
0: यानी कि करीब करीब 20 साल होने आए हैं आपको इस काम में,
1: जी, हाँ
0: तो अच्छा खासा अनुभव है आपका, और जॉब ने आपको बहुत कुछ सीख भी दी होगी।
1: बिल्कुल, हमारा वर्क ही ऐसा है कि हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हर बार अलग तरीके का पेशेंट होता है, हर बार अलग तरह से केयर करनी होती है, तो
0: जी
1: बहुत सी चीजें, नई चीजें भी सिखा के जाती है हमें। और हमारा जो प्रोफेशन है वो लर्निंग प्रोफेशन ही है।
0: जी ये सेवा भाव का काम है, और अगर आप सेवा भाव से करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं, तो जिन परिवारों के मरीजों की आप देखभाल करते हैं, वहां से आपको दुआएं भी बहुत
1: वो
0: मिलती
1: हमें बहुत,
0: होंगे।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें बहुत दुआएं देके जाते हैं जब वो बिल्कुल ठीक होके जाते हैं, क्योंकि वो हमें ऐसे समझते हैं जैसे डॉक्टर उनके लिए भगवान है। उसी तरह से हम जब उन्हें अपनी सर्विसेज देते हैं तो उनको यही फीलिंग आती है, वो खूब हमें ब्लेसिंग्स देके जाते
0: तो
1: हैं।
0: बड़ा अच्छा काम है आपका। और बताइए अभिलाषा जी, आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: आप हमें ताल मूवी से गाना है, इश्क बिना क्या जीना है, और ये सुनवाएं प्लीज।
0: तो ताल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आपकी पसंद का। आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो सहेली।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्ते, बताइए हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर कौन सी सखी जुड़ी हैं?
1: जी मैम, रिंकू देवी बात कर रही हूँ। मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील ठाठ गांव कंठी से।
0: तो आपके बहुत खूबसूरत शहर से आपने फोन किया है। अपने शहर के बारे में बताइए और अपने बारे में भी कुछ बताइए।
1: पहाड़ी एरिया, यहाँ पर तो मतलब गर्मियों में भी बड़ा अच्छा मौसम रहता है और यहाँ पर लोग आते हैं मतलब घूमने के लिए, क्योंकि अच्छा इलाका है यहाँ का और यहाँ पर मतलब की गर्मी कम लगती है।
0: गर्मी का तो एहसास होता ही नहीं है पहाड़ी क्षेत्रों में। और
1: जी
0: अब
1: बिल्कुल
0: जो
1: मैम,
0: मौसम आने वाला है वो तो बर्फबारी का और बहुत कड़ाके की ठंड का मौसम आने वाला है।
1: जी बिल्कुल मैम, अब तो थोड़ी थोड़ी सर्दी आने लगी है, सुबह शाम थोड़ी सर्दी लगती है इधर।
0: तो रिंकू जी, आप क्या करती हैं?
1: जी मैम, मैं घर का ही काम करती हूँ।
0: घर के कामों में भी आपकी पसंद का काम कौन सा होता है?
1: जी मैम, मुझे तो सबसे ज्यादा मतलब कैसे घर में मैं किचन में काम करना मुझे अच्छा लगता है।
0: तो
1: जी
0: बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम, गाना मैंने दोस्ती फिल्म का सुनना है, राई मनवा, दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। और ये सभी को ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ, मतलब सभी अपनी सहेलियों को बहुत शुभकामना, और आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं।
0: तो आपकी जो सभी सहेलियां हैं उनको भी हम ये गाना सुनवाते हैं और हमारे सभी सुनने वाले इस गीत को पसंद करेंगे। सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: नमस्ते सखी, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं आशा चौहान बोल रही हूँ, गुजरात राजकोट से।
0: गुजरात राजकोट से। तो आस्था जी, अब जो मौसम आने वाला है वो गरबे का मौसम है। आज से बस 9-10 दिन बाद गरबा शुरू हो जाएगा और गुजरात में तो बहुत धूम रहती है, तो
1: बिल्कुल
0: आपको गरबा करना अच्छा लगता है?
1: नहीं, मुझे देखना अच्छा लगता है। मैं हमेशा से डांस पर्सन नहीं रही हूँ, मैं
0: जी
1: स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ।
0: जी
1: मैं साहित्य पसंद किया है मैंने हमेशा, और मैंने कविताएं भी लिखती हूँ, और मुझे डांस देखना अच्छा लगता है, कल्चरल प्रोग्राम्स। और मैं भारत के हर कल्चर को बहुत पसंद करती हूँ, और मुझे भारत के अंदर ही घूमना पसंद है, सारे स्टेट्स के कल्चरल एक्टिविटीज देखना, वहाँ का खाना खाना, वहाँ के नज़ारे देखना, और बस साहित्य से जुड़ी हूँ इसलिए कुदरत को देखना अच्छा लगता है ज़्यादा।
0: और ये जो देश प्रेम का भाव है आपके अंदर, ये बहुत सुंदर है। तो आपने बताया कि आप साहित्य से जुड़ी हैं, आप लिखती भी हैं। अपनी लिखी कोई कुछ पंक्तियां आपको अगर याद हैं, कोई कविता याद है तो हमारे साथ साझा करना चाहेंगी?
1: हाँ जरूर, मैंने दो कविताएं चुनकर रखी है, जब मैंने सोचा फोन लग जाएगा तो मैं आपको सुनाऊंगी। एक कविता है हम हिंदुस्तानी, उसका नाम रखा है मैंने,
0: जी
1: और वो कविता इस तरह से है, शहर को गांव बना दो, क्योंकि आजकल शहर बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी कुदरत को लेकर आ रहे हैं,
0: जी
1: ग्लोबल वार्मिंग और सब, तो उसके ऊपर कविता लिखिए। शहर को गांव बना दो, पेड़ों की बौछार लगा दो, पानी की फुहार बहा दो, शहर को गांव बना दो, खेती की हरियाली बिछा दो, चिड़िया का अंबार लगा दो, मौसम का हाल बता दो, बाइक नहीं साइकिल चला दो, शहर को गांव बना दो। मैं इसके बाद ये बोलना चाहती हूँ कि मैं खुद साइकिल चलाती हूँ, 55 ईयर्स की उम्र है मेरी,
0: और साइकिल
1: और मैं
0: चलाने
1: दूसरी
0: से
1: कविता।
0: एक फ़ायदा तो ये है कि प्रदूषण जो है वो कम हो जाता है और
1: हाँ
0: आपकी
1: बिल्कुल,
0: सेहत है वो भी बरकरार
1: हाँ
0: रहती है। और जैसा अभी आपने कविता सुनाई कि शहरों को गांव बना दो, तो वाकई अगर ऐसा हो सके तो जो खुशहाली है वो फिर से लौट आएगी और जो प्रदूषण है वो बहुत हद तक कम हो सकेगा।
1: बिल्कुल, लेकिन 80% लोग जो नहीं सोच पाते या सोचते नहीं है, क्योंकि ज्ञान की कमी है और शिक्षा की कमी है थोड़ी सी, उनको भी सोचने की जरूरत है, तो इस दुनिया में कुछ भी खराब नहीं होगा, हम अगर
0: बिल्कुल।
1: सब समझ जाएंगे।
0: और आप जैसे जागरूक लोग जब तक हैं तो एक ही इंसान आगे और 4 लोगों को जागरूक कर सकता है। और आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी। हम चाहेंगे कि आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाएं, तो बताइए आपकी
1: जरूर,
0: पसंद क्या है?
1: मेरी पसंद का जीवन मृत्यु पिक्चर का कोई भी गाना आप सुना दीजिएगा, झिलमिल सितारों वाला सुना दीजिएगा। मेरी दूसरी कविता जो मैंने निकाल रखी थी उसकी भी 4 पंक्तियां सुना देना चाहती हूँ आपको,
0: जरूर सुनाइए।
1: जरा के हम सफर, उस कविता का नाम है रखा है मैंने, समंदर को के मोती चुरा कर सीप बना दो। इंसान कुछ भी कर सकता है, सीप में से मोती निकलती है,
0: जी
1: लेकिन मोती में से भी सीप बना सकते हैं इंसान, ज्वेलर है वो बना सकते हैं, इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव करे कुदरत के लिए और इंसानियत के लिए और पशु पक्षियों के लिए भी,
0: जी
1: नेगेटिव ना करे। समंदर के मोती चुरा कर सीप बना दू, कर्म क्षेत्र की राही हूँ मैं दीप बना दू, उद्वेग मन के मीत बना दू, हार नहीं जीत बना दू।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर आपने अपनी कविताएं सुनाई हैं। आपकी पंक्तियां, आपकी लेखनी बहुत खूबसूरत है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। तो बस अच्छी अच्छी कविताएं लिखती रहिए और इसी तरह से रेडियो के माध्यम से इन्हें साझा करती रहिए। और आपको सुनवा रहे हैं जीवन मृत्यु इस फिल्म का गीत जो आपने सुनना चाहा है।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और हर बार जब ये कार्यक्रम होता है तो कुछ नई सखियां हमारे साथ जुड़ती हैं और कुछ ऐसी सखियां जो हर थोड़े अंतराल पर हमें कॉल करती रहती हैं। तो जिन सखियों का कॉल आज भी नहीं लगा वे निराश ना हो, हो सकता है अगली बार आपका कॉल लग जाए, इसलिए कोशिश ज़रूर कीजिएगा। जिन सखियों ने हमसे बात की हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें ताकि नई सखियों को भी कॉल करने का मौका मिल सके। और हमारे पुरुष श्रोता, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार के दिन जब हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है उस समय वे कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 400-24662, एक अन्य नंबर है 28670288, मुंबई का SED कोड है 022। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662। दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 28670288, मुंबई का SED कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: विविध भारती
2: गीतों भरी कहानी। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर है ममता सिंह का।
3: आज अचानक ठंड बढ़ गई है। गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करती हुई लॉन में आ गई है। लॉन के किनारे किनारे की घास अभी भी गीली है।

क्यारियों में लगे फूलों और पौधों की पत्तियों पर ठहरी ओस की बूंदों पर पड़ती सूरज की किरणें मोती सी चमक रही हैं। धुएं जैसे उड़ते हुए बादल सूरज को ढक लेते हैं। छिपा छिपी खेलती बदली और धूप उसे गुदगुदा रही है। मन भी धूप छाही हो रहा है। घास पर जैसे मोर पंख बिछ गए हों और उसकी आंखें जगर मगर कर रही हों। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर ने सबके सामने हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया तो कितना रोमांच हुआ था। मारे खुशी के जैसे पंख लगाकर वो उड़ चली हो आकाश में।

शूटिंग में उसे बहुत सारी समस्याएं हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी,

बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कंपटीशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन।

0: वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठकर कमरे में बंद हो गई थी। वॉल साइज विंडो पर लगे पर्दे झटके से खींचकर कमरे में अंधेरा कर एसी चलाकर चादर तान कर लेट गई थी।
1: 7 बजे यहाँ सूर्यास्त होता है, 8 बजे लोग दफ्तर से घर लौटकर शाम की चाय पीते हैं। ये कोई सोने का वक्त है। उठो दिव्या, दिव्या उठो,
0: कहते हुए पारो ने चादर खींचकर परे सरका दिया। वो सिराने बैठकर दिव्या को दुलराती हुई बोली,
1: भूख हड़ताल से तुम अपने मन की करवा लोगी।
0: दिव्या तमक कर उठ बैठी।
1: तो फिर तो क्या करूं मम्मी, क्या करूं कि मेरी डिमांड पूरी होगी? आखिर इस घर में जरा भी अपनी मर्जी के करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कॉलेज की 10 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं उस कैटवॉक शो में। मम्मा मैं अकेली नहीं हूं, उस शो में सिर्फ 1000 रुपए ही तो फीस है, आखिर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप लोग?
2: सवाल रुपए का नहीं है, ड्रेस का है, ड्रेस का। फैशन टीवी की नेकेड लड़कियों की तरह तुम भी पूरा बदन हिलाकर बिल्ली चाल चलोगी, हैं?
1: मम्मी बिल्ली चाल नहीं, कैटवॉक।
2: अरे तो कैटवॉक कर मिस वर्ल्ड मिस इंडिया बन जाओगी।
1: क्या कहेंगे हम लोग अपनी सोसाइटी वालों से?
0: सोसाइटी वाले अब दूर हो गए हैं ना, अब तो चौल की दुनिया से हम टावर में रहने आ गए हैं। अब भी सोसाइटी वालों का आखिर कैसा डर, कैसा खौफ?
1: मम्मी ये सिर्फ फैशन शो है, स्टेज पर कैटवॉक करना है।
2: अरे इस पर हमें प्राइज मिलेगा,
1: आजकल स्कूल कॉलेज में इस तरह के कॉम्पिटिशन होते रहते हैं।
0: पता है लास्ट ईयर रीना ने जीता था ये अवार्ड, उसे तो आप जानती है ना, कितनी अच्छी है रीना।
2: अरे बिटिया हमने हामी भर दी तो तेरे पापा नहीं मानेंगे। जैसे तैसे तेरे पापा को भी मना लिया ना, तो तेरे चाचा को खबर लग गई ना, तो वो पढ़ाई छुड़वा कर तेरी शादी करवा कर ही दम लेंगे। हाँ
1: अपने पापा को तो तू अच्छी तरह से जानती है ना, चाचा के खिलाफ एक को लफ्ज नहीं सुनते वो।
0: दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। ये ड्रेस मत पहनो, स्लीवलेस नहीं चलेगा, शॉर्ट्स मिनी स्कर्ट पहनना तो अलाउड ही नहीं था, सिर्फ कॉलेज जाते वक्त जीन्स और टॉप पहनने की बड़ी मुश्किल से इजाजत मिल सकी थी, लेकिन साथ में स्टॉल या दुपट्टा डालना जरूरी था। कॉलेज के शुरुआती दिनों में दिव्या घर से सलवार सूट पहनकर निकलती और रायमा के घर चेंज कर जीन्स टॉप पहनती और उसके बाद कॉलेज जाती। एक दिन चाची ने देख लिया तो खूब हंगामा हुआ। पापा की हर बात मानने वाली मम्मी ने इस बार मर्म को समझा और उन्होंने वेस्टर्न पोशाक पर मुहर लगा दी थी, पर शर्त ये कि गला डीप नहीं होना चाहिए। कॉलेज जाते वक्त किसी लड़के से मेल जोल नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, किसी की बाइक पर लिफ्ट नहीं लेना जैसी नसीहतों की घुट्टी मम्मी रोज पिलाती थी। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना, एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। कभी कभी रायमा की बिंदास बातें उसे सही लगती थीं। सब कुछ अपनी मर्जी से करो, घर वाले कन्विंस्ड ना हो तो उनसे बहाने बनाओ। वो तो अक्सर लड़के लड़कियों के ग्रुप के साथ ट्रैकिंग पर चली जाती थी, उसके घर वाले राजी भी हो जाते थे। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं कि अभी भी गांव वाली मानसिकता उनके भीतर गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। अरे समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। विचार उसूल ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। वक्त पर खाना खाना, पैसे कमाना, साल में एकाध बार कहीं परिवार के साथ घूमने जाना, यही शानो शौकत की जिंदगी है इनके लिए। उनके मुताबिक दिव्या को ये सब तो मिल रहा है। पारो दिव्या को समझाकर परेशान हो गई।
2: दुखी होकर वो कमरे से चली गईं। उनके जाते ही दिव्या उठी, अपने कटे बालों में बैकपिन लगाते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। आगे पीछे मुड़कर गर्दन टेढ़ी करके हर तरफ से अपने को निहारती हुई अपने ही रूप पर मुग्ध होती रही। रंग सांवला है तो क्या हुआ, रूप और फिगर तो है ना खूबसूरत और चार्मिंग। दिव्या ने वार्डरोब से अपनी टाइट फिट साइड कट मैक्सी निकालकर पहनी, हल्का मेकअप किया और इस तरह मटक कर हाथ हिलाकर बोलती रही जैसे टीवी की कोई वीजे हो।
1: अगर मम्मी पापा राजी हो गए तो पक्का कॉलेज क्वीन का खिताब उसे ही मिलेगा।
2: सोचते हुए आंखें मूंद कर थोड़ी देर के लिए दिव्या अपनी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल की कायद से बाहर निकलकर फैशन शो के भव्य स्टेज पर पहुंच गई थी, जहां सामने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स बैठे थे। दर्शकों का हुजूम था, तालियों की गड़गड़ाहट थी। अक्सर दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी, जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब। ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी।

कंग्रेचुलेशंस। अरे किन ख्यालों में खोई हो बार्बी डॉल। इरफान दिव्या से हाई फाई करते हुए बोला। दिव्या अपने कॉलेज के दिनों से छम से कूदकर वापस आ गई हॉस्टल के लॉन में, जहां सर्दी की नरम धूप का एक टुकड़ा दिव्या के नीले स्वेटर पर अटक गया था। क्यारियों में दुपहरिया खिलकर मुस्कुरा रही थी। हॉस्टल की दीवारों पर लटके बोगनविलिया रानी गुलाबी रंग से नहाकर और ताजा हो गए। दिव्या, यू आर वेरी लकी। तुम्हारा प्रोजेक्ट खूब खूब लाइक किया गया है। और पता है, रावत सर लास्ट मीटिंग में तुम्हारी और तुम्हारी बनाई डॉक्यूमेंट्री की चर्चा कर रहे थे और तारीफ भी कर रहे थे। दिव्या बुत बनी बैठी रही। कोई जवाब नहीं दिया उसने। दिव्या के मन में इस समय यादों का भूचाल सा आया हुआ है। हॉस्टल में आए 3 साल हो गए हैं। घर वालों को लेकर वो कभी भी इतनी व्यग्र नहीं हुई, पर आज मम्मी जैसे सामने हैं। सौम्या दी की नसीहतें सामने हैं। दिव्या स्मृतियों की रेतीली आंधी और तपिश से झुलस गई है। उड़ती हुई रेत से दिव्या अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेत की किरकिरी मुंह में भी भरी जा रही है और जैसे उसका पूरा बदन और मन रूखा हुआ जा रहा है। तपिश और दंश को छोड़ आई है घर पर वो, लेकिन हॉस्टल की जद्दोजहद भी कहाँ कम है। आर्थिक तंगी, पढ़ाई का प्रेशर, प्रोजेक्ट पूरा करने का तनाव और दबाव, रिश्तों के समीकरण, इस सब में निपट अकेले तालमेल बिठाना कितना कठिन हो गया है। एक समय था जब अपनी सारी जिम्मेदारी घर वालों पर थी, सारा दोष घर वालों पर मड़क देती थी, पर अब अपनी गलतियों की सजा खुद को ही देनी है, खुद को अपनी पीड़ा से भी

दिव्या खुद को तपते रेगिस्तान में पाती है, जहां दूर तक वीराना है। मालूम है नियत दूरी तय करने पर उसे लोग मिलेंगे, शहर मिलेगा,

0: पर उस दूरी तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और बहुत लंबा संघर्ष है। हॉस्टल के कलीग्स, दोस्तों और टीचर्स के साथ के बावजूद वो खुद को मरुस्थल में जैसे अकेला पाती है। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। कामयाबी कई बार अपनों से भी दूर कर देती है।
1: व्हाट हैपेंड दिव्या, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? अरे अब तो डॉक्यूमेंट्री से भी पैसे आ जाएंगे ना, तुम्हारी कड़की के दिन भी अब खत्म होने वाले हैं। रिलैक्स्ड, अब सिर्फ स्कॉलरशिप के भरोसे नहीं जीना होगा तुम्हें।
0: नहीं यार, खुश हूं, खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। आज पता है, आज मुझे घर वालों की बहुत तलब लगी है, मम्मी की बहुत याद आ रही है।
1: खैर छोड़ो। अरे तो तू उन्हें फोन करके बता दे कि तू बहुत खुश है, तुझे कितनी बड़ी कामयाबी मिली है, वो लोग भी खुश होंगे ना।
0: नहीं नहीं इरफान, उनकी नाराजगी और बढ़ जाएगी। उन्हें पता नहीं है कि हम यहां रात रात भर बॉयज और गर्ल्स साथ साथ काम करते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं, एक दूसरे से हाई फाई करते हैं, लेकिन हम सब सिर्फ एक दोस्त हैं, रियल फ्रेंड्स। वे कभी नहीं समझेंगे मेरी प्रॉब्लम, कभी नहीं समझेंगे। पता है फाइनल एडिटिंग वाले दिन मैं, रायमा और प्रणव सर ने एक ही रूम शेयर किया था, बस थोड़ी देर के लिए झपकी ली थी बारी बारी से। उन्हें इन सब की भनक भी लग जाए ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मैं कौन सा उनके लिए जिंदा हूं, कहां जिंदा हूं मैं उनके लिए। उस दिन मम्मी ने मुझे कह दिया था, तू हम सब के लिए मर चुकी है, मर चुकी है तू हम सब के लिए।
1: छोड़ ना यार, अब आगे की सोच। 2 महीने बाद फंक्शन है, ड्रामा का थीम तैयार हो गया है। इस बार एक ड्रामा और साथ में एक कोरस सॉन्ग भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है?
0: हाँ यार, इट्स गुड आइडिया। पिछले साल का फंक्शन अप टू द मार्क नहीं था, इस बार हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो बस 2 साल और बिताकर यहाँ से सीधा मुंबई वापस लौटूंगी। मम्मी पापा से दूर आई हूँ उन्हें नाराज करके, तो कुछ बनकर ही उनके पास जाऊंगी। मुझे तो टेलीविजन चैनल में काम करना है, बस इतना सा ख्वाब है।
1: हाँ पर तुझे प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो सुना है तेरी बनाई वो साइबर क्राइम वाली डॉक्यूमेंट्री चैनल के लिए अप्रूव हो गई है, वो भी एंटरटेनमेंट चैनल के लिए।
0: हाँ यार, अभी तो सिर्फ अप्रूव हुई है ना, टेलीकास्ट नहीं हुई है। मेरे सीरियल्स जब कई चैनल पर टेलीकास्ट होंगे तब वो मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। वैसे एक चैनल ने हम सब की डॉक्यूमेंट्री का एक मोंटाज दिखाया था, रायमा बता रही थी मुझे।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था, वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। 12वीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। 3 भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था, सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे, जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला, हाँ आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला, अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही है, क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का, मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या सौम्या सौम्या, मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने, तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है, तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में। दी सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है, जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी, मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूं।

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं मां? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हाँ, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहाँ लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है। मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मना

ली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको। लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची। जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थीं, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगीं, बेटी कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा, हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना, हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला, वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आज़ादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना, यही चाहती हैं आप। क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में, सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता, दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली। आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं, वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ। पर अब नहीं, मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, ऊबने लगी हूँ मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना। इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है, इसमें बुराई क्या है, लड़की लड़के सब बराबर हैं आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मालशेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर, पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मालशेज घाट की गगनछूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद कीं। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उस समय पेड़ों के झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोज ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नज़ारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब सी खिली थीं, टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा सारा साथ होगा।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।
0: कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है।

0: कई देशों में भी भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को गर्व महसूस हो रहा है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। गांधी जयंती के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अलीपुर द्वार के बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत बुक्सा वन में एक बाघिन को छोड़ा। ये कदम भारत में बाघ संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूदृश्य संरक्षण और प्रजाति संरक्षण के प्रयासों से प्रेरित होकर बुक्सा में बाघों को पुनः स्थापित करने का वादा पूरा किया गया है। गोवा सरकार के सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पोंडा में आत्मनिर्भरता, कृषि और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गोवा में लगभग 6,000 लखपति दीदियों को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं की आय में वृद्धि करना है। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश से संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री फडणवीस ने राज्य को प्रमुख निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट महाराष्ट्र मंच का भी शुभारंभ किया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन पर भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। इस बार मामला सरकारी निविदा देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार रोधी आयोग ने श्री सेन के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री रहते एक सरकारी परियोजना में वित्तीय अनियमितताओं की जाँच शुरू की है। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम में परवीन हुड्डा ने चीनी ताइपे की नियेन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 65 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर परवीन हुड्डा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि परवीन ने अपनी कुशलता, साहस और पक्के इरादे के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today spoke to the brave Indian pilot Captain Smith Machar, whose heroics in thwarting of an attack by his co-pilot saved 180 lives on the Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv. Captain Machar shared details of his experience with the Prime Minister and spoke about what gave him courage during the incident. The Prime Minister applauded his bravery and wished him a quick recovery. Mr. Modi told him that the whole country is praying for him. He said Captain Smith's courage, presence of mind, and composure saved many lives. The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A Sarvadharma Prarthana Sabha was held at Bapu Samadhi at Rajghat in the national capital. President Draupadi Murmu attended the Sarvadharma Prarthana this morning and paid floral tributes to the father of the nation. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal and Delhi Chief Minister Rekha Gupta also paid tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat. On the occasion of Gandhi Jayanti, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav, along with West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari, released a tigress in the Baksa Forest under the Baksa Tiger Project in Alipur Dwar. The release marks a significant milestone for tiger conservation in India and a fitting beginning to Wildlife Week 2026. Former Trinamool Congress Minister Indraneel Sen is facing a fresh corruption probe if alleged irregularities in the award of a government tender. The West Bengal Anti-Corruption Commission has launched an investigation into large-scale financial irregularities in a government project during Sen's tenure as Minister of Information and Cultural Affairs. This comes after Sen was recently questioned by the Enforcement Directorate over alleged irregularities in the distribution and sale of Durga Puja preview passes in a case involving a scam estimated 50 to 60 crore rupees. The 8th edition of e-auction of gifts presented by to the Prime Minister has been extended until 31st of this month, the Culture Ministry said. This edition features 30 different mementos showcasing the diverse dimensions of Delhi. The Ministry further noted that for auction dates, participation details and the complete catalogue, visit the official PM Mementos e-auction portal, pmmementos.gov.in. The gold rush continued for India at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, as Indian athletes delivered a stellar performance on day 13, clinching 5 gold medals, 1 in wrestling, 3 in boxing and 1 in archery, in a spectacular display of skill, determination and sporting excellence. Indian wrestler Sujit Kalkal scripted a remarkable comeback to win the gold medal in the men's 65kg freestyle event, defeating Tajikistan's Abdulmazid Kudiev 10-9. With this victory, Sujit has joined the elite company of Yogeshwar Dutt and Bajrang Punia, becoming the third Indian wrestler to win Asian Games gold in the men's 65kg category. In boxing, Parveen Huda won the gold medal in the women's 65kg category, defeating Chinese Taipei's Nian Chinchen 3-2 in a split decision in the final. Ankush Panghal clinched the gold medal in the men's 80kg category, defeating South Korea's Kim Min-seong by a split decision 4-0 in the final. Earlier, Lovlina Borgohain also clinched a gold medal in the women's 75kg category, defeating China's Bao Zee. In archery, India's women's recurve team created history by clinching its maiden Asian Games gold medal. The trio of Ankita Bhagat, Kirti Sharma and Kumkum Mohot defeated world champions South Korea 5-3 in a thrilling final. India also bagged silver in the mixed recurve team event. Kumkum Mohod and Dheeraj Bumadevra finished runners-up after going down 3-5 to China in a closely contested final. In Sepak Takraw, India secured the bronze medal in the men's quadrant event. In sailing, Netra Kumnanan clinched bronze in the women's dinghy event. With this impressive performances, India has climbed to 5th position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 75, including 15 gold, 25 silver and 35 bronze medals. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:10 हुए हैं आइए अब सुनते हैं गैर फिल्मी भजन कार्यक्रम का आगाज आज हम कर रहे हैं नरेंद्र चंचलवा साथियों की गाई इस भेंट के साथ

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: सावधान, कुत्ता बिल्ली बंदर नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
3: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
2: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
3: रेबीज जानलेवा है लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी भजन। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:25 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

हेलो, गुड इवनिंग युवा दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम युवा मंच में, और हमारे तमाम श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। जी हाँ, और आज के इस अंक में मैं हूँ आपके रेडियो दोस्त रेनुमन कोडिया। तो आज युवा मंच के खास सेगमेंट फिल्मी फ्राइडे में हाजिर हैं हम। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस फिल्म की जिसने प्रेम, परिवार, संस्कार और भारतीयता को एक ऐसी कहानी में पिरोया कि वह फिल्म से बढ़कर एक यादगार सिनेमाई अनुभव बन गई। जी हाँ, आज की हमारी फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यानी DDLJ। यह फिल्म 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक थे आदित्य चोपड़ा और निर्माता थे महान फिल्मकार यश चोपड़ा। यह आदित्य चोपड़ा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। इस फिल्म का निर्माण यश राज फिल्म्स के बैनर तले हुआ। तो आइए शामिल करते हैं इसी फिल्म का ये गीत।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: यार दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
3: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
4: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
3: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: अब बात की जाए इस फिल्म की कहानी की। कहानी शुरू होती है राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह से। राज का किरदार निभाया शाहरुख खान ने और सिमरन के किरदार में नजर आई काजोल। राज लंदन में रहने वाला एक बेफिक्र मस्त मौला और जिंदगी को अपने अंदाज में जीने वाला युवा है। वहीं सिमरन एक भारतीय परिवार में पली बड़ी लड़की है जो अपने पिता की इच्छाओं और परिवार के संस्कारों का सम्मान करती है। दोनों की मुलाकात यूरोप की एक यात्रा के दौरान होती है। शुरुआत में दोनों के बीच नोक झोंक होती है, लेकिन धीरे धीरे यही नोक झोंक प्यार में बदल जाती है। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आता है जब सिमरन के पिता चौधरी बलदेव सिंह, जिसका किरदार अमरीश पुरी ने निभाया, अपनी बेटी की शादी भारत में अपने पसंद के परिवार में तय कर देते हैं। सिमरन अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहती। राज के सामने भी चुनौती सिर्फ सिमरन का दिल जीतने की नहीं, बल्कि उसके परिवार और खासकर उसके पिता का विश्वास जीतने की होती है। राज भारत पहुंचता है और सिमरन के परिवार के बीच रहकर उनके दिलों में जगह बनाने की कोशिश करता है। यही इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात है। राज सिमरन को परिवार से दूर करके अपना नहीं बनाना चाहता, बल्कि उसके परिवार की स्वीकृति और आशीर्वाद के साथ उसे पाना चाहता है। फिल्म का यही विचार इसे सामान्य प्रेम कहानी से अलग बनाता है। तो चलिए शामिल करते हैं इसी फिल्म का एक और गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब

0: ये गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं फिल्मी फ्राइडे का मेन सेगमेंट और आज की हमारी फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आज हम सुनवा रहे हैं इस फिल्म के कुछ गीत। जी हाँ, इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी, फरीदा जलाल, अनुपम खेर, पूजा रूपारेल, परमीत सेठी, सतीश शाह, अचला सचदेव, हिमानी शिपुरी, मंदिरा बेदी, करण जौहर और अरुण सबलोक ने। और इस फिल्म के लिए संगीत दिया मशहूर संगीतकार जोड़ी जतिन ललित ने और गीत लिखे लोकप्रिय गीतकार आनंद बख्शी ने। फिल्म के साउंडट्रैक के साथ प्रमुख गीत इस फिल्म में शामिल हैं जो बहुत ही खूबसूरत गीत हैं, भावनाओं की झलक उन गीतों में मिलती है। तो आइए शामिल करते हैं एक और प्यारा सा ये म्यूजिकल ट्रैक लता मंगेशकर और कुमार सानू की मिलीजुली आवाज़ों में।

जी हाँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये फिल्म 4 करोड़ रुपए के बजट में बनी। फिल्म ने 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का विश्वव्यापी ग्रॉस कारोबार किया। 1995 के दौर के हिसाब से यह असाधारण सफलता थी। DDLJ की सफलता केवल बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों तक सीमित नहीं रही। युवा दोस्तों, इस फिल्म ने प्रेम कहानी को भारतीय पारिवारिक मूल्यों के साथ जोड़ा। फिल्म का संदेश यह था कि प्यार और परिवार एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। अगर रिश्तों में सम्मान और समझ हो तो दोनों साथ चल सकते हैं। राज का किरदार भी इसी वजह से दर्शकों के दिल में उतर गया। वह सिमरन को पाने के लिए उसके परिवार और पिता का सम्मान करता है। शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी को इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ियों में शामिल कर दिया। और अमरीश पुरी का चौधरी बलदेव सिंह बाला किरदार भी फिल्म की पहचान बन गया। तो दोस्तों, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के एक ऐसे दौर की पहचान है जिसमें प्रेम कहानी, परिवार, संगीत, हास्य और भावनाओं को बेहद खूबसूरती के साथ पेश किया गया। 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई यह फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। यश राज फिल्म्स के अनुसार यह भारतीय सिनेमा की सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक बनी और मुंबई में लंबे समय तक प्रदर्शित होती रही।

चलते चलते हम आपको बता दें, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला सुरेंद्र कपूर से। फिल्मी फ्राइडे में फिर मुलाकात होगी एक और यादगार फिल्म और उसके संगीत के साथ। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रेनू वनकोटिया को अनुमति। युवा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:55 और 48 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी।

रात्रि 8 बजे समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। 8:30 पर देश गान सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनिएगा 1978 में प्रदर्शित हुई फिल्म कस्मी बाधे के कुछ चुनिंदा गीत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कारवां सुरों का। रात्रि 10 बजे डेली हाइलाइट्स ऑफ एशियाई खेल 2026 आकाशवाणी दिल्ली से यह कार्यक्रम रिले किया जाएगा। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत पुरानी फिल्मों से गीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कल सुबह 7:10 पर कार्यक्रम सुबह सुहानी आप सुनेंगे और 8:30 पर आप सुनेंगे गाने सुहाने। महिलाओं का कार्यक्रम सुनो सखी का प्रसारण समय रहेगा दिन में 12:30 पर। ये थी कुछ कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:59 और 25 सेकंड हुए हैं। आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: कम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 233 करोड़ रुपए की 28 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। रामपुर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों का समान और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।
3: जब से हमारी सरकार बनी है पूरे प्रदेश में एक समान विकास की गति को हमने बढ़ावा दिया है और निश्चित रूप से हमारा ये ध्येय रहा है कि हम गांव के जो लोग हैं, गांव के जो किसान हैं, उसके हाथ में सीधा पैसा दें। बागवान और गांव में रहने वाला किसान, इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। और मैं बार बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि गांव में रहने वाले व्यक्ति के पास पैसा पहुँचे।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में किशाऊ बांध परियोजना में प्रदेश के हितों की बड़ी जीत सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि परियोजना के निर्माण के बाद प्रदेश को प्रतिवर्ष करीब 1200 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए तक का लाभ होने की उम्मीद है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि सरकार प्रत्येक छात्र को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है। सोलन विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर स्थित एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि जहां एक ओर पहली कक्षा से ही बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की योजना तैयार की गई है, वहीं ITI स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार का ये निर्णय विद्यार्थियों को स्पर्धा के इस युग में आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिमला में दोनों महान विभूतियों को नमन किया। उप मुख्यमंत्री

0: मुकेश अग्निहोत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर इस दौरान मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जीवन व उनके आदर्श आज भी सेवा, जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता को इंगित करते हैं।
1: आज उन सभी शहीदों को याद करने की जरूरत है जिनके कारण से हमें ये आज़ादी मिली। कुल मिलाकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी जो शिक्षा थी आज के युग में भी वो कहीं ना कहीं मायने रखती है।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोहडू विधानसभा क्षेत्र के धतवाड़ी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन, मुख्यमंत्री के राजनैतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने हमीरपुर और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अमित नंदा ने शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में दोनों महान नेताओं को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान चलाए गए। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार से कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित एरियर का जल्द भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि लंबे समय से भुगतान न होने से कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आंशिक भुगतान से आगे बढ़ते हुए सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों के शेष वैध देय भुगतान की स्पष्ट समय सीमा बतानी चाहिए। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज घुमारवीं में दो दिवसीय जिला स्तरीय सीर उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये उत्सव केवल आस्था व परंपरा से जुड़ा आयोजन नहीं है बल्कि इसके माध्यम से लैंगिक समानता, स्वस्थ जीवन शैली, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण संदेश भी पहुंचाए जा रहे हैं। धर्माणी ने लोगों से सीर खड्ड को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने और जल स्रोतों के संरक्षण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। हमीरपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मटाहणी में 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आज शुरू हुई। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नादौन में अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है जिसमें 14 खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कुल्लू मनाली के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज मनाली में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति का 6 से 8 अक्टूबर तक मनाली व अटल टनल प्रवास का कार्यक्रम है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी व कुल्लू के पुलिस अधीक्षक अभिषेक एस ने प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:06 होने को है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरमई सांझ।

दोस्तों, संगीत की खूबसूरती इसे समझने में है। जी हाँ, इसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। धुन सीधे दिल तक पहुंचती है और कई बार बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाती है।

जमीन आसमान इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना थी अनजान की और संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने। कार्यक्रम में अब

0: बड़े दिल वाला इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने और शब्द रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

अभी आप सुन रहे थे परवरिश, इस फिल्म से ये गीत। आवाजें थी आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह और अमित कुमार की। शब्द रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मोजां ग्राइंदियां।

0: थोड़ी मेहनत करिए।
1: इन्हां
0: च बड़े सारे पौद्यां दा उपयोग जिहड़ा सै औषधियां बनाने च कीता जांदा है, कन्ने कन्ने स्वास्थ्य संबंधी जिहड़ियां समस्यां ने तिन्हां च भी जिहड़ा सै कीता जांदा है। कन्ने दे पौद्यां जो जिहड़े कि औषधीय पौधे तां गलाया जांदा है क्योंकि इह जालू साड़ी कोई बीमारी है तिसदे इलाजे च प्रयोग हुंदे हन तां इन्हां दा नां जिहड़ा सै औषधीय पौधे रखिया गया है। जियां कोई फलदार पौधे होंदे तां सै खाने दे कम्मे होंदे तां उहनूं जहां फलदार पौधे बोलदे, तां इन्हां दा उपयोग जिहड़ा सै दवाइयां बनाने च साड़े शरीर दीआं कुछ कमियां जो ढाणे च कीता जांदा तां इन्हां जो जिहड़ा सै औषधीय पौधे गलाया जांदा है। कने भारत च जिहड़ा सै औषधीय पौधिआं दा इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना है। आयुर्वेद च भी अनेक जड़ी बूटियां कने बनस्पतियां दा वर्णन जिहड़ा सै इस च मिलदा है। कने दिखा साढ़े घर च दिखिया जाए तो अमूनन हर घर च जिहड़ी है सै तुलसी दा पौधा मिली जांदा है। सवेरे कने संझा जिहड़ा डोटा है उत्थों तुलसी दी पूजा कीती जांदी है। कने दिखा हुण जालू पंज भी खम लगदे ना तां तुलसी दी अहां कितनी पूजा करदे पंज दिन। कने सै सब कुछ जिहड़ा सै सांझो पहले तो ही पता है कि कियां तुलसी पूजनी है, तो तिना चाहा जड़े सै औषधीय पौधे लगाते कने तिना चाहे तुलसी हो गई, नीम, हल्दी, अदरक, आंबला, एलोवेरा हो गया, सतावरी हो गया, ब्रह्मी हो गया, अश्वगंधा, गिलोए, लेमन ग्रास, ये सारे जड़े सै औषधीय पौधे हैं। कने इन्हां सारे पौधों का जड़ा है ना सै प्रयोग अलग अलग है। कने अजकल दे समय च भी लोगों के जड़े हैं सै प्राकृतिक कने हर्बल उत्पादा च रुचि जड़ी है सै काफ़ी बढ़ती जा रही है। कने इस करी ने औषधीय पौधों की खेती जड़ी है किसानों के ताई काफ़ी महत्वपूर्ण बनती जा रही है,
1: वरदान सिद्ध हुआ कर दी।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: तो तुम दसे कि तुलसी हुई है, अश्वगंधा हुई है ना जी, एलोवेरा हुई है, सर्पगंधा हुई है, सतावरी हुई है,
0: बिल्कुल
1: कालमेज भी कर सकते, पुदीना भी दिखा है ना जी,
0: बिल्कुल जी,
1: कने गिलोए हुई है, कने लेमन ग्रास, ये सारी जो औषधीय पौधे हैं। कने इन्हें खेती करा सा जो सै करी कई मुनाफा जो सै कमाई सकते हैं। कने कई बार अपने किसान भाई दसते कि तुह अगर खेतीबाड़ी करनी है तो सारे से पहले सू जो सै भूमि का चुनाव करना पौंदा कि कुसा दी भूमि है जो सै अह करनी है ना जी।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: ऐसी भूमि चुननी असा जितों की पानी जमा नहीं होंदा होवे
0: जी,
1: कने खेते विच जो सै धुप भी होंदी होवे, कने छाव भी टाइमे टाइम पर जो सै मिलती रहे
0: जी,
1: मिट्टी उपजाऊ कने भुरभुरी होवे तो बड़ी ही अच्छी गल है
0: जी।
1: कने मिट्टी की जांच करवाई करी जो सै इसका पीएच कने पोषक तत्वों की जानकारी लेना बड़ा भारी जरूरी है।
0: बिल्कुल जी, बड़ी छैड़ गल तुहां गला दे, अगर अहां मिट्टी दा पीएच सानूं पता नहीं होगा तो अहां जिहड़ा ऐसे कोई भी फसल जिहड़ी ऐसे नहीं उगाई सकते। कने पीएच मान जिहड़ा है सै पता होए तो अहां जिहड़ा ऐसे उसका प्रयोग करी ने अहां अपना पौधा देखी सकते कि कौन जिहा जिहड़ा ऐसे इस च खरे ने उगी सकता।
1: बिल्कुल जी। कने सिंचाई वास्ते जिहड़ा सै पानी जी उचित व्यवस्था जरा सै जमीन भी होना चाहिए, कुल कोई बखा लगी हुई है तो भी ठीक है। कने खेत की तैयारी करनी है असा मिट्टी पलटने वाले हल ने गहरी जुताई करनी, कने दूसरी जुताई देसी हल कने करनी, कने फिर इसके बाद जरा सै असा बीज का चुनाव भी कर सकते हैं ना जी। बीज का चुनाव असा बड़ा सोची समझी करना, हमेशा स्वस्थ कने अच्छी गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज जरा सै लैने, बीज साफ कने रोग मुक्त कने अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए, कने अच्छी अंकुरण क्षमता वाला होना चाहिए
0: जी। बड़ी छैड़ गल बोला ते दिखा, अगर साड़ा बीज अच्छा होगा, उपचारित होगा, ता ही साड़ी फसल जिहड़ी है सै खरी होनी है। कने दिखा अलग अलग पौधिआं दे जिहड़े हन सै अलग अलग उपयोग हैं, जियां कि कुसी पौधे का हाड़ा जड़े है जड़ कमी होंगी, कुसी का बी कमी होंगे, कुसी का फल हो गया, फुल हो गया, तना पत्ती छाल हो गया, तो यह सब कुछ जड़ा है इन्हां च जड़ा है कुसी पौधे का कुछ भी उपयोग जड़ा सै हो ही सकता। तो जड़ियाँ ये चीज़ा उपयोग होंगे खास करके दे पौधों जड़ा सै औषधीय पौधे गलाया जाता है। कने दिखा जियां तुलसी होई गई ना, तो जल समझो सर्दी जुकाम वगैरह या खंघ होई जाती ना, तो साढ़े दादे दादियां बोलते हे भई दिखा ये सर्दी जुकाम होई गई कन उन्हें जो जड़ा ऐसे बच्चे जो काढ़ा बनाई के दे दिया, तो तैलू जड़ियां से इतनिया दवाइयां नहीं खाई जांदियां हियां कि जी अज एक सिरप पी लिया कल दूआ पी लिया, ठीक है तिना काढ़िया नहीं जड़े अंसे बड़े कने बच्चे जड़े अंसे ठीक होई जांदे हे। तीए जड़ा सै एलोवेरा का उपयोग जड़ा सै स्वास्थ्य कने त्वचा ने जुड़ियां अनेक हर्बल कने कॉस्मेटिक उत्पादन च जड़ा सै कीता जांदा।
1: बिल्कुल जी। कने दिखा असा जड़ा सै गलबात और भी अपने किसान भाई ने जारी रखनी है। फिलहाल समय होया है असा दे टियाले विच एक लोक गीत दा, लेकिन उस ते पहले सुनना असा एक संदेश
0: जी।

0: आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुरू किए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां साधारण बीमारियों के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच और निशुल्क इलाज भी होगा।
1: हर केंद्र पर टेलीमेडिसिन सुविधा से उपलब्ध होगा विशेषज्ञों का परामर्श, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए होगा योगा और व्यायाम प्रशिक्षण भी।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
2: जी अहाँ गल कर रहे दिखा औषधीय पौधों के बारे च, दिखा जलू भी अहें पौधे उगाने तो हाँ ये जरूर दिखी लैना है कि कुछ जगह जड़ी है गर्म जलवायु होंगी, कुछ पौधे जड़े हैं सह गर्म जलवायु खरे उगते, कुछ जड़े हैं सह ठंडे च उगते, कने पौधे जड़ा सह कीट या रोग कोई सानजो दुसना लगे तो सानजो जड़ा सह उचित कृषि विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लेना चाहिए जिससे कि साड़ी फसल जी है खराब ना होए। कने बिना जानकारी हाँ जड़ा सह ज़्यादा रसायना का प्रयोग नहीं करना है, इस कने क्या होंगे कि तिना की गुणवत्ता जी प्रभावित होंगी है, कने ये किसान ताई जड़ी है सह अतिरिक्त आय का साधन बनना चाहिए ना कि मुसीबत। इन्हां पौद्या का खेती पर्यावरण च जड़ा सह बड़ा भारी महत्वपूर्ण योगदान है, पौधे जड़े हैं मिट्टी है जो बन्नी कने रखते हैं, कने मिट्टी के कटाव जो जड़ा सह घट करने च मदद करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो जड़ा सह ग्रहण करते हैं, कने ऑक्सीजन जड़ी है सह छड़दे हैं, कने ये माणुए ताई ऑक्सीजन जड़ी है कितनी जरूरी होंगी हर साय ताई, कने अच्छी गुणवत्ता वाला बीज सो हमेशा लेना चाहिए जिससे कि साड़ी फसल खरी होए। कने दिखा प्रशिक्षण लई के तकनीकी जानकारी लई के कने बाजारे दी जानकारी लई के सो जड़ा सह मांग जो दिखी कने काम करना चाहिए जिससे जड़ी है साड़ी फसल अच्छी होए, कने साड़ी आर्थिकी जड़ी है खरी होए।
3: बिल्कुल जी, कहने बीज बोने की विधि जरा आती है छोटे कने हल्के बीजों जो बड़ा ही गहराई तक नहीं बोना चाहिए, खेत की उचित दूरी कने कतारा बनाई कर ही बीज जरा बाने ने उपरे ते हल्की मिट्टी जरा सा पाई देनी होंगी, कने बीज बोने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी, कने पानी इतना नहीं देना कि खेत ज जल भराव हुई जाए, कने कुछ औषधीय पौधों वास्ते पहले ही नर्सरी पौध तैयार करके ही जरा सा बीज की बीज बोना चाहिए था।
2: जी जी, कने दिखा जलो हाँ कतार ते कतार दी दूरी रखी होंगी ना तो हर पौधे जो बढ़ोतरी ताई जड़ी ऐसे एक जगह मिली आंदी, क्योंकि वो जो उचित सूरज दी रोशनी मिलती, पानी मिलता, हवा मिलता, तो उसकी बढ़ोतरी जड़ी ऐसे अच्छी होंगी।
3: हाँ जी, कने सिंचाई जड़ा से सिंचाई मिट्टी मौसम कने पौधे की जरूरत के अनुसार करनी, कने शुरुआत में पौधे जो जरा सा नियमित लेकिन हल्की सिंचाई जरा सा जरूरी होंगी है, कने बरखा के मौसम के बाद जरा सा अतिरिक्त पानी की जरा जरूरत नहीं पौंदी, ज़्यादा पानी नहीं देना, खेत में पानी खड़ा नहीं होना देना, कने जे तुसीं दी समझ होवे ड्रिप सिंचाई जरा सा बड़ी सही रहती है।
2: बिल्कुल जी बिल्कुल, चलो हाँ ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करते ना तो साढ़े खेते जी है पानी की बर्बादी भी नहीं होंगी, पानी की बचत भी होंगी, कने कुछ जगह ऐसी होंगे कि जितों पानी पजाना बड़ा मुश्किल होंगे, तो इसने क्या होंगे कि हर बूंद जी है पौधे की जड़ा च जाती, कने पानी जड़ा सह व्यर्थ नहीं जाता, कने सब

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
3: किसान साथियों सुने लोकगीत कने लोकगीत के बाद फिर थोड़ा स्वागत है ट्याली बिच कने मस्टानी जी दिखा तो हम कुछ लगे है बोलना ना
4: जी।
3: पर लोकगीत चलिया
4: बिल्कुल जी बिल्कुल तो मैं ही लगी हूँ गलाना दिखा आजकल जोधा राम जी साढ़े जड़े हैं ना से श्राद्ध भी हैं लगी हूँ
3: ठीक है
4: ना तो तिसने क्या होंदा कि यहाँ जड़े हैं से अपने बुजुर्गों जो जड़ा ऐसे याद कर दे
3: जी अपने पितरा जो अपने जरा से पूर्वजों जो जड़ा याद कर दे
4: जी, हाँ जी। बिल्कुल कने तिना दे प्रति जड़ा ऐसा हाँ अपना समर्पण भाव भी दस दे कने एक जड़ा ऐसा है करे रोटियां वगैरह बनाई जा रही है कने ब्राह्मणा
3: बिल्कुल
4: बामण बामणी जो भी सद्या जाता कने पूजा जाता तो ठीक है इन्हां परंपरा जो अगे भी चलाना चाहिए अपने बच्चों जो जरूर दसना चाहिए कने इन्हां चीजा जो जड़ा ऐसा सहेजी के संजोई के रखना चाहिए भाई दिखा भाई इन्हां चीजा जो करना चाहिए।
3: सही गल है कने दिखा अहां दे इह तां पूरे भारत विच जिहड़ा सा मनाए जांदे ने
4: बिल्कुल जी बिल्कुल
3: लेकिन अहां दे हिमाचल दी उपरली गल करिए तां असां पिछे सैर दा त्यौहार भी मनाया
4: बिल्कुल जी बिल्कुल
3: सैरी विच भी जिहड़ा जी हाँ पकवान बनांदे तां सार ते पहले अपने पूर्वजों जिहड़ा सैर पित करदे
4: बिल्कुल
3: जी कने सराध च भी जिहड़ा सा बिल्कुल उहदे हो जांदा ना
4: जी
3: तां अहां दे इस वक्त जिहड़ा सा दिखे लग ग्रां विच सराध हर घर विच उहदा कने खाण पान जिहड़ा सा पकवान जरा हर घर बिल्ला देखने अज भी कोई ना कोई सानू सदी ला कि हाँ घर जरा तो रोटी खानी है परसों दुबे घर सदी ला ना जी,
4: जी।
3: इस तरीके जरा एक दिन तालमेल भी बदा कने अहां दे जरा सा खान पान भी जरा सा जरा सा जिंदा रहंदे
4: असा बिल्कुल जी
3: ना जी लोग अपने खान पान जो हां बनांदे रहंदे ना कने जरा से हां दे हिमाचली अपने पकवान
4: ने
3: जो बार बार बनांदे ते फिर से भी जरा सा गा आने वाली पीढ़ियों तक भी जरा सा चीज जांदी
4: जानदे कने तिना दा भी एक जड़ा है तिस इंटरेस्ट बनिया रहंदा
3: हाँ जी बिल्कुल
4: हाँ जी तो इन चीजा जो हाँ जरूर ध्यान च रखना है अपने बच्चों जो जरूर दसना है।
3: हाँ जी बिल्कुल जी कने दिखा टियाले विच फिर असा एक लोगी सुनना है लेकिन उससे पहले सुन लेंदे असा संदेश
4: जी।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
5: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
6: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
6: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का

0: जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: किसान साथियों दिखा असा जरा सा लोग गीत सुनना हा, लेकिन टियाले की घड़ी जरा सा सबक ध्यान नहीं दिता।
2: बिल्कुल,
1: टियाले की घड़ी बोला दी कि समाचार का बेला भी जरा सा वो करता है ना
2: जी।
1: लेकिन असा खेतीबाड़ी कार्यक्रम पिछे फिर मिलना अपने किसान भाइयों ने, फिर असा गलबात साझा करनी, खेतीबाड़ी की गलबात करनी, ग्राइन की गलबात करनी।
2: बिल्कुल,
1: क्या क्या हुआ था ना
2: जी।
1: कने लोक गीत भी जरा सा जरूर अपने किसान कने बागवान साथियों जो भी असा सुनाने
2: जी
1: है ना जी।
2: तो इसी कने दसी दईए कि कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा सुरेंद्र कपूर का, कने प्रस्तुतकर्ता जतिंदर पाल सिंह। हुण टियाले च मास्टरनी कने जोधा राम जो
1: अनुमति।
2: अच्छा जी, जय हिंद, जै हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मोजा ग्राइंडियां। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। सुजीत कलकल ने अपनी इस जीत को देश के नाम समर्पित किया।
2: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया।
3: यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
1: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुडा ने नियन चेन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार से बात की। कैप्टन स्मिथ मछार ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दौरेस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की।

जापान में भारत की राजदूत नागुमा मलिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में अंत्योदय, स्वच्छता और समाज सेवा के उनके आदर्शों को दर्शाया गया। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक व्यापार विकृतियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO के अनुरूप दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन दिवस पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि भारत डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विश्वसनीय कड़ी है। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री फडणवीस ने राज्य को प्रमुख निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट महाराष्ट्र मंच का भी शुभारंभ किया। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नलू ने NCC कैडेट से एकता, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों पर आधारित मजबूत और एकजुट भारत बनाने में योगदान देने का आग्रह किया है। राज्यपाल ने आज नरसिंहगढ़ के TIT संस्थान में विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर वीर विक्रम एकता कैंप का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 13 त्रिपुरा बटालियन NCC ने किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सारे किसान कने बागवान पाई हैं जो एक वरी फिर ते राम राम थोड़ा किसान साथी जोधा राम कने टियाले भी सोगी है ना
1: मास्टर ने जी तो जोधा राम जी तो अंजो भी मेरी संजय दी बेला दी राम राम कने सारे साढ़े किसान साथी हैं जो जिन्हा साड़ा जिड़ा रेडियो सेट होनी ऑन किता है उन्हें जो भी संजय दी बेला दी राम राम।
0: हाँ जी बिल्कुल जी
1: तो दिखा आज जी 2 अक्टूबर कने 2 अक्टूबर जो हम मनाते गांधी जयंती कने दिखा सबसे बड़ी गल है कि 2 अक्टूबर जो जड़ा है सह 2014 च एक जड़ी है शुरुआत की गई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर सह थी स्वच्छ भारत अभियान दी ता तिसदा उद्देश्य ये था कि भई जड़ी है अहां अपने अखे बखे भी सफाई रखनी है कने जिस सफाई है जो जड़ा है सह सारे अगर करगे तो साड़ा जड़ा है सह ग्रां शहर कने देश जड़ा है सह स्वच्छ होना है कने अगर सह स्वच्छ होंगे तो देश जड़ा है साड़ा बीमारियां ते मुक्त होना है कने ताई जड़ी है हाँ तरक्की करी पाना है।
0: दिखो स्वच्छ भारत अभियान जी कि तुम दस्या कि 2 अक्टूबर 2014 जो जड़ा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ने जड़ा सा चलाया था
1: जी
0: महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष पर
1: जी
0: करा इसका उद्देश्य है साफ सफाई जो बढ़ावा देना
1: जी
0: स्वच्छता की आदत जड़ा सा पाना
1: पाना
0: स्वच्छता की आदत जल पी जी ना
1: जी
0: तो फिर अपने अखे बखे का वातावरण जड़ा सा अपने आप ही स्वच्छ जड़ा सा हो जाता
1: जी
0: कने इस विच जड़ा सा कुछ मुख्य काम है जिया कि शौचालय का निर्माण करना सब ते पहले नंबर पर
1: जी क्या होंगे कि पहले जड़े ऐसे खुले च शौच करते हैं तो तिसने जड़ी ऐसे बड़ी ज्यादा गंदगी फैलती थी तो जड़िया मक्खियां वगैरह से उठ दी थी तो खाने के समान पर कुछ बह दी तो बीमारियां फैल दी थी
0: तो ऐसा है मस्टैनी जी कि 2014 के पहले इस अभियान का ना था संपूर्ण स्वच्छता अभियान
1: जी
0: संपूर्ण स्वच्छता अभियान जलू चलाना लगे थे तो सारे पहले ये चलाया कि असा जरा स्वच्छ पानी जरा पहले स्वास्थ्य अभियान चला कि सारे जो स्वच्छ पानी जरा

0: ਲੈ,
1: जी
0: लेकिन स्वच्छ पानी जी मिलने ते जलू पानी की जांच करने लगे तो पानी विच हमेशा कोई ना कोई जरा सा ऐसे तत्व मिली हैं कि पानी खराब ही मिल गया है ना जी।
1: बिल्कुल
0: तो
1: जी,
0: फिर
1: दूषित
0: जरा सा
1: लगे।
0: वैज्ञानिक शोध किया गया, वैज्ञानिक पता किया कि जी तिकर जरा है लोग जरा खुले च सोच जाना बंद नहीं करके इतनी तिकर हमारा पानी जरा है स्वच्छ नहीं हो सकता
1: जी
0: है ना जी। फिर अभियान चलाया संपूर्ण स्वच्छता अभियान का कि
1: जी
0: पानी जरा सा वादे स्वच्छ करके पहले लोगों जो आदत पा कि शौचालय का निर्माण करा अपने घर में।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: तो 2006 कने 2007 विच जरा सा अभियान शुरू होया, तो इसके बाद जरा सा 2014 तक जरा सा इतना अभियान चला कि हर घर विच जरा सा शौचालय बने हैं।
1: जी
0: इसके बाद जरा सा स्वच्छ अभियान जरा सा महात्मा गांधी जयंती पर जरा सा चलाया गया,
1: जी
0: तिथु कि असा और छोटी मोटी साफ सफाई अपने घर विच रखे सकते, कूड़ा करकट का उचित प्रबंध कर सकते, लेकिन सारे तो पहले जरूरी है कि अपने घर विच शौचालय होना सही चाहिए। तो मुझे लगता कि इस जमाने विच भी कोई ऐसा घर भी होगा जिथु की कोई शौचालय नहीं बने होगा,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: जी
0: गरीब आदमी वास्ते भी चलू आवास निर्माण वास्ते पैसा मिलता ना,
1: जी
0: घर बनाने वास्ते पैसा मिलता गरीब आदमी जो, तो इस विच भी जरा सा बड़ा जरूरी होंगे कि सा अपने घर में शौचालय का निर्माण करें। तो
1: बिल्कुल जी
0: गरीब तो
1: बिल्कुल
0: गरीब आदमी भी जरा सा अपने घर में शौचालय अच्छा बना कर तक बड़ी अच्छी गल है कि इससे कि हाँ अखे बखे का वातावरण जरा सा स्वच्छ होया है।
1: बिल्कुल जी। कने
0: हाँ
1: दिखा
0: जी
1: इस अभियान की शुरुआत जी है भारत सरकार ने पूरे देश च स्वच्छता के प्रति जी असें जागरूकता बधाने के उद्देश्य ने की थी। कने इसका उद्देश्य यही नहीं है कि केवल हाँ सड़कां या सार्वजनिक जड़ियाँ जगह होंगे तो इन्हों की सफाई करना ही नहीं था, बल्कि लोगों की सोच कने आदत जो भी जड़ा सा स्वच्छता च शामिल करना था।
0: जी
1: कने भारत च दिखा बड़े लंबे समय तक कई स्थानों पर जियाँ गंदगी कूड़े कचरे खुले च शौच साफ सफाई की कमी जी समस्या जड़ियाँ दिखने जो मिलदियाँ थी।
0: जी
1: कने कई जगह पर तो लोग कूड़ा सड़कां नालियाँ कने खाली जगह पर सटीं दे,
0: जी
1: इसते वातावरण जड़ा सा प्रदूषित हुंदा था।
0: हाँ
1: कने
0: जी
1: बीमारी बढ़ने का खतरा कने बढ़ने का खतरा जेड़ा सा हमेशा बनी रहंदा था।
0: बनी रहता था।
1: इन्हां समस्या जो घट करने जे ताई कने लोकां जो जागरूक करने ते ताई जेड़ा सा स्वच्छ भारत अभियान जेड़ा सा शुरू किया गया था।
0: जी बिल्कुल जी, कहना इस विच जरा सा जी कि शौचालय निर्माण करना, खुले च सोच रोकना, कचरा प्रबंधन है, सकना स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता जरा सा चलाई गई थी है
1: जी
0: जी। कहना इस विच जरा सा हर नागरिक का फर्ज जरा सा बनता है कि असा अपने घर जो स्वच्छ रखिए,
1: बिल्कुल
0: जलू
1: जी
0: असा अपना घर स्वच्छ रखना ना
1: जी
0: तो अपने आखे बखे का वातावरण स्वच्छ होना,
1: बिल्कुल जी
0: क्योंकि जलू असा अपना देश स्वच्छ करने की गल करते तो असा घर ही शुरू होंगे है
1: बिल्कुल जी। दयालु
0: जी।
1: देखा हाँ कोई गंदगी चाहे सड़कों या पानी के स्रोतों च अगर मिलाते हैं तो साढ़े ही सह पानी खूह बोड़ियाँ खराब होंगे कने सही गंदा पानी जो सू पीने जो
0: जी
1: मिलता
0: तो
1: है।
0: स्वच्छ भारत केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है मेरे ख्याल
1: जी
0: जी,
1: जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: ऐसा लोगों की जिम्मेवारी है कि ऐसा
1: जी
0: पारिवारिक स्तर पर जरा सा काम शुरू करके अपने जरा सा पूरे भारत जरा सा स्वच्छ करिए है ना जी।
1: जी
0: कने दिखा गलबात भी ऐसा अपने किसान भाइयों ने जारी रखनी है, और भी बड़ी सारी जानकारी अपने किसान भाइयों भी देनी है,
1: जी
0: बागवान भाइयों भी जानकारियां देनी है ना, लेकिन टियाले समय होया एक लोक गीत का, तो वह किसान साथियों सुनते ये लोक गीत।
1: जी

0: कने असा फिर मजबूर हुई है इतने ने आई करी गलबात करने वास्ते, कने वो इतने ने गलबात कर दे, कने पूछ दे तना दा ना क्या जी। नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी।
0: तो सारे ते पहले तो हाँ अहां दे सुनने वाले जो अपना नाम दस्ता।
1: हाँ जी, मैं सुरेश कुमार जी।
0: हाँ जी।
1: आर्मी रिटायर हूँ मैं।
0: अच्छा।
1: एक्स मैन सुरेश कुमार, हौलदार सुरेश कुमार, और मैं गांव त्रैमलू मट पंचायत डगवार ब्लॉक धर्मशाला का किसान हूँ।
0: अच्छा।
1: और मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ।
0: हाँ, तो किसान साथी दिखा ये करते प्राकृतिक खेती, तो इस वजह से असा मजबूर हुई है दोबारा जोड़ा सा इन आने वास्ते, क्योंकि इन्हें पहले भी जोड़ा सा प्राकृतिक खेती ने जोड़ा सा अहम बड़े सारे किसान जोड़ा सा जागरूक किए, हूँ जोड़ा सा क्या क्या कमकार कर रहे तो वह इन्होंने जान दे। तो प्राकृतिक खेती है ना, ये है क्या पहले?
1: प्राकृतिक खेती जी, जैसे कि हमारे बुजुर्ग सियाने जो है करते आ रहे थे, मतलब, और कुछ जो इस टाइम जो है अभी वो मतलब केमिकल जो कर रहे हैं।
0: हाँ जी, मतलब प्राकृतिक खेती का मतलब यह है कि सिर्फ प्राकृतिक चीज़ा ने बनी चीज़ा ने ही खेती बाड़ी करनी है। हाँ जी, कने कोई केमिकल जो सब बारे का नहीं पाना।
1: हाँ जी जी, केमिकल हाँ यूज नहीं करते।
0: हाँ जी,
1: अपन खादा जो है हाँ, मतलब जो गाय दी देसी गाय का गोबर हो गया, इसने जो है हाँ खादा बनाते, और इन खादा हाँ बनाते भी अपनी जमीन च पाते और बेचते भी इन्हें।
0: हाँ जी,
1: कने हाड़े ने धर्मशाला योल है पालमपुरे तक भी जो है मेरे मतलब ये खादा जो है बनाइया जो है जा दी कने बिकाइया, कने मैं इन्हें लिक्विड भी बेचता हूँ और
0: अच्छा।
1: मतलब
0: सुखी खाद भी बेचता। सही गल है। तो दिखा सुरेश कुमार जी, एक शून्य लागत खेती भी होंगी है।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: कने प्राकृतिक खेती शून्य लागत खेती दोनों जरा सा एक ही है, मतलब जिस विच असन जो कोई भी खर्च जरा सा नहीं करना पड़ता।
1: हाँ जी, कोई
0: शून्य लागत खेती करने वास्ते असन जो क्या क्या चीज़ें चाहिए?
1: शून्य लागत खेती एक ऐसी है जी, मतलब जैसे देसी गाय जो है होना बहुत जरूरी है।
0: हाँ,
1: देसी गाय जो होगी आपके पास तो शून्य खेती जो है मतलब लागत जो है तभी होगी आपके पास, क्योंकि देसी गाय नहीं है तो समझ लो पे नहीं है कुछ भी।
0: हाँ जी।
1: तो देसी गाय से जो हम खाद बनाते हैं तो सबसे पहले जी हमें देसी गाय का गोबर अपना, और हमें चाहिए गुड़
0: जी,
1: बेसन।
0: हाँ जी,
1: गाय का गूंतर।
0: अच्छा।
1: और पेड़ के नीचे की मिट्टी।
0: अच्छा,
1: पेड़ के नीचे की
0: एक खाद बनाने वास्ते।
1: हाँ, खाद बनाने वास्ते, सुखी खाद वास्ते बनाने वास्ते ये चीज़ा सारी चीज़ा हाँ मिक्स करी दे
0: जी।
1: मिक्स करी ना हाँ ये गोहे सारा अच्छी तरह मिक्स करी ना, तो ये हाँ गोटू बनाई लेंगे। गोटू बनाई ना तो हाँ इन्हें सुखाना कोई 8-9 दिन।
0: हाँ जी।
1: 8-9 दिन सुखाना, कने फिर यहाँ इन्हें सुखाई ने फिर इन्हें यहाँ तोड़ी दे जल्दी।
0: हाँ,
1: क्योंकि पहले करता हाँ मैं बिल्कुल सुखाई लेंदा हाँ, तो कुटने थोड़ा जहा मुश्किल हो जाती, तो कुटने ने मुश्किल हो मतलब टाइम ज्यादा लगता, तो हूँ मैं 8-9 दिन इन्हें तोड़ी दा हथे ने तोड़ी दा पोरी दा बरीक, कने फिर छाऊं च हाँ इसी सुखा लेंदे कुट्टी कट्टी ने, फिर हाँ यदा छाणी छूनी ने बूरा जो है बनाई ने बिल्कुल छाणी ने छाणी दा जी सी, फिर मतलब हाँ पैकिंग बनाते 2-2 किलो दी 3 किलो दी 5 किलो जिया जिद डिमांड आवे कोई। हूँ मुझे डिमांड आई है पालमपुरे से 3-40 किलो मेरे ते जो है गंजीवा तो मंगा हुआ है।
0: हाँ जी।
1: तो उनको मैं मतलब अभी तैयारी कर रहा हूँ।
0: हाँ जी।
1: घर में तैयार है।
0: हाँ,
1: मतलब सिर्फ छान ने पैकिंग करना है बस।
0: अच्छा अच्छा,
1: कने मतलब तैयारी है, तो अभी ये जो गंजीवा अमृत देना है।
0: अच्छा, ये घन जीवा अमृत तो दस्या ये शून्य लागत खेती का एक जरा सा अभिन्न अंग है।
1: हाँ जी।
0: कने इस कने ही जरा सा ऐसा अपनी सब्जियों जो जरा सा खाद पाते हैं, कने बिल्कुल देसी खाद है जिसे हम बोलते
1: हैं। चलो हाँ गड़ाई कर दे ना उस टाइम पाउंदा जी।
0: अच्छा, जरा हां दी मुख्य फसल है।
1: हाँ जी।
0: जी गेहूं है या धान दी है, तो इस बीच भी ये खाद वाली खाद
1: हां इस्तेमाल करना चाहिए उस टाइम जब इस यो हां कर दे लिक्विड उस टाइम।
0: हाँ जी।
1: तो लिक्विड च यही चीज पाउंदा, लिक्विड च सिर्फ पानी पाना हुंदा।
0: हां जी।
1: जियां पेईया हाड़ा जी गुड़ पेईया।
0: हाँ,
1: बेसन पेईया, गोहा पेईया, गूंत्र पेईया, पेड़ दे नीचे जी मिट्टी पेईया, तो यह चीज़ा च पानी पाई तक ने एक ड्रमे च हाँ 200 लीटर का घोल बना पट्टिया च रखी दे।
0: हाँ,
1: चलो हाँ धाना हो या कणक हो धाना चाह मतलब पानी जो है एक ही दिन बाद हाँ पानी चले रहा, तो चलो 94 च पाई दे हाँ।
0: अच्छा।
1: 3-3-4-4 डब्बे पूरी पट्टे च पानी तो चले हों पट्टे च फैली आता पूरी खाद।
0: हाँ जी।
1: कने कणक च जलू हाँ सेड़ दें दे, तो उस टाइम जो है सेड़े कन्ने जो हाँ मतलब पाई दे पूरी पट्टे च भी पाई दे, स्प्रे करने टाइम लगता तब चानू जल पानी बनना तो 94 च पाई देना तो पूरी पट्टी च फैली जाता कने खाद जो है लगी जाती।
0: उपचारित करने
1: होता है जी, जैसे गोवा और गाय का गूंतर, अनबूजा चूना, ये चीजा जो है मतलब अहा पेड़ के नीचे मिट्टी बी लगाने है या कोई पनीरी लगानी है, तो इस जो बीजा अमृत ने उपचार करना।

0: आ रही ये लोग
1: सही गल है।
0: मेरे गांव के ही जो है मतलब 164 लेडीज हैं जिनके खाते में पैसे आ रहे हैं,
1: हाँ जी
0: मतलब 3 महीने में
1: जी
0: छह
1: जी
0: सौ 675 रुपये जो है मतलब सब्सिडी आ रही। अभी
1: सब्सिडी। अच्छा
0: 3 बार सब्सिडी आ चुकी है
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: चौथी बार शायद इस महीने या जनवरी में, ये
1: जी
0: हो सकता है इसी महीने में आएंगे
1: जी अच्छा
0: सब्सिडी आनी।
1: सब्जियां दी गल करिए तां जी, देसी खाद दी तैयार सब्जियां दी बाजारा विच क्या मांग है, कहना तो हां किस तरीके ने जेड़ा ऐसा
0: हाँ
1: पहुंच
0: जी हाँ
1: जेड़ा
0: जी,
1: सा अपने बनांदे।
0: मेरे मेरी जो है डिमांड ये, हाँ जो डीसी ऑफिस में भी मिला हुआ था पहले पनोपी लगाने के लिए,
1: अच्छा
0: लेकिन कुछ किसान थे जो प्राकृतिक जी खेती करते थे,
1: हाँ
0: उन्हों का जो सब्जियां मतलब जो है धर्मशाला होने से बजाय मतलब गांव में बिक जाती है या फिर योल तक जो है, मतलब आजकल लोग जो है जैसे व्हाट्सएप पे पा देना या फेसबुक पा देना तो लोग फोन ना करें दे
1: हाँ जी
0: पे, हाँ जो इतनी सब्जी चाहिए
1: अच्छा
0: आजकल लगाने की जरूरत ही नहीं पी
1: जरूरत नहीं
0: पनोपी
1: है।
0: दी,
1: हाँ जी
0: ऐसे ही रखी हुई है तो मतलब ऐसे बुलाते हैं, वो बोलते हैं भी जो रेट आपने लेना है पर हमारे घर घर में पहुँचा जाओ, तो
1: हाँ
0: हम
1: बिल्कुल नहीं
0: घर ही पहुँचाई दे उन्हें,
1: पजाइंदे। हाँ जी
0: घर ही पहुँचाई दे
1: हाँ
0: जो कोई बोलता पे इतनी इतनी सब्जी चाहिए। हूँ मैं पनीर बनाता जी
1: हाँ जी
0: 500 रुपये किलो पनीर दिता, अज भी
1: अच्छा
0: मैं पनीर जो है चार मतलब 3.5 किलो दिता 1400 रुपये का।
1: सही गल है,
0: हाँ
1: दिखा
0: जी
1: अगर तो बिल्कुल शुद्ध चीजें जरा
0: हाँ
1: अगर
0: जी
1: बेचा दे तो मांग जरा सा
0: हाँ
1: दिसती
0: जी
1: रहती है, कहना तिस दी तो जो आमदनी भी जरा सा अच्छी जरा
0: हाँ
1: सा
0: जी
1: हो जाती,
0: दूम
1: बड़ी
0: हाँ जी
1: अच्छी
0: हाँ
1: गल
0: जी
1: है।
0: हाँ
1: दिखा कहना हाँ दे उन्नत किसान जरा है इस वक्त तो सुना दे होने ना,
0: हाँ जी हाँ जी
1: ते तेनों जो बड़ा कुछ सीखने मिलता है
0: हाँ
1: किदूपे
0: जी
1: थे, है ना जी।
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: तुहां और क्या संदेश जरा सा अपने किसान भाई देना चाहते, खासकर उन्होंने किसान भाइयों हो जरा कि सोचते कि खेतीबाड़ी जी कुछ नहीं रखे,
0: नहीं
1: तेनों
0: नहीं
1: जो क्या तुहां जागरूकता संदेश देना देना
0: हाँ
1: चाहते हैं।
0: यही जागरूक कर दे, कने मतलब संदेश भी देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती को अपनाओ जी, कने अपना शरीर भी और धरती माता जो जमीन है हाड़ी यह सुरक्षित रखा, क्यों इन रख सुरक्षित रखी सकते
1: बिल्कुल
0: जो वहाँ प्राकृतिक खेती अपनाएंगे,
1: हाँ जी
0: कने अपने शरीर वास्ते अपना पर घर परिवार वास्ते कने जमीन
1: जी
0: वास्ते भी
1: मतलब तुम्हारा संदेश ये रहा कि यहाँ दी जरा प्राकृतिक खेती ऐसा है पर्यावरण वास्ते भी सही है,
0: पर्यावरण वास्ते।
1: ठीक
0: हाँ
1: है,
0: जी हाँ जी हाँ जी
1: कहना अपने वास्ते तो है
0: हाँ
1: ही है,
0: जी
1: कहना
0: हाँ
1: अपनी
0: जी
1: सेहत वास्ते भी आई
0: हाँ
1: है।
0: जी
1: सुरेश कुमार जी आकाशवाणी 40 विच
0: हाँ जी
1: अहाँ कन्ने कन्ने किसान भाइयों वास्ते जरा तुम संदेश दिता,
0: हाँ जी
1: कन्ने अहने गलबात की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद
0: नमस्कार जी
2: जी। सब तो पहले तो बड़ी छह जानकारी थी, कने इन्हें जानकारी ते सीखी के हाँ जो जेडे ने अपने काम करना चाहिए, कने जरूर फायदा जेड़ा से चुकना चाहिए।
1: हाँ जी
2: कने कने कने अगर अहाँ गल करिए तो मौसम की जानकारी रखना भी बड़ी जरूरी है, क्योंकि कोई भी काम अहाँ करना हो चाहे फसलों का खेतों का, जहाँ जो मौसम का पता होगा ना तो अहाँ अपने काम जड़े इनसे ढंगे ने करी सकते। वैसे तो अजकल बरखा जड़ी इनसे घटी गई हैं, तो धर्मशाला का अज अधिकतम तापमान रहा 19 डिग्री सैलसीयस, कने न्यूनतम रहा 11 डिग्री सैलसीयस,
1: जी
2: कने चंबा का अधिकतम तापमान रहा 23 डिग्री सैलसीयस, कने न्यूनतम रहा 12 डिग्री सैलसीयस,
1: हाँ जी
2: ऊना का अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सैलसीयस, न्यूनतम रहा 21 डिग्री सैलसीयस, कांगड़ा का अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सैलसीयस, न्यूनतम रहा 20 डिग्री सैलसीयस, कने मंडी का अधिकतम तापमान रहा 27 डिग्री सैलसीयस, न्यूनतम रहा 16 डिग्री सैलसीयस, सुंदरनगर का अधिकतम तापमान रहा 28 डिग्री सैलसीयस, कने न्यूनतम रहा 17 डिग्री सैलसीयस। तो दिखा ये थी मौसम की जानकारी, कने हूँ हाँ फिर चलना एक प्यारे जे
1: जी
2: लोकगीत
1: तो
2: तरफ
1: आसमान दे लोकगीत।
2: जी।

0: इसी कन्नै कार्यक्रम खेतीबाड़ी दा समें इत्थी संपन्न हुंदा है। जाने ते पहले दसी दईए तकनीकी सहयोग रहा सुरेंद्र कपूर दा, कन्नै प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। हुण सांझो दोनों जो यानी कि मास्टरनी
1: कन्नै जोधा राम जो दी अनुमति।
0: अच्छा जी, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 7:42 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: अंदाज वही, कुछ अल्फाज है बदले,
2: सौगात नई, कुछ नए तराने,
3: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
1: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
2: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
3: 103.4 MHz आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
1: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
2: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर।
1: 103.4 MHz आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
3: जो पहुँचे दिल से दिल तक।

0: विद्युत आपूर्ति संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1912।
1: बिजली के खंभों और तारों की कोई समस्या हो
0: या बिजली के बिलों से संबंधित कोई समस्या हो
1: या हो कम या अधिक वोल्टेज की समस्या,
0: टूटी हो सर्विस तार
1: या समस्या हो ट्रांसफार्मर की,
0: विद्युत संबंधी हर तकनीकी समस्या का समाधान होगा टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1912 पर।
1: ये सुविधा IVRS और कॉल सेंटर के माध्यम से उपलब्ध है।
0: हम आपकी सुरक्षा एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सदैव तत्पर हैं।
1: हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा पब्लिक इंटरेक्शन कार्यक्रम के तहत जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 233 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सरकार से कर्मचारियों व पेंशनरों के लंबित एरियर के जल्द भुगतान का किया आग्रह। भाजपा का आरोप, कांग्रेस सरकार द्वारा भारी ऋण लेने के बावजूद प्रदेश की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 233 करोड़ रुपए की 28 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। रामपुर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों का समान और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।
1: जब से हमारी सरकार बनी है पूरे प्रदेश में एक समान विकास की गति को हमने बढ़ावा दिया और निश्चित रूप से हमारा ये ध्येय रहा है कि हम गांव के जो लोग हैं, गांव के जो किसान हैं, उसके हाथ में सीधा पैसा दे। बागवान और गांव में रहने वाला किसान इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। और मैं बार बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि गांव में रहने वाले व्यक्ति के पास पैसा पहुँचे।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में किशाऊ बांध परियोजना में प्रदेश के हितों की बड़ी जीत सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि परियोजना के निर्माण के बाद प्रदेश को प्रतिवर्ष करीब 1200 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए तक का लाभ होने की उम्मीद है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि सरकार प्रत्येक छात्र को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है। सोलन विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर स्थित एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि जहां एक ओर पहली कक्षा से ही बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की योजना तैयार की गई है, वहीं आईटीआई स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार से कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित एरियर का जल्द भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि लंबे समय से भुगतान न होने से कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आंशिक भुगतान से आगे बढ़ते हुए सरकार को कर्मचारियों व पेंशन

0: डॉलरों के शेष वैध देय भुगतान की स्पष्ट समय सीमा बतानी चाहिए। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज घुमारवीं में दो दिवसीय जिला स्तरीय सीर उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये उत्सव केवल आस्था व परंपरा से जुड़ा आयोजन नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से लैंगिक समानता, स्वस्थ जीवन शैली, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण संदेश भी पहुंचाए जा रहे हैं। धर्माणी ने लोगों से सीर खड्ड को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने और जल स्रोतों के संरक्षण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरा कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने देश में व्यापार के माहौल को बेहतर बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमेशा प्राथमिकता दी है। उनके अनुसार भारत को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने के लिए नियमों को सरल और पारदर्शी बनाना जरूरी है।
1: आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा। जिस भारत की टैक्स से जुड़ी नीतियों से कभी निवेशकों में निराशा फैल जाती थी, आज उसी भारत में दुनिया का सबसे कॉम्पिटिटिव कॉरपोरेट टैक्स है और फेसलेस टैक्स सिस्टम भी है। जिस भारत में दस्तावेजों में, कागजों में, कानूनों में उलझाना ब्यूरोक्रेसी की पहचान माना जाता था, वहीं आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बड़ी छलांग लगा रहा।
0: भाजपा ने कहा है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ऋण का बोझ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके अनुरूप धरातल पर जनता को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज हमीरपुर में कहा कि सरकार को जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि कर्ज के माध्यम से जुटाई गई राशि का कितना हिस्सा विकास कार्यों और कितना हिस्सा देनदारियों पर खर्च हुआ है। उन्होंने प्रदेश की ग्रामीण व संपर्क सड़कों की स्थिति पर भी सवाल उठाए और कहा कि कई स्थानों पर सड़कों की हालत बेहद खस्ता बनी हुई है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद।
2: गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण।
3: गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जाँच जरूरी है। पहली जाँच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जाँच गर्भावस्था के 4th से 6th महीने में, तीसरी जाँच गर्भावस्था के 7th से 8th महीने में, चौथी जाँच गर्भावस्था के 9th महीने में।
2: स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
4: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
5: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
4: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
5: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
4: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
5: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
4: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
5: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाकी के समाचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिमला में दोनों महान विभूतियों को नमन किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर इस दौरान मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जीवन व उनके आदर्श आज भी सेवा, जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता को इंगित करते हैं।
6: आज उन सभी शहीदों को याद करने की जरूरत है जिनके कारण से हमें ये आजादी मिली। कुल मिलाकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी जो शिक्षा थी आज के युग में भी वो कहीं ना कहीं मायने रखती है।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोहडू विधानसभा क्षेत्र के धतवाड़ी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने हमीरपुर और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अमित नंदा ने शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में दोनों महान नेताओं को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान चलाए गए। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान आज देश में जन भागीदारी का एक व्यापक आंदोलन बन चुका है। राजधानी शिमला में आज पुराने बस अड्डे के समीप चलाए गए स्वच्छता अभियान के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और पिछले 12 वर्षों में देश में स्वच्छता को लेकर व्यापक जन चेतना पैदा हुई है।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाया है, स्वच्छता के अभियान को, जो एक आंदोलन का रूप बन करके आज पूरे समाज के बीच में, आज हम पूरे देश के अंदर देखते हैं कि हर जगह स्वच्छता को लेकर के जागरूकता भी बढ़ी है। स्वच्छता को लेकर के लोगों ने जिम्मेवारी को भी स्वीकार किया है कि ये मेरी जिम्मेवारी है, हम सबकी जिम्मेवारी है। स्वच्छता अगर रहेगी तो बीमारियां कम होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विशेष आग्रह स्वच्छता के विषय में रहता है, हम सबको बढ़ चढ़ करके स्वच्छता के अभियान में भाग लेना चाहिए।
0: हमीरपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मटाहणी में 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आज शुरू हुई। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नादौन में अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है, जिसमें 14 खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इस बीच सुनील शर्मा बिट्टू ने उखली पंचायत का दौरा कर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आम लोगों की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 233 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सरकार से कर्मचारियों व पेंशनरों के लंबित एरियर के जल्द भुगतान का किया आग्रह। भाजपा का आरोप, कांग्रेस सरकार द्वारा भारी ऋण लेने के बावजूद प्रदेश की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
3: प्रादेशिक समाचार अभी आप आकाशवाणी के शिमला, हमीरपुर, धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच तथा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब रोजगार समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विभाग में एमएलटी अर्थात मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 18 पद बैच वाइज भरे जाने हैं। ये पद जॉब ट्रेनिंग आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों को भरने के लिए आवश्यक योग्यताएं इस प्रकार से है। आवेदक ने मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10.2 की परीक्षा विज्ञान विषय में उत्तीर्ण की हो। आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थान से बीएससी एमएलटी अथवा बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी या बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज में डिग्री पूरी की हो। इन योग्यता

0: पदों के विषय में आपको बता दें, सामान्य श्रेणी के 9 पद, सामान्य ईडब्ल्यूएस का 1 पद, सामान्य डब्ल्यूएफएफ का 1 पद, अनुसूचित जाति के 5 पद तथा अनुसूचित जनजाति के 2 पद, इस प्रकार ये कुल 18 पद भरे जाने हैं। सामान्य श्रेणी के 9 पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों का जो बैच है वो दिसंबर 2012 तक, सामान्य ईडब्ल्यूएस के लिए दिसंबर 2015 तक, सामान्य डब्ल्यूएफएफ के लिए दिसंबर 2025 तक, अनुसूचित जाति के लिए दिसंबर 2021 तक तथा अनुसूचित जनजाति के लिए दिसंबर 2022 तक लिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 सामान्य क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए तथा जनजातीय क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 20 अक्टूबर 2026 है। रोजगार समाचार समाप्त हुए। ये आकाशवाणी का
1: धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति तलत अजीज और दिलराज कौर की मिलीजुली आवाज में, ये गजल आपके रेडियो सेट्स पर।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अडॉप्ट प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
3: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
3: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
2: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
3: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
2: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
3: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
4: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अडॉप्ट प्रोडक्ट TNC अप्लाई।

0: अंकित तिवारी, आर्य आचार्य, नीति मोहन व मिले साथियों की मिलजुली आवाजों में अभी आप सुन रहे थे कि गीत।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: सब प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
3: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
3: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
2: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
3: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
2: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
3: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
3: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान व साथियों को अभी आप सुन रहे थे इस कवाली में। विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस में आज बस इतना ही। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

लगे रहो मुन्ना भाई। इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत, आवाजें थी सोनू निगम, श्रेया घोषाल और प्रणव विश्वास की। संगीत था शांतनु मोइत्रा का और बोल थे स्वानंद किरकिरे के।

अंश। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज व साथियों को। अग्निपंख। इस फिल्म में आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति का गाया ये देशभक्ति गीत।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ 8:09 रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया, उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है। इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्य

0: लोगों को सामने लाया जाता है, किसी योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है और स्वच्छता, जल संरक्षण या आत्मनिर्भरता जैसे विषयों में लोगों से सहयोग की अपील की जाती है। रेडियो उन जगहों तक भी पहुंचता है जहां संचार का कोई और माध्यम नहीं पहुंच पाता। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
1: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
0: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
2: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझाना चाहिए। आप भारत का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है, तो हमें उसमें अमल करना चाहिए।
3: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गांव के उन नौजवानों तक पहुंचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में पिछड़ गए थे और उनकी बात वो कर रहे हैं।
0: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। एक आकांक्षी भारत उत्सुकता के साथ उन कहानियों को सुनता है जिनमें बदलाव के वास्तविक अनुभव सामने आते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और Facebook पर All India Radio News को फॉलो करें।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्व भर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेइचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मल्लिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया

0: कि नई दिल्ली के क्रॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहें, X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 500,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। आयोग ने मौजूदा महिला केंद्रित बाल देखभाल अवकाश ढांचे को लिंग भेद रहित बाल देखभाल अवकाश में बदलने की सिफारिश की है, जो दोनों अभिभावकों में से किसी एक को उपलब्ध हो। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कामकाजी अभिभावकों के बीच समान रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक को 365 दिन मिलेंगे या साझा पूल बनाने का प्रस्ताव है, जहां दोनों अभिभावक एक ही संगठन में काम करते हों। 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रिपोर्ट में प्राथमिक और माध्यमिक देखभालकर्ताओं के बीच 60:40 के रूप में साझा देखभाल मॉडल का भी प्रस्ताव है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सार्वभौमिक और कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बनाने का भी प्रस्ताव है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिजोरम में कल दुखद सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सूचना और प्रसारण जगत के 3 सदस्यों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये दुर्घटना तब हुई जब अधिकारी आधिकारिक ड्यूटी पर थे और उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। मृतकों में भारतीय सूचना सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर एंगम पामे और नामपीबू मारिन माई तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारी एच लियानवेला शामिल हैं। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
4: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ही ये मेडल आया। यही सोच के उतरे थे मैट पे कि देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
3: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
5: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
3: महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खोल दिए गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की

0: Panggal also clinched gold medals. India climbed to 5th position in overall medal standings, with tally rising to 76, including 16 gold. That is all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज हम आपको सुनवाएंगे कस्में वादे फिल्म से कुछ चुनिंदा गीत। तो ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति इस टाइटल सॉन्ग के साथ। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

कस्मे वादे। फिल्म 1978 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन किया था रमेश बहल ने। फिल्म के निर्माता भी रमेश बहल ही थे और इसका निर्माण रोज मूवीज के बैनर तले हुआ था। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी इसके शानदार कलाकार अमिताभ बच्चन, राखी, रणधीर कपूर, नीतू सिंह और अमजद खान।

अब बात करते हैं कहानी की। फिल्म की कहानी शुरू होती है अमित और सुमन से। अमित का किरदार निभाया अमिताभ बच्चन ने, जबकि सुमन की भूमिका में राखी थी। अमित और सुमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अमित का छोटा भाई राजू, जिसे रणधीर कपूर ने निभाया, अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता है, लेकिन राजू की गलत संगत और लापरवाही परिवार

लिए परेशानी खड़ी कर देती है। एक घटना के दौरान अमित अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है और उसकी मौत हो जाती है। अमित की मौत सुमन और राजू दोनों की ज़िंदगी बदल देती है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ समय बाद राजू की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो बिल्कुल अमित जैसा दिखाई देता है। उसका नाम है शंकर। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। शंकर का अतीत अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ है। राजू चाहता है कि शंकर उसके परिवार का हिस्सा बने, लेकिन शंकर की पुरानी ज़िंदगी और अपराधी दुनिया उसका पीछा नहीं छोड़ती। धीरे धीरे कहानी में प्यार, भावनाओं, रहस्य और संघर्ष के कई रंग सामने आते हैं। यही फिल्म का आकर्षण है। क्या इंसान अपने अतीत से बाहर निकल सकता है? क्या प्यार और अपनापन किसी की जिंदगी बदल सकता है? इन सवालों के जवाब फिल्म की कहानी में मिलते हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने दोहरी भूमिका निभाई। अमित और शंकर की राखी ने सुमन का किरदार निभाया। रणधीर कपूर राजू की भूमिका में अनीतू सिंह ने नीता का किरदार निभाया। दोस्तों, किसी भी पुरानी हिंदी फिल्म की चर्चा उसके संगीत के बिना अधूरी है। कस्मेबादी का संगीत दिया था महान संगीतकार आरडी बर्मन ने और गीत लिखे थे लोकप्रिय गीतकार गुलशन बावरा ने। तो आइए सुनते हैं एक और गीत।

अभी आप सुन रहे थे कस्मे वादे फिल्म से कुछ चुनिंदा गीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम कारवां सुरों का। इस कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं आज का गुंडा राज फिल्म से। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

ये संगीत थानादेम श्रवण का और बोल समीर के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सुन कुमार सानू का गाया ये गीत दीवाना फिल्म से। संगीत है नदीम श्रवण का और वो लिखे हैं समीर ने।

ये संगीत है नदीम श्रवण का। एक बार फिर से ये गीत लिखा है समीर ने, आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। दिल तेरा आशिक इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

अभी आप सुन रहे थे खलनायक फिल्म से ये गीत अलका याग्निक का गाया हुआ। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 10 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से डेली हाइलाइट्स

0: की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं।
1: विद द बिग हेडलाइंस, A 44-year wait comes to an end. India beat China 1-0 to win the women's hockey gold, their first at the Asian Games since 1982. History in archery as well. Ankita Bhakat, Kirti Sharma and Kumkum Mohod beat South Korea to win India's first ever women's recurve team gold at the Asian Games. A golden hat-trick in boxing. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Pangal all finish on the top of the podium. Sujit Kalkal produces a remarkable comeback to win India's first wrestling gold of these games in the men's 65-kilogram freestyle. First up, one of the biggest Indian stories of the day. That 1-0 triumph over China in women's hockey finals doesn't just end a four-decade drought. It also officially stamps India's ticket to the Los Angeles 2028 Olympic Games. Here's Anupam Pathak with the story of a historic final.
2: महिला हॉकी के फाइनल में आज भारत की लड़कियों ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया और उनके लिए तालियां ही तालियां। जितनी भी बजाइए कम है। चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और लॉस एंजलिस ओलंपिक में प्रतिभागिता पक्की कर ली कॉन्टिनेंटल चैंपियन होने के नाते। भारतीय हॉकी प्रेमियों के लिए एक बहुत तनाव भरा, खून जमाने वाला, रोमांच से भरा हुआ मैच था ये। पूल लेवल पे गोल पे गोल दागने वाली लड़कियों ने मजबूत टीम के विरुद्ध रणनीति बिल्कुल बदल दी। थोड़ी रिस्की जरूर थी लेकिन पूरी तरह फिट और मुफीद रही। फर्स्ट क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत के दूसरे सीरियस मूव में ही मौका आ गया। डी के भीतर मिले क्रॉस पर अपना 200वां मैच खेल रही लाल रंग सियामी ने रिवर्स शॉट उठता हुआ लगाया तेज और एकदम निशाने पर। आंखों में चस्पा हो जाने वाला गोल, शायद गोल ऑफ द टूर्नामेंट। भारत 1-0 से आगे हो गया और इसके बाद भारतीय रणनीति सिर्फ और सिर्फ रक्षण करने की रही। गाहे बगाहे मिले अवसरों को छोड़ दें तो खेल मैदान में ही होता रहा या फिर चीनी खिलाड़ी आक्रमण करते रहे। पूरे मैच में 62% गेंद चीन के खिलाड़ियों के पास ही रही और दूसरे क्वार्टर में भी चीन हमला ही करता रहा, भारत बचाव करता रहा। खासतौर पर सुशीला चानू और नवनीत कौर ने बहुत शानदार तरीके से चीनी आक्रमण विफल किए। फिर आया एक और दिल थाम लेने वाला क्षण, चीन का अटैक बना। पहले पेनल्टी कॉर्नर मिला, वो बेकार गया। उसके थोड़ी देर बाद उन्हें मिल गया पेनल्टी स्ट्रोक। किसी को भी लगेगा अब तो स्कोर बराबर। सविता पूनिया ने अकल्पनीय पूर्वानुमान के साथ अपने बाईं ओर गिरते हुए ग्लव से पेनल्टी स्ट्रोक का शॉट रोक दिया। हाफ टाइम स्कोर 1-0 और इसके बाद चीन ने चाहे जितना दबाव बनाया, भारतीय अंततः उसे बेकार ही करते रहे। डिफेंस पूरी तरह शबाब पर, चीन के विरुद्ध चीन की दीवार की तरह डट गया भारतीय रक्षण। चौथे क्वार्टर में भारत ने यही रणनीति अपनाए रखी। समय की सुई घूम रही थी, वैसे वैसे चीन की खींच भी बढ़ रही थी, लेकिन भारतीय लड़कियां गेंद को मध्य में रख समय बिताने की कोशिश लगी थी। अंत में हुआ ये कि चीन ने अपने गोलकीपर को भी मैदान से बाहर कर दिया, यानी सभी 11 खिलाड़ी अटैक पर। लेकिन तब भी भारत गोल पोस्ट खाली देखकर भी प्रत्याक्रमण के मूड में नहीं आया, बस एक ही मूव बनाया चीनी डी तक पहुंचने का और जैसे ही हूटर बजा लड़कियां उछल पड़ी, देश उछल पड़ा। स्वर्ण पदक भारत को। अब इंतजार रहेगा कि भारत की पुरुष टीम भी कल फाइनल में मलेशिया को मात दे दे और स्वर्ण पदकों की जोड़ी पूरी करे और वो भी 2028 ओलंपिक में सीधे प्रवेश कर ले। इस जीत ने भारतीय हॉकी और नीति नियंताओं को भी अच्छा मौका दे दिया है। अब तैयारियां करने, प्रयोग करने, नई प्रतिभाओं को मौका दे, देश के लिए बेस्ट टीम तैयार करने के लिए 2 साल का समय मिल गया है, वरना अभी करीब 1 साल और इंतजार करना पड़ सकता था ओलंपिक कोटा के लिए। चलते चलते ये भी बता दूं कि इसके पहले 1982 में अंतिम बार भारत ने महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था एशियन गेम्स में।
1: Next on to the wrestling mat, and this was a day when India had plenty at stake across 4 weight categories, and one of those bouts produced a quite extraordinary comeback. Here's Shahid Azmi with a wrestling report.
3: 8 साल का इंतजार खत्म हुआ, वो भी ऐसे कमबैक के साथ जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भारत के सुजीत कलकल ने एशियन गेम्स में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या में न सिर्फ इजाफा किया बल्कि जकार्ता 2018 के बाद पहली बार भारत को एशियन गेम्स में पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं रजत, रुहाल, प्रिया मलिक और दीपांशी सहित 3 भारतीय पहलवान मैट पर उतरे थे लेकिन वे कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सके। पहले बात गोल्डन बॉय सुजीत कलकल की। फाइनल मुकाबले में सुजीत ने ताजिकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदियेव को रोमांच के प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में 10-9 से शिकस्त देकर भारतीय खेमे को खुशी से भर दिया। सबसे खास बात यह रही कि पहले पीरियड के बाद सुजीत 2-9 से पीछे थे लेकिन दूसरे पीरियड में उन्होंने जबरदस्त वापसी

0: करते हुए लगातार 8 अंक जुटाए और मुकाबले के आखिरी 10 सेकंड में निर्णायक टेकडाउन के साथ बाजी पलट दी। इससे पहले सुजीत ने राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के सैयद उमर ज़ज़ाई को 13-3 से और क्वार्टर फाइनल में ईरान के अब्बास इब्राहिम को 10-0 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने जापान के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन कोटारो कियोका को 3-3 के बराबरी के बाद पॉइंट क्राइटेरिया के आधार पर मात दी। आपको ये भी बताते चले, सुजीत साल 2026 में अब तक अजेय हैं। एशियाई चैंपियनशिप और अंडर 23 खिताब जीतने के बाद अब एशियन गेम्स का गोल्ड भी उनके नाम रहा। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में दीपांशी कांस्य पदक से चूक गई। कांस्य पदक मुकाबले में उन्हें कजाकिस्तान की जेने बयानोवा ने चित करके यानी बाईफॉल के जरिए शिकस्त दी, जबकि महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया मलिक को राउंड ऑफ 16 में किर्गिस्तान की एपेरेमेडित काइजी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह पुरुषों के 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत रुहाल राउंड ऑफ 16 में कजाकिस्तान के एदगे कासिम बेग से 3-8 से हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कल भारत के 5 पहलवान मैट पर उतरेंगे, जिनमें पुरुषों में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम और दीपक पुनिया 97 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं में अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम और मनीषा 57 किलोग्राम में मैट पर उतरेंगी।
1: Now to the boxing ring. Three Indian boxers went into gold medal bouts today. Lovlina Borgohain, Parveen Hooda and Ankush Panghal. And all three emerged as Asian Games champions. For a golden day for Indian boxing, here's Shahid Azmi.
0: मुक्केबाजी रिंग में भारतीय मुक्केबाजों ने विरोधी बॉक्सरों पर ऐसा पंच जड़ा कि एक ही दिन में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लग गई और इतिहास के पन्नों पर लिख दिया एक नया गोल्डन अध्याय। एशियन गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने अपने मुक्कों से बैक टू बैक 3 स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाल दिया। पहले बात लवलीना बोरगोहेन की, अपने जन्मदिन पर लवलीना ने खुद को और देश को शानदार तोहफा दिया। महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में लवलीना ने चीन की बाओ जी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही हांगझाऊ के रजत को स्वर्ण में बदलते हुए लवलीना ने इतिहास रच दिया। वे मैरी कॉम के 2014 के बाद एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई। लेकिन भारत का स्वर्णिम पंच यही नहीं रुका। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा का मुकाबला चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन चेन नियन चीन से हुआ। मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन परवीन ने शानदार धैर्य दिखाते हुए 3-2 से जीत दर्ज की और पहली बार एशियन गेम्स चैंपियन बन गई। इससे पहले परवीन ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की नवखोर खादी मोवा और सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी और फिर बारी आई तीसरे स्वर्ण की। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अंकुश पंघाल ने कोरिया के किम मिसियोंग को 4-0 से हराकर भारत के लिए तीसरा गोल्ड जीता। अपने पहले ही एशियन गेम्स में अंकुश ने शानदार प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में 5-0 की जीत के बाद सेमीफाइनल में उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के फजलुद्दीन एरकिन बोए को 4-1 से हराया और फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भी अंकुश ने कोई मौका नहीं दिया और भारत की झोली में तीसरा स्वर्ण डाल दिया। इस तरह भारत ने बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण और 3 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते। इन 6 पदकों में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज पुरुषों ने जबकि 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज महिला बॉक्सरों ने जीते। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने इस इवेंट में 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत 4 पदक जीते थे।
1: Next to the archery range, and another memorable day for India. There was history in the women's recurve team event, while the mixed and men's team competitions also had Indian interest. Shahid Azmi has a complete story.
0: Nagoya में भारतीय तीरंदाजों ने आज निशाने पर ऐसा तीर चलाया कि पदकों से झोली भर गई। एक ही दिन में भारत ने तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किए। महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि मिश्रित और पुरुष रिकर्व टीम ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। यानी आज धनुष की डोर से निकले हर तीर ने भारत के लिए इतिहास की नई इबारत लिखी। बात पहले महिलाओं के ऐतिहासिक प्रदर्शन की करते हैं। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और सिर्फ 17 साल की कुमकुम मोहोत की भारतीय तिकड़ी ने तेज हवाओं के बीच शानदार धैर्य और सटीक निशाने का प्रदर्शन किया। फाइनल के शुरुआती 2 सेट बेहद रोमांचक रहे। दोनों सेट 54-54 और 56-56 की बराबरी पर खत्म हुए। लेकिन तीसरे सेट में भारत ने बड़ा पलटवार किया। दक्षिण कोरिया के तीरंदाज लगातार 3 बार 8 अंक पर रुके, जबकि भारत ने 55 अंक जुटाकर सेट अपने नाम करने के साथ 4-2 की बढ़त बना ली। चौथे सेट में दोनों टीमों का स्कोर 54-54 रहा। कीर्ति शर्मा के एक तीर ने समीक्षा के बाद 8 के बजाय 9 अंक दिए और भारत ने इतिहास रच दिया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में चीन को 5-1 से हराकर पहली बार महिला रिकर्व टीम के फाइनल में जगह बनाई थी। 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला रिकर्व टीम ने नागोया में पदक का रंग बदलकर सीधे स्वर्ण कर दिया। उधर रिकर्व मिश्रित टीम इवेंट में भारत ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए खेले गए फाइनल में धीरज बम्बा देवरा और कुमकुम मोहोत की भारतीय जोड़ी का सामना चीन से हुआ। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन चीन के हाथों भारत को 3-5 से हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने शुरुआती 2 सेट गंवाए, लेकिन तीसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए 37-36 से जीत दर्ज की। चौथे सेट में दोनों टीमों के बीच 37-37 की बराबरी रही, लेकिन शुरुआती बढ़त के दम पर चीन ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। स्कोर लाइन की बात करें तो भारत को 34-38, 35-37, 37-36 और 37-37 से कांटे भरे मुकाबले में शिकस्त मिली। वहीं दिन के आखिरी फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक हासिल किया। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। पहला गेम 56-56 की बराबरी पर खत्म हुआ। उसके बाद दूसरे गेम में भारत 50-57 और तीसरे गेम में 54-56 से पीछे रह गया। इस तरह दक्षिण कोरिया ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत के हिस्से रजत पदक आया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी में भारत के पदकों की संख्या 7 हो गई है, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है।
1: On to Sepak Takraw, where both the men's and women's squadron teams were in action today. Here's Anupam Pathak with the report.
2: सिपक टॉकरा में पुरुष क्वाड्रेंट में भारतीयों ने इतिहास रच दिया और इस स्पर्धा में पहला पदक कांस्य पदक हासिल कर लिया। आज भले ही सेमीफाइनल मुकाबले में जापान से उन्हें 12-15 और 13-15 से सीधे सेट्स में हार मिली, लेकिन सेमीफाइनल चक्र में पहुंचकर पदक तो उन्होंने पहले ही पक्का कर लिया था, सो कांस्य पदक उनका रहा। इसे ही रेगु स्पर्धा भी कहते हैं। भारतीय टीम में शामिल थे मालेम गानबा सिंह, सौरव खाइबाम, रामकुमार शर्मा, बॉबी कुमार और यक्ष युमनाम, और एक्सटेंडेड खिलाड़ी थे अरुण राजू और लोखोन सिंह इलांगबांग। मुकाबला भारतीय टीम हारी जरूर, लेकिन मैच एक तरफा बिल्कुल नहीं रहा। दोनों ही सेट्स में कड़ी टक्कर उन्होंने दी। पहले में तो 9-9 की बराबरी पर ले आए थे, लेकिन उसके बाद जापान ने अंतिम समय में बढ़त बना ली और दूसरे में तो जापान ने शुरू से ही लीड ले ली थी। एक समय 12-8 से जापान आगे हो गया था, लेकिन भारतीयों ने जबरदस्त संघर्ष दिखाया और स्कोर 12-13 पर ला दिया, यानी अंतर सिर्फ 1 अंक का। मुकाबला कहीं भी जा सकता था, लेकिन निर्णायक मौकों पर उनसे हुई चूक और जापान ने मौकों का फायदा उठाया, 15-13 से सेट और मैच जीत लिया। भारत ग्रुप में अपराजेय रहकर सेमीफाइनल में पहुंचा था और ये भारत का क्वाड्रेंट स्पर्धा में पहला पदक है और एशियन गेम्स के इतिहास में सेपक टाकरा में कुल मिलाकर 3रा पदक। सेपक टाकरा टीम को बहुत साधुवाद।
1: We move on to the golf course, where the competition is heading towards its business end and the Indian contingent had plenty to play for in the round 3. Sakshi Mandwal has the details.
3: Pranav Iyer's fired a 4-under-66 to take a 9-stroke lead heading into the final round of the women's individual golf event. India are also second in the team standings behind China, with Aditi Ashok and Deeksha Dagar still in contention for a team medal. In men's team golf event, Team India finished 6th after round 3 with a combined score of 11-under-par-409, carding 136 in the third round. Saptak Talwar continues to lead individual men's efforts, staying in the top tier after solid opening rounds.
1: It was a busy day for the Indian cyclist at the ISU Velodrome, action across 3 events. In the men's keirin, Ronaldo Singh crashed out in the repechages after taking 6 in the heat, while David Beckham mounted a gritty run through the rounds to make the semi-finals, ultimately finishing 6th in Final B to secure 12th place overall. In the men's Madison final, the duo of Harshveer Singh Sekhon and Vishwajit Singh battled through the demanding 200-lap race, finishing 8th. Meanwhile, Harshita Jakhar gave her all across 4 phases of women's Omnium, the scratch, tempo, elimination and points races, finishing 11th overall with 54 points. Taekwondo was also on India's program today with Kashish Malik carrying the Indian challenge. Sakshi Mandwal has more.
3: India's Kashish Malik suffered a 1-2 defeat to Kazakhstan's Rita Bakisheva in the mixed individual virtual Taekwondo quarterfinals. Malik's campaign came to an end after she lost out on the head kick count, with the other kick metrics remaining closely matched between the two competitors. This also put an end to India's campaign in the sport.
1: India had three athletes competing in

ये संगीत था मीत ब्रदर्स का। आवाजें मीका सिंह और कनिका कपूर की, बोल लिखे थे शबीर अहमद ने। कार्यक्रम का अगला गीत लखनऊ सेंट्रल फिल्म से, इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने।

ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:23 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत पुरानी फिल्मों से गीत। अब्दुल्ला, इस फिल्म से ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर, और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
1: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: प्रेम कहानी। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया ये दो गाना। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला एसईएल टाइगर रूफिंग शीट्स।

0: यही है टाइगर की गारंटी।
1: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
2: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
2: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
2: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
3: लड़ी हक की लड़ाई,
2: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: कभी कभी इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की मिलजुली आवाजों में ये गीत। संगीत दिया था खय्याम ने और गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।

बदलते रिश्ते। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की मिलीजुली आवाज़ों में ये गीत। आज के चित्रपट संगीत में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इजराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं,

अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।